0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 18 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर है आज, 20% बारिश के चांस भी है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर है। वैसे यस, सुबह बहुत ही फॉगी था, दिन मॉर्निंग एक्चुअली 5:24 पे होगा आज का सनसेट।

0: más cu Jackie.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Kara, namaste, sastrikaal, assalamu alaikum, bula aapka swagat karta hoon aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. मेरा नाम केतन है, मैं हूँ अभी से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे बहुत सारी बातें होने वाली है, कुछ हटके फटके बातें लेके आने वाला हूँ, कॉन्टेंट लेके मैं आने वाला हूँ. बट सबसे पहले तो शुक्रिया, मेरा वीडियो जो है ऑर्गेनिकली विदाउट एनी बोर्ड थिंग और यू नो इट इज़ अबाउट टू क्रॉस बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडियो जो है मेरा यूट्यूब स्टूडियो वहाँ पे नॉट लिटरली वो वाला फिजिकल स्टूडियो बट यूट्यूब स्टूडियो ऐप का नाम है जहाँ पे आप जाके सारे चेकआउट कर सकते हैं. तो उसमें तो बताया जा रहा है कि वीडियो जो है मेरा 4 दिन में पहुँच चुका है 6,000 व्यूज़, जो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत सही बात है, अच्छी बात है. और ऑफकोर्स यू नो विदाउट योर सपोर्ट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती. तो अगर आपने भी अगर ये गाना सुना है तो थैंक यू सो मच, उसे फिर से सुनिए. और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ चेकआउट करिए मेरा सोशल मीडिया या फिर हम के फेसबुक पेज पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं. अनलेस द शॉर्टेस्ट द क्विक थिंग इज़ आप बस मुझे सॉरी यूट्यूब पे जाके सफायर 2.0 केतन के नाम से सर्च कर सकते हैं, वो गाना वो आ जाएगा. एंड देन यू कैन लिसन सी हाउ ऑकलैंड के जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट है, उन्होंने कोलैबोरेशन दिया है, मुझे कोलैबोरेट किया है इस वीडियो में और बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफी भी करी है काफ़ी आर्टिस्ट ने. उसके बाद सबसे खास बात ये कि मैं यहाँ से लेके ऑकलैंड से यू नो पायरोवा फिर पायरोवा से और भी जगह ट्रैवल करता रहा मैं और उस वजह से यू नो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग ट्रिप. घूमने को भी मिल गया मुझे और साथ में ऑफकोर्स यू नो ट्रैवल करने के साथ साथ कंटेंट भी मिल गया. यानी कि यहाँ से होनुआ फॉल्स गया, फिर वहाँ से फिर तोरंगा से फिर आगे आई थिंक टाउपो से फिर वेलिंगटन, पामर्सन नॉर्थ, ये सारी चीज़ कवर की है. बहुत ही अमेजिंग रहा मेरा यार एक्सपीरियंस. तो यस, आप चेकआउट करिए कैसे मैंने उसको शो किया है. ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट जो मैंने देने की कोशिश की है ट्रू एड शीरन के ओरिजिनल सफायर को, न्यूजीलैंड वर्जन, जी हाँ, तो आप देख सकते हैं. बट अभी के लिए आप बने रहिए होमसिक रेमेडीज के लिए, बहुत ही नई बात लेके आऊंगा मैं, तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो हम 104.2 FM के जरिए या फिर रोवा ऐप के जरिए.

0: वेलकम बैक होम सिक रेमेडीज के सेगमेंट में आपसे बात करेंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि नए शहर में आकर बड़ी सी मार्केट में खड़े होकर अचानक वो दुकान याद आई जहां से आप बचपन में 5 रुपए की टॉफी लेते थे, या हॉस्टल के कमरे में बैठकर मम्मी की उस डांट की याद को आई जिस पर आप कभी गुस्सा हुआ करते थे, यानी कि हुआ करते थे या फिर हुए थे। वैसे इसी को कहते हैं होम सिकनेस, एक ऐसी फीलिंग जो बड़े से बड़े इंसान को भी रुला सकती है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान को भी हिला सकती है। वाले एक कहानी है लंदन के माइक की। वो आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे, पर उन्हें नए माहौल में ढलने में करीबन 15 साल लग गए। 15 साल, कैन यू इमेजिन? 15 साल मुझे नहीं हुए न्यूजीलैंड में यहाँ पे, पर उन्हें 15 साल लगे जस्ट टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट, इन दैट नेबरहुड। वो बस अपने देश का खाना और अपनी पुरानी गलियां मिस करते रहते थे। और उन स्टूडेंट्स को सोचो जो घर से सिर्फ 20 मिनट दूर हॉस्टल में रहते हैं, पर उनका दिल हर वक्त घर के खाने के लिए होता है। वेल, घर से एक जगह नहीं होती, एक सुकून भी होता है। अगर आप भी आज घर से दूर हैं और किसी कोने में बैठकर ये शो सुन रहे हैं लंच बॉक्स, तो अकेले मत समझना खुद को, ठीक है? हम हैं यहाँ आपके साथ, मैं, सैंडी, रुजबे, एवरीवन इज हियर। सो बस आपको क्या करना है, आपको 104.2 एफएम के जरिए ट्यून इन करना है, और अगर आप सिटी से सुन रहे हैं तो आई थिंक इट्स 87 फ्रीक्वेंसी है, आई विल जस्ट कंफर्म इट शॉर्टली, बट यस फॉर श्योर आप उसे ट्यून इन करके सुन सकते हैं। बट यस, एक मैसेज और आया है अभी, लेट मी रीड इट आउट। हाई केतन, दिस इज अजय फ्रॉम पुकेकोहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, Sapphire 2.0 is great. It gives the vibe for pure New Zealand. And I miss those days when I was in school and after finishing school and reaching home. Throwing the school bag and went to play cricket without knowing time and worrying about the food. Keep playing till dark. Well, I can relate that. Ye maine bahut kiya hai, honestly. Got scolded from parents after that. I really miss that. All the best for the song. Hopefully Ed Sheeran react on this song very soon. For sure, bro. Finger cross. Hopefully, yaar. Bas aap hi ka pyar chahiye aur aap bhi jitna support de sakte hain, aap dijiye. But yes, the point over here is homesickness. Inhone bhi kafi kuch points likhe hain yahan pe, jo sachmuch I personally feel ki jitne bhi ladke honge wo sab relate kar payenge, unless you are not outdoor kind of a guy, that is different. कुछ होते ना लाइक पढ़ाकू, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी इतने पढ़ाकू थे कि लिटरली उनको सिर्फ किताब चाहिए था, किताब, और वो कभी खेलते नहीं थे, कभी कुछ नहीं करते थे। बट ये इन्होंने जो बातें बोल दी कि वो डांट सुनना बचपन की, एंड नाउ बींग अ पेरेंट एज वेल, मैं रिलेट भी कर सकता हूँ कि हमें क्यों डांट पड़ती थी, बट तब तो मुझे गुस्सा आता था, बट अभी सोच के लगता कि यार वो भी क्या दिन थे। थोड़ी इमोशनल वाली बातें हो गई है, अगर आपको याद आई आपके घर की तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे। बट यस, ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप रेडी रहिए, बिकॉज आप अगर आपने अगर बाहर से ऑर्डर किया है तो मुझे बताइए, आप 5599 पे भेज सकते हैं मुझे। साथ में अगर आपने अगर घर से आपके लिए खाना आया है या फिर आपने खुद ने बनाया है तो मुझे बताइए कि क्या खा रहे हैं आप। 5599 से नंबर, और आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है ये भी मुझे टेक्स्ट करके बताइए।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: फॉल इन लव विद योर होम अगेन विद एन ANZ Reno Loan, a home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
6: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
7: Okay. Let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy.
12: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow! Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat, be more fussy.
13: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
1: Non-stop Bollywood.
14: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
15: Lunchbox with Ketan.
16: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
15: हम office shout out.
0: Welcome back. You are listening to Lunchbox और बात करेंगे office shout out. बोले तो आपने कहाँ से खरीदा है? कुछ मैसेजेस तो आए हैं, बट अगर यहाँ पे कोई है जो मुझे कॉल करके बात करना चाहता है रिगार्डिंग व्हाट इज दैट वन थिंग, सो वी कैन एक्चुअली मिक्स टू थिंग्स हियर, एक होमसिक की बातें भी और प्लस उससे रिकवर होने के लिए आप कहाँ जाते हैं, जहाँ से आप वो आपका जो फेवरेट है, जो यू नो खाने का मन करता है वो खाते हैं आप. सो यस, जैसे मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जब मैं राजस्थानी कुछ खाना मिस करता हूँ तो डेफिनेटली देयर इज़ वन प्लेस, नाम भूल गया मैं क्या नाम था, मनुकाओं में है एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहीं से मैं यू नो ट्राई करता हूँ. आई थिंक क्या नाम था, भूल गया मैं. एनीवेज यहाँ पे किसी को याद है तो मुझे बता दीजिए. बट यस, वहाँ पे मैं जाता हूँ और गट्टे की सब्ज़ी खाता हूँ, कभी दाल बाटी चूरमा वो होता है. इन दो चूरमा जो है वो एग्जैक्टली चूरमा नहीं लगा मुझे जैसा एक्चुअली होता है राजस्थान में चूरमा, बट स्टिल इट इज़ वर्थ गोइंग देयर. सो इट वॉज वर्थ गोइंग देयर. सो यस, कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ. विशाल भाई ने भेजा है वीरी से, बोले वर्किंग एट द वेयर हाउस टुडे, होममेड लैम करी पैक्ड बाय माय मम, एंड उनका जो फेवरेट कुजीन है वो है फीजी इंडियन. या मैंने कल भी एक सवाल किया था कि फीजी इंडियन का सबसे फेवरेट क्या था. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू गो टू फीजी, व्हाट इज दैट वन थिंग आई शुड बी ट्राइंग, एंड जस्ट कीप इन माइंड कि मैं नॉनवेज मतलब प्रिफर नहीं करूँगा. चलिए फोन आ रहा है, फोन उठा लेते हैं. हेलो,
17: नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप?
0: एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
17: मैं बढ़िया हूँ. मैं वैसे न्यूज से बात कर रहा हूँ मैं, और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, है ना?
0: हाँ जी.
17: कि क्या करते हो आप, और जैसे आपकी गट्टे की सब्जी की जो बात आपने कही बिल्कुल सही है ना, जब आप स्पेशली आई थिंक आई मीन आई एम एन इंडियन सो आई विल टॉक अबाउट इट, की when you are in Kiwi Indian and you feel miss something so you directly jump in. So मेरा my preferred way is like I start cooking, you know what I like.
0: Oh. Nice.
17: I gather all the ingredients and I cook and I make sure that I know I make a good feast for my family.
0: Wow. वैसे आप क्या पसंद करते हैं खाने में, अगर just in case अगर आपका मन करे तो?
17: I prefer eating vegetarian, but बहुत अच्छा vegetarian बना नहीं पाता हूँ, तो यार I end up cooking something, you know, non-vegetarian, which my wife do not like, but yeah, it is what it is.
0: ये सही है, vegetarian बनाना चाहते हो लेकिन वो अच्छा बन नहीं सकता, और फिर non-veg बनाते तो आपकी wife को पसंद नहीं आता.
17: नहीं आता, बट हाँ ठीक है, जब क्या होता है ना कि यार बना बनाए, आपको पता है रे, और न्यूजीलैंड में बना बनाए कुछ मिल जाए फ्री में बिना टाइम लगाए, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है. तो एक पंथ तो काम हो जाते हैं, बीबी भी खुश, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश.
0: क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेल सेड यार. वैसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे आपको, वैसे न्यूजीलैंड में कितना टाइम हो गया?
17: ऑलमोस्ट 5 years. बड़ी
0: 5 years, और आपको कितना टाइम लगा यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में?
17: 2 years.
0: Two years.
17: I remember जब हमने first rented accommodation लिया था, तो वहाँ पे एक बाजू में एक बंदा था, तो he actually said that कि एक साल तो लग जाते हैं चीजों को समझने में, और जो दूसरा साल होता है that is where you get settled down, because आपको पता है कहाँ जाना है, क्या reach out करना है, and कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है.
0: Right.
17: तो वो बहुत सही निकला उसकी बात, और actually you know, अगर वो सुन रहा है तो I want to thank him, because that guy gave me a exact, you know, right estimation of time and all that.
0: राइट right. तो आप एज ए स्टूडेंट आए थे या एज अ डायरेक्ट वर्कर?
17: ना वो बड़ा ब्लेस्ड हूँ मैं, यू नो, आई केम ऑन अ रेसिडेंट वीजा, ऑन अ शॉर्ट माइग्रेंट स्किल वीजा फ्रॉम डे वन, एंड विद अ टू थ्री जॉब ऑफर्स इन हैंड, यू नो.
0: Perfect.
17: So I am
0: that's really well, the reason of asking that is because मैंने खुद नोटिस किया है ये, और हो सकता है यहाँ पे काफी लोग एग्री भी करेंगे उस चीज से, कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो यू ऑलरेडी हैव समथिंग टू गेट बिजी, and for sure you, for you as well, but you are already into the New Zealand market. तो आप में और हमारे में obviously ये है कि हम 2-3 घंटा ही बिताते हैं वहाँ पे, and then back to work, back to घर, और तो हमें ऐसा लगा कि as a student इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है compared to as a full time a worker, जो initial आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है.
17: एग्जैक्टली मैं फुल टाइम वर्कर का चैलेंज बताता हूँ. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यू हैव टू वर्क नो मैटर व्हाट द ऑड सिचुएशन इज, क्योंकि आप यू हैव ऑलरेडी कमिटेड, यू हैव साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो देयर यू हैव टू 100%, बट आप कंट्री चेंज करके आए हो, आपको छोटी छोटी चीजें आपके पास नहीं है, है ना, तो जो कि आप यू कांट शो दैट एट वर्क, तो वो एक अलग स्ट्रगल होता है, एंड स्पेशली वेन यू आर डे वन विथ फुल फैमिली, यू नो, बच्चा बीमार है, किसी को कुछ इश्यू हो गया है, कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई है घर पे, यू नो, हैंडी, आपको पता है यू आर यूज टू यू नो गेटिंग थिंग्स डन बाय हैंडीमैन, अब यहाँ पे हैंडीमैन इज अ बिग डील, राइट? यू हैव टू अफोर्ड दैट एंड कॉल, तो वो अलग लेवल का वो होता है. सी एज अ स्टूडेंट आते हो तो एटलीस्ट यू नो कि आपको अपना टेक केयर करना है, बट जैसे मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी स्ट्रगल थी शुरू में, यू नो, छोटी छोटी चीजों की, बट हाँ धीरे धीरे यू स्टार्ट फिगरिंग आउट, फिर आप मास्टर बन जाते हो, फिर आप दूसरों को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो.
0: चलो ज्ञान अच्छा ही था, अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी अच्छा आपने एक्सपीरियंस भी बताया अपना. बट कूल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, यू एंजॉय द डे, एंजॉय ये वाला गाना आप ही के लिए, बंधु टू,
17: टेक केयर, थैंक यू,
0: थैंक यू, बाय.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

वेलकम बैक। चलिए फटाफट से हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे भी नजर डाल देते हैं। न्यूजीलैंड के महान एथलीट जैक लवलॉक ने 15 जुलाई यानी कि आज के दिन 1933 को अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस को सिर्फ 4 मिनट 76 सेकंड्स में पूरी करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को 1.6 सेकंड से तोड़ा और ये पहली बार था जब किसी न्यूजीलैंडर ने रनिंग में कोई ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस रेस को टाइम के हिसाब से भी अगर देखें तो टाइम मैगजीन ने उस दौर की सबसे बेहतरीन रेस माना जहां असली मुकाबला लवलॉक और अमेरिका के टॉप रनर बिल बॉन्थ्रन के बीच था। लवलॉक ने एक शानदार स्ट्रेटजी बनाई और जब फिनिशिंग लाइन से 300 मीटर पहले बॉन्थ्रन आगे निकले थे तब लवलॉक ने तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाई और बॉन्थ्रन को पीछे छोड़ते हुए रेस जीत ली और इस जीत के बाद वो पूरी दुनिया में टॉप मिलर बन गए थे। जी हाँ, और उन्हें यूरोप और अमेरिका से ढेरों इनविटेशन भी आने लगे जहां उन्होंने उस साल 33 बड़ी रेसेस में हिस्सा लिया था। और ये नहीं, इस कामयाबी के बाद लवलॉक ने आगे चलकर 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड के लिए एथलीट्स के सबसे पहला गोल्ड मेडल भी जीता था। वाओ,

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भाई यहां पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
7: Big Points Blitz is back. Get big bonus points at Woolworths. Fresh choice, gas and milk run with everyday rewards. Boost the offers in your everyday rewards app. Shop and collect up to $15 worth of vouchers. Offer ends 19th of July. T's and C's apply.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
2: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz। Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
0: Lunchbox with Ketan.
11: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
2: हम चटनी शॉट्स।
12: चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए फटाफट से न्यूज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ट्रैवल अपडेट्स। हवाइन एयरलाइंस ने अपने न्यूजीलैंड सर्विस सीजनल सर्विस को रिड्यूस करने का डिसीजन लिया है और इसका असर न्यूजीलैंड और हवाई के बीच ट्रैवल ऑप्शंस पर पड़ सकता है। साउथ आइलैंड के लेक टेकापो में हैवी स्नोफॉल के बाद टूरिस्ट की भीड़ बढ़ चुकी है। मेयर ने लोगों को अपील की है कि अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें क्योंकि रोड्स और पार्किंग दोनों पर काफी प्रेशर है। सिचुएशन को उन्होंने एब्सोल्यूट क्लस्टर बताया है। एयर न्यूजीलैंड ने अपने लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट के लिए ब्रांड न्यू केबिन डिजाइन की है। इसमें अपग्रेडेड इकोनॉमी सीट्स, नया प्रीमियम इकोनॉमी और रिफ्रेश्ड बिजनेस प्रीमियम केबिन्स भी शामिल है जिससे पैसेंजर को और कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटरनेशनल न्यूज में ई जीन कैरल को डोनाल्ड ट्रंप के सेक्स अब्यूज और डिफेमेशन केस में $10 million की पेमेंट दी गई है। ये केस अमेरिका में काफी चर्चा का विषय बन चुका है। स्पोर्ट्स अपडेट में फ्रांस को स्पेन ने 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब फैंस फाइनल क्लैश के का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट से एक एक्साइटिंग अपडेट्स। वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में टॉम क्रूज और इंटरनेट सेंसेशन आई शो स्पीड भी नजर आएंगे जिससे इवेंट और भी ग्रैंड बनने वाले हैं। और माओरी इश्यूज से जुड़ी खबरों में माओरी कम्युनिटी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डिस्कशन और डेवलपमेंट पर देश भर में डिबेट जारी है।

0: लंचबॉक्स विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 46 2626।
1: वेदर का हालचाल, 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 20% चांस है बारिश के, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, सनसेट आज होगा 5:24 पे, लेकिन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत दिन दिख रहा है।

नमस्ते, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है और मैं यहाँ पे हूँ 3 बजे तक. वेल यस, काफी अच्छा लगा लास्ट आवर में आप सभी से बात करके. मुझे जो मैसेजेस भेजे हैं उसके लिए भी शुक्रिया. आप इस आवर में भी कंटिन्यू रहिए, बिकॉज इस आवर में काफी कुछ आपको बताना है. एक गाना भी मैं यहाँ पे चलाऊंगा जो शायद आपको मौका दे सकता है टू विन डबल पास. बट सवाल उससे पहले ये है कि क्या आप रेडी हैं? मुझे तो लगता है कि हाँ, आप रेडी हैं. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ लिसनिंग थ्रू आउट, बिकॉज वो गाना कहीं पे भी आ सकता है और आप कभी कहीं भी. जो मौका होता है ना, कहते ना कि किस्मत सबकी चमक सकती है लेकिन बस मौके की देर होती है. जैसे मौका मिलेगा उसके साथ साथ आपको ग्रैब करने का भी एकदम वो होना चाहिए कि बस मैंने पकड़ लिया, जी हाँ ये मौका ऐसा. तो यस, आप बस बने रहिए. अभी थोड़ी देर में आपके लिए बहुत सारी बातें लेके आऊँगा इस आर में. आपके लिए लेटेस्ट खबर के साथ बॉलीवुड खबर भी लेके आऊँगा, फीफा की अपडेट भी लेके आऊँगा, यानी कि क्या अपडेट हुआ है फ्रांस स्पेन के बीच का मैच, कौन सी टीम गई है फाइनल में, उसके बारे में बात होगी. आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो.

0: वेलकम बैक। चलिए जल्दी से आप मुझे लंच टाइम फ्रंट लाइन के लिए मैसेजेस या कॉल्स मुझे भेजना शुरू कर दीजिए मैसेज, और कॉल्स के लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कब आपको कॉल करना है, बट जल्दी से फोन उठाइए और मुझे मैसेजेस भेजना शुरू कर दीजिए। व्हाट इज दैट वन थिंग कुड हैव हैपेंड बेटर इन रिसेंट डेज, बट यस वो नहीं हो पाई तो आप मुझे 5599 पर टेक्स्ट भेज के बता सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यस।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
2: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
10: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
11: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
12: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
13: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
14: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy.
15: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
1: Lunchbox with Ketan.
4: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम। Lunchtime Rant Line.
0: Lunchtime Rant Line के सेगमेंट में आपका स्वागत है। पर उससे पहले मैं मैसेज रीड आउट कर लेता हूँ। किसी ने मुझे मैसेज भेजा है कि केतन भैया अपना सफायर वाला गाना भेज दो प्लीज। वेल थैंक यू सबसे पहले तो यार मैसेज भेजने के लिए, बट यस अभी मैं यहाँ से तो मैं कैसे भेजूँ। सो व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब, एंड आप यूट्यूब पे जाके सफायर केतन के नाम से सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू हैंडी विथ फोन तो यू कैन जस्ट सर्च सफायर एंड देन केतन, आपको सबसे ऊपर ही वीडियो आ जाएगा और उसके जस्ट नीचे ऑडियो भी अवेलेबल है, यानी जिसके ऊपर आप गाने बना सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, अपने मनपसंद के स्टेप्स या एक्टिविटी कर सकते हैं ओवर द फोन एंड कैन यूज माय ऑडियो एज वेल। बट थैंक यू सो मच यार, आप यहां पे मुझे मैसेज करके भी पूछते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट लंच टाइम रेंट लाइन। कुछ मैसेजेस आए हैं अभी मुझे और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कॉल करिए और कॉल करके मुझे आप बता सकते हैं 08004866 पे आप मुझे कॉल करिए और बताइए कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो आपके पास आपके साथ तो मुझे बताइएगा। बट यस, सबसे पहले तो मैसेज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या नाम है, राज भाई, ऑलवेज ऑन पॉइंट। जी हाँ, वेल यस, वो कहते हैं कैन वी रेंट अबाउट पीपल हु लीव देयर शॉपिंग ट्रॉली इन द मिडल ऑफ द कार पार्क इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट। ये बहुत ही ऐसा है यार। जस्ट केमी वहां से 0800 किसी का मैसेज आया 0800 4866। देवर जस्ट आस्किंग अबाउट द नंबर। वेल आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0800 004866 पे। राज भाई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और काफ़ी सेफ्टी को भी कंसर्न में रखते हुए ये काफ़ी यू नो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे एक्चुअली लोगों को बताना चाहिए। और अगर आप उनमें से एक हैं या फिर कोई और हैं जो ऐसा करता है तो डेफिनेटली आप यू नो यू जस्ट वॉच आउट। वेल जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद द फोन। फोन आ चुका है। हेलो
16: हेलो
0: हेलो, हाय, किससे बात हो रही है?
16: हाय हाय हाय, दिस इज आयुष दिस साइड।
0: ओ हाय, तीन बार हाय हाय हाय हाय। आयुष भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप?
16: एकदम बढ़िया, ऑल गुड। हाउ आर यू डूइंग केतन?
0: ऑल गुड, बस चल रहा है, शो चल रहा है। एंड आई होप कि आप मेरा शो सुन रहे हैं और आपने मेरा सवाल जो है वो डेफिनेटली सुना होगा, राइट?
16: यस।
0: इतना सोचना पड़ा, मतलब कुछ तो दाल में लोचा है।
16: नहीं नहीं नहीं यार, मैं एक्चुअली डागरवेल से ड्राइव डाउन कर रहा हूँ तो नेटवर्क बीच बीच में ना कहीं कट रहा होगा आई थिंक।
0: नहीं, अभी तक तो नहीं कटा है, बट इट्स ऑल गुड। बताइए कुछ, हाँ कुछ ऐसी बात बताइए आप। ऑफ कोर्स ऑन एयर है, जस्ट टू लेट यू नो, आप कुछ ऐसी बात बताइए जो इन एक दो दिन में हुई हो आपके साथ जो नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो स्मॉल भी हो, बट यू फेल्ट लाइक क्या है यार, कैसे कैसे लोग होते हैं या फिर कैसे कैसे सिचुएशन होती है, समथिंग यू वांट टू शेयर विद अस।
16: मेरे साथ केतन एवरी डे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं बिकॉज जो मेरा काम है ना, आई एम कैश मर्चेंडाइजिंग मैनेजर,
0: राइट?
16: और आई बेसिकली मैनेज द एंटायर अपर नॉर्थ आइलैंड ऑन द मर्चेंडाइजिंग साइड।
0: वाओ,
16: तो मेरे को एवरी सिंगल डे आई डील विद n number of characters।
0: या फिर तो रोजी कॉल कर लिया करो,
16: कुछ ना कुछ
0: रोजी कॉल करके बता दिया करो।
16: ऐसा हो भाई, आज का मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको।
0: हाँ जी।
16: तो ऑब्वियसली आई ड्रोव डाउन टू डागरवेल ऑल द वे बिकॉज मेरे कुछ कंप्लायंस चेक्स थे जो मुझे यहाँ पे करने पड़ते हैं। एंड मैंने सुबह ऑब्वियसली कॉल करके निकला हूँ एंड जो कंसर्न्ड बंदा था मैंने बात करी कि एम आई ओके टू कम डाउन टुडे बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू गो यस्टरडे, बट वो हो नहीं पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस।
0: राइट।
16: मैं ऑल द वे ड्राइव डाउन करके सारी कम्युनिकेशन करके पहुंचा हूं और यहां आके मुझे पता चलता है आफ्टर ड्राइविंग 2.5 hours ऑलमोस्ट कि जिस काम के लिए मैं आया हूं वो आज हो नहीं सकता। तो बट ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क माई वेज अराउंड कि यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, सुबह आपने बोला यस तो करके फाइनली द थिंग्स गॉट डन। बट जो चीज एक दो घंटे में खत्म हो जानी चाहिए थी उसमें मुझे 3.5 घंटे लग गए।
0: राइट।
16: सो आई डील विद सच कैरेक्टर्स एवरी डे, एवरी सिंगल डे।
0: होपफुली वो कैरेक्टर्स सुन नहीं रहे हो अभी।
16: नहीं नहीं, मुश्किल लगता है मुझे।
0: राइट, बट यस, सो यू अकॉर्डिंग टू यू द रेंट टुडे इज, आपका जो रेंट है वो बेसिकली है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, राइट?
16: 100%।
0: राइट, ये एक्चुअली होता है, काफी कॉमन फैक्टर है और काफी लोग। हाँ जी,
16: आई थिंक इसका बिगेस्ट रीजन इज लोगों ने अपने आप को इतनी सारी अलग अलग चीजों में ऑक्यूपाई कर रखा है ना कि दे आर नॉट एबल टू गिव देयर 100% टू वन सिंगल थिंग।
0: ये बहुत पते की बात है,
16: ये बहुत बड़ा रीजन है। कि इतनी सारी चीजों में आप ऑक्यूपाइड हो रखे हो कि आप एक चीज को भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो.
0: दैट इज ट्रू वे टू स्पीक, लाइक यू आर नॉट एक्चुअली टारगेटिंग एनीवन एल्स. कोई जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा है, बट द सिचुएशन कि उनको भाई हर एक प्लेट में सारी सब्जियां खानी है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सब्जियां खानी है.
16: Correct.
0: उस वजह से कोई भी सब्जी वो प्रॉपर नहीं खा पा रहे. राइट,
16: करेक्ट.
0: थैंक यू सो मच आयुष भाई. नहीं तो ये सॉरी से अगेन.
16: दूसरा केतन, ऑब्वियसली मैं आपसे पिछले कुछ दिनों में ढंग से बात नहीं कर पाया बिकॉज बीन रनिंग वेरी बिजी. अब मैं ऑन एयर अगर हूँ ही तो आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट you for your song bhai.
0: Oh,
16: it is absolutely a stunner of a song.
0: Thank you so much.
16: जो आपने वीडियो करा है, जो हार्डवर्क करा है, which took you a long time to complete the video.
0: Yes.
16: I mean, it is amazing. And another fact I'll tell you, मेरा बेटा कियान, जो obviously आप जानते हो, he is 3.5 years old.
0: Mm-hmm.
16: He is hooked on to that song.
0: Wow, that's the actual earning for me. That's the actual earning.
16: So, वो खाना ही तब खाता है जब वो गाना चलता है.
0: नहीं नहीं यार, फिर तो लूप में चलाओ यार, हमेशा खाना खाए वो.
16: ये सीन हो गया. तो आई मीन मेनी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू भाई. इट इज एब्सोल्युटली स्टनर ऑफ अ सॉन्ग. एंड आई वुड रियली लाइक टू से, अगर किसी ने वो गाना अभी तक नहीं सुना है, सफायर 2.0 केतन कुमावत, please go ahead and listen. You will love it. You will actually see how Indian culture in New Zealand, I mean, how it looks like, basically. It is amazing.
0: क्या बात है, मतलब मेरे को लगता है कि you know, you have explained it very well, more than me. But thank you Ayush bhai, thank you Ayush bhai. Yes, आपके कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And it looks like it might turn into podcast soon. So before that, थैंक यू सो मच. आप एंजॉय करिए गाना तेरे पास मैं नहीं बट कोई है.
16: एंड यू विल फाइंड अस वेरी सून प्लेइंग दैट सॉन्ग लाइव.
0: ओह कूल. थैंक यू फॉर श्योर. थैंक यू. बाय बाय बाय आयुष. थैंक यू. बाय.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेल अभी की लेटेस्ट खबर आपको मैं बता देता हूँ. लेटेस्ट खबर ये है कि स्टेट्स न्यूजीलैंड ने नए डेटा रिलीज किए हैं. उसके मुताबिक न्यूजीलैंड में जून 2026 के महीने में रिटेल स्पेंडिंग जो थी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से होने वाले खर्चे यानी कि जो आप अपना जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसके मुकाबले 1.2% इज इक्वल टू $160 मिलियन गिर चुका है. जिसमें मई में मेन स्पेंडिंग जो थी वो बड़ी थी इसलिए बिजनेस को थोड़ी उम्मीद जागी है, लेकिन जून में फिर से अच्छी कमाई हो सकती है. आई मीन उसका कलेक्शन रिपोर्ट अभी एकदम बाहर नहीं आया पर दैट इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेशन आज. पर ये नए आंकड़े जो हैं उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है. यानी कि पीपल प्रिफर्ड टू यू नो पे थ्रू द कैश. रिटेल न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव कैरोलिन ग्योंग के मुताबिक हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से लोग बहुत सोच समझ कर खर्चे कर रहे हैं और इसके साथ ही ग्लोबल टेंशन्स जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ना उसकी वजह भी काफ़ी कनेक्टेड है इस चीज़ों से. और काफ़ी लोग इसी वजह से नॉट आई वुडंट कॉल इट कंजूसी बट इट इज़ मोर अबाउट लाइक दे हैव लुक्ड आफ्टर द नॉट टू स्पेंड अननेसेसरी. जहाँ पे लग रहा है कि भाई $1 में आ सकता है तो वो $1 ही करेंगे. स्पेंडिंग $2 विल ऑल्सो मेक दैम फील लाइक यार ये मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है. वैसे डेटा में सिर्फ एक ही थोड़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है, वो है ग्रॉसरी जो कि उसका खर्चा थोड़ा बड़ा है. पर बाकी हर सेक्टर जैसे हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउस होल्ड आइटम्स में काफ़ी मंदी देखने को मिली है. वैसे आप इस ट्रेंड और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के गिरने पर एक्सपर्ट डिस्कशन इज रायन ब्रिज आज वीडियो रिपोर्ट्स में देख सकते हैं. तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं. ये वीडियो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड में गिरते हुए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिटेल बिजनेस पर पड़ने वाले असर को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. सो ये आप ज़रूर चेकआउट करना रायन ब्रिज.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
1: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off packs wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
2: IKEA. TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: It's back to school at Woolworths. Stock up and save on lunchbox staples like kids' apples 1kg, just $5.50 a pack. Or Kerry Original Juice 1 litre, just $1.99 each. Back to school at Woolworths. T's, C's and exclusions apply.
4: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops, then boom! One kid has a last minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get prezzies, cards and hair stuff from the warehouse and dinner from your local delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call. Dash!
5: Lunchbox with Ketan.
6: Iske peeche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
5: Iske peeche? Hum. Lunch ke munch pe.
7: वेल यस, बॉलीवुड की बात कर देते हैं बिफोर यू लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग। बॉलीवुड से खबर ये आई है, अभी अल्फा रिलीज हुई थी जो सचमुच बहुत ही ज़्यादा पिटी है, और जो इंडिया के जो बॉलीवुड न्यूज़ आर्टिकल्स छापते हैं, लोकल जो न्यूज़ आर्टिकल वाले, उनके मुताबिक आलिया भट्ट की एक्शन फिल्म अल्फा के अंडरवेलमिंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण सुपरहिट फ्रेंचाइजी धुरंधर के साथ इसका कंपैरिजन होना है। वैसे एक्सपर्ट का मानना है कि धुरंधर ने एक्शन और स्क्रीन प्ले को जो जिस वजह से बेंचमार्क जो क्रिएट किया है, उससे ऑडियंस हर नई एक्शन फिल्म को उसी तरह से नज़र देख रही है। लाइक यू नो, हर एक में वो धुरंधर जैसा ही एक्शन पैक परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और अल्फा वीक स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और कास्टिंग फ्लॉज की वजह से इस स्केल पर काफ़ी खरी नहीं उतर पाई। ट्रेड एनालिस्ट का जो साफ कहना है कि जब कोई फिल्म धुरंधर जैसी सॉलिड कंटेंट और मास अपील नहीं लाएगी, तब तक वो इस यू नो इस तरह के जो कंपैरिजन होते हैं वो झेलती रहेगी, और यही वजह है कि अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। क्या लगता है आपको, ये रीज़न था अल्फा का पिटने का या कुछ और, मुझे आप बताइए अगर आपने देखी है तो। 5599 पे
5: दिल

को महात्मा गांधी सेंटर में एक एपिक सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड ट्रेडिशन को लेके आ रहे हैं. वो बाय लोटस प्रोडक्शन, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आप सभी के सामने प्राउडली प्रेजेंट द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर, गरबा विथ राजगढ़वी. यार हु डजंट लव गरबा यार, हु डजंट. लाइक मुझे पसंद है, आपको भी पसंद होगा, आपके पड़ोस में जो बैठा है उसको भी पसंद होगा, उसके बाहर जो बैठा है वो भी उसको भी पसंद होगा, शायद ही कोई होगा जैसे पसंद ही होगा. बट दैट इज नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज आपको इस इवेंट में जाना चाहिए. eventstickets.co.nz की वेबसाइट पे जाके आप टिकट ले लीजिए. द महात्मा गांधी सेंटर में ये होने वाला है. अगर सवाल जवाब करने हैं तो मुझसे नहीं, आप डायरेक्ट कॉल करिए स्वप्निल शाह को. उनको कॉल करिए 0224394736 पे कॉल करिए. 1st of August 2026 को ये होने वाला है धमाकेदार धमाकेदार शो. वेल एक और शो है जिसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी के लिए एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना. कौन सा? नदानिया, अर्जुन कनुंगो और लीसा मिश्रा की आवाज में.

चलिए बात करते हैं लेटेस्ट खबर। न्यूजीलैंड के एक पुलिस ऑफिसर को कोर्ट ने डेंजरस ड्राइविंग के लिए गिल्टी मान लिया है, क्योंकि उन्होंने एक फ्लीइंग डर्ट बाइक राइडर का पीछा करते वक्त अपनी पेट्रोल कार को 144 किलोमीटर पर आर की खतरनाक स्पीड पर दौड़ाया, जिसकी वजह से उनका बुरा एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार दूसरी गाड़ियों से जाके टकरा गई। कोर्ट के मुताबिक ऑफिसर ने अपनी स्पीड लिमिट और पुलिस परस्यूट के स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स को पूरी तरह से इग्नोर किया, जिससे आम जनता की जान बड़े खतरे में आ गई थी। न्यूजीलैंड पुलिस की पॉलिसी के हिसाब से पब्लिक सेफ्टी सबसे ऊपर होती है और डर्ट बाइक्स के पीछे इस तरह अंधाधुंध गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उनके इस रैकलेस एक्शंस पर उन्हें कन्विक्ट यानी कि दोषी करार दिया गया है। क्या ख्याल है आपका? मतलब मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे लिसनर से कि या देखो, चोर ऐसा तो नहीं कि भाई वो लिमिट में रह के करेगा। दोनों तरफ बातें हैं, मिक्स रिएक्शन मुझे लगता है इसमें मिलने चाहिए कि ऑफकोर्स एक तरफ सेफ्टी है अबाउट अदर पीपल, बिकॉज एक को पकड़ने के चक्कर में बाकियों को खतरे में नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। बट ऑन अदर साइड, व्हाट इज़ द अदर कंक्लूजन टू कैच द थीफ, या फिर जो इस तरह के लोग होते हैं जो सचमुच बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत ही रश ड्राइविंग करते हैं फॉर अननेसेसरी थिंग के लिए, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? आप मुझे टेक्स्ट भेजिए 5599 पे, वुड लव टू हियर योर फीडबैक। बट यस, अभी बता देता हूं दैट यस, राहत फतेह अली खान जी का शो होने जा रहा है ऑन 25th of July द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में। लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं, एक अनफॉर्गेटेबल म्यूजिक एक्सपीरियंस देने आप सभी को। प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन। टिकट आप सभी को मिल जाएंगे dryTickets.com पर, बहुत ही कम सीट्स बची हुई है। द ट्रस्ट एरिना में होने वाला है 25 जुलाई को। लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, कभी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे। 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday,
2: but the adventure everyone talks about?
1: Imagine chasing waterfalls,
2: wandering lush rice terraces,
1: catching unforgettable sunsets,
2: and relaxing at iconic beach clubs.
1: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
2: discovering incredible temples,
1: tasting world-famous street food.
2: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
6: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
8: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड. ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस ऑगस्ट. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
9: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.

0: पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम
2: स्किप या रीप्ले।
3: Well, just to remind you, 25 अगस्त को होने वाला स्पार्क एरिना में एक बहुत ही दमदार शो, जी हाँ, करण औजला आ रहे हैं यहाँ पे आप सभी के बीच परफॉर्मेंस देने। But yes, 25 अगस्त को आप जब ये परफॉर्मेंस सुनेंगे तो यू विल बी अमेज्ड। साथ में इक्की भी आ रहे हैं स्पेशल परफॉर्मेंस देने यहाँ पे, और आपके पास मौका है डबल पास जीतने का। वो कैसे? बिकॉज ऑलवेज वी ऑलवेज थिंक अबाउट अवर लिसनर। तो जैसे ही आप इस आर में करण औजला का गाना सुनते हैं, आप फट से मुझे KA लिखिए मैसेज में गाने का नाम, और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं। और ड्रॉ में शामिल हो गए तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू विन अ डबल पास, यानी कि आप और आपके साथ वो दूसरे करण औजला के फैन को लेके जा सकते हैं। जी हाँ, वेल यस, मेक श्योर करना कि आप KA जो इनिशियल है करण औजला का वो लिखना ना भूलिए, और गाने का नाम, और 5599 पे आप डेफिनेटली भेज देना। बट यस, टिकट्स के लिए आप अभी भी विजिट कर सकते हैं hum.rova.nz या फिर livenation.co.nz पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आ रहे हैं 25 अगस्त को स्पार्क एरिना में, जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए।
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले ये चीज मैं चला देता हूँ।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
0: चलिए फीफा वर्ल्ड कप अभी देखिए ऑलमोस्ट आखिरी चरण पे आ चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल में यूरोप चैंपियंस एज यस स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, यानी कि स्पेन पहुंच चुका है फाइनल में। दलास स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में स्पेन ने शुरू से ही गेम पर अपना कंट्रोल जो इतना बढ़िया सा बना के रख रखा था और फ्रांस के अटैक को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। वैसे मैच का पहला गोल 22 मिनट में हुआ था जब फ्रांस के लुकस डिग्ने ने बॉक्स के अंदर लामिने यमल को फाउल किया और इसके बाद में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक पर माइकल ने शानदार गोल दागकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दी थी। इसके बाद 58 मिनट में पेड्रो पोरो ने डानी ऑल्मो के साथ एक बेहतरीन 1-2 पास कंबाइन करते हुए बॉल को बॉटम कॉर्नर में नेट किया और स्कोर 2-0 से कर दिया। फ्रांस की तरफ से कालियन और उनकी टीम ने कमबैक की काफ़ी कोशिश करी पर मार्क के सॉलिड डिफेंस और गोलकीपर उनाई साइमन की अलर्ट गोलकीपिंग की वजह से फ्रांस एक भी गोल नहीं कर पाया और इस शानदार जीत के बाद स्पेन 2010 के बाद पहली बार यानी कि 16 साल बाद वो फाइनल में पहुंची हैं जहां उनका सामना होगा इंग्लैंड या फिर अर्जेंटीना। वाह, मजा आ गया। क्या लगता है आपको कौन अब होगा दूसरी टीम? वैसे यस कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, 7 बजे शुरू हो जाएगा। देखते हैं कौन पहुंचेगा, देखने लायक होगा यार।
2: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम,
3: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम टेक टॉक।
4: वेलकम बैक। टेक टॉक की बात करेंगे, बट उससे पहले आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ। कृष्णा अभिषेक जो इस हफ्ते होने वाला है शो 18 जुलाई को, जल्दी से जाइए टिकट खरीद लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि ये आज नहीं तो कल सोल्ड आउट होने वाला है, और सचमुच ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट सोल्ड आउट। जी सर, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे bookmyevent.co.nz पे और खरीद लीजिए टिकट्स इसके बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट। कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर आर कमिंग टू ऑकलैंड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट श्योर वो न्यूजीलैंड आए हैं पहले या नहीं आए हैं, वो तो शो में ही पता पड़ेगा जब आप जाओगे, तभी वो बता देंगे अपनी जुबा। बट नॉन स्टॉप लाफ्टर, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंसेज, इंटरैक्टिव ऑडियंस मूवमेंट भी होने वाला है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जस्ट मेक श्योर करना है कि आपकी क्लिप काट के कोई और नहीं ले ले। बट जोक्स अपार्ट, काफ़ी मेमोरीज वहाँ पे बनेगी जिसे आप सचमुच बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लेके घर जाओगे। सो परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट, आप किसी भी उम्र के लोगों को लेके आ सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे आना चाहते हैं आपके साथ, उन्हें भी लेके आइए। आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी, इवन दे कैन कम एंड दे कैन एन्जॉय, बिकॉज इट विल गोइंग टू बी अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट। आफ्टर पे अवेलेबल है वहाँ पे, तो यस, अगर आपको कुछ सवाल जवाब है तो उन्हें 021-043-2720 पे कॉल करके बता सकते हैं। 18 जुलाई, मार्क इट टू योर कैलेंडर, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये होने वाला है। बहुत ही बढ़िया शो जाने वाला है, ऑनेस्टली मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो यस, ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से ये शो किया जा रहा है। बट यस, टेक्नोलॉजी से याद आया, एक नए ग्लासेस आए हैं जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल तो नहीं, बट एक्चुअली डिटेक्ट करके आपको मैसेज भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग आउट, अभी ठंड चल रही है, सो हाउ मच बॉडी कैन कंज्यूम पावर, ये सारी चीज़ें उसमें बता रही हूँ। तो बेसिकली आपकी बॉडी में पानी आपने कितना पिया है और कितना आप जा सकते हैं और कितनी देर बाद आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा, वो ग्लासेस में इनोवेट हुआ है। सच एन अमेजिंग, राइट? मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है यार, इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग। मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और हमें रोबोट्स चलाएंगे, लाइक ऐसे पकड़ के, हाथ पकड़ के, और हम उनके उंगली फिंगर्स पकड़ के विल मूव फॉरवर्ड।
3: To you by NZPMI. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

Well, जाने का टाइम आ चुका है, बट उससे पहले आपको रिमाइंडर दे देता हूँ रिगार्डिंग आपको 5599 पे टेक्स्ट भेज देना है ड्राइव लिख के, बिकॉज उसके जरिए आपको एक नया पॉडकास्ट लिंक मिल जाएगी हमारी, जहाँ पे रुजबियन सैंडी ने एक नए गेस्ट को बुलाया था, शनील लाल। वो उन्होंने काफी प्रॉपर तरीके से पावरफुल कन्वर्सेशन की है अबाउट LGBTQ और उनके राइट्स। काफ़ी डीप पे जाके उन्होंने बात किया है कि किस तरह का रेसिज्म वो फेस करते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, किस तरह को वो प्रेजेंट करते हैं, और इक्वालिटी अनइक्वालिटी क्या चीज़ वो फेस करते हैं, ये हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत दिल से बात की है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये पॉडकास्ट सुनिए और उनकी भी ज़ुबानी समझिए कि उनको भी क्या फेस करना पड़ता है वर्क प्लेस को, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एट्सेट्रा, कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स उस पर भी बात हुई है। सो यस, ड्राइव लिखिए 5599 पे भेज दीजिए, एंड ऑफकोर्स बिट्स एंड कन्वर्जेशन ऑफ विजय एंड पूजा ये सुनना है तो आप हमें BF लिख के 5599 पे भेज दीजिए। एंड यस, एज आई टोल्ड दैट आप मेरा गाना सुन सकते हैं ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे, जस्ट सर्च सफायर केतन, वो आपको आ जाएगा, जिसमें मैंने वो अपनी वोकल दी है और मनप्रीत भाई ने, जो कि पापा टोए टोए सॉन्ग का जो जिन्होंने लिखे हैं वो लिखा रही हैं इस गाने के भी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट यस, अभी के लिए मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3, कॉफी ब्रेक के लिए इंतजार करेंगे थोड़ी देर में। बट यस, वन मोर रिमाइंडर, जस्ट क्विकली गो ऑन bookmyevent.co.nz, वहाँ पे आप जाके टिकट खरीद लीजिए 18 जुलाई को होने वाला इवेंट, ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर के द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जो होने वाला है 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में।

कि ये गाना बहुत हैप्पी सॉन्ग है यार. मुझे एक्चुअली में अगर इस गाने की थीम डिफाइन करनी हो ना, आई विल से इट्स अ हैप्पी सॉन्ग. आई एम टॉकिंग अबाउट सफायर बाय केतन. सो केतन जो कि यहाँ पे लंच बॉक्स करता है. सो ये जो गाना है ना, ये गाना स्पेसिफिकली इसके जो वर्ड्स भी है और इसकी जो वीडियो है, बोथ ऑफ इट एक्चुअली न्यूजीलैंड के बारे में है. एंड तो लिरिक्स को भी ध्यान से सुनेगा, न्यूजीलैंड की बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं. मनप्रीत ने लिरिक्स लिखे हैं, केतन ने इस गाने को गाया है एंड गाने को शूट किया है, बनाया है, एडिट किया है केतन ने खुद. सो बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम सिंगिंग टू शूटिंग द वीडियो डिफरेंट जगह पे जाके, बहुत अच्छे वे से इस सॉन्ग की वीडियो बनाई गई है. न्यूजीलैंड के बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाई गई है. अगर आपने मिस आउट की है वीडियो तो हमारे पेज पे जाइए, अदरवाइज जस्ट गो टू यूट्यूब, सर्च सफायर 2.0 बाय केतन कुमावत एंड आपको ये गाना ज़रूर मिल जाएगा. सो अगर आपने ये गाना पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं तो अपनी फीडबैक लिख के भेजिए 5599 पर.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday,
6: but the adventure everyone talks about?
5: Imagine chasing waterfalls,
6: wandering lush rice terraces,
5: catching unforgettable sunsets,
6: and relaxing at iconic beach clubs.
5: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
6: discovering incredible temples,
5: tasting world-famous street food.
6: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
10: आपके सामने एक रेड बटन है,
11: दबा दिया।
10: नहीं दबाना था।
12: The madness is back, धमाल 4।
13: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
12: Starring Ajay Devgan, Arshad Warsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
14: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
12: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
15: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वर्ल्ड कप के बारे में वैसे फिलहाल पहले बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में जो हुआ, मेरी प्रेडिक्शन जो थी एकदम गलत निकली गाइस। मैंने बोला था कि फ्रांस और स्पेन के बीच में ऐसा लग रहा है कि फ्रांस जीतेगा एंड फ्रांस आगे जाके फाइनल में जाएगा, शायद फ्रांस वर्ल्ड कप भी ले जाए। बट चलो, फ्रांस तो आउट हो गया। कहीं ना कहीं कोने में मैं खुश हूँ, मतलब पसंद तो नहीं था लेकिन मुझे लग रहा था कि फ्रांस आगे लेके जाएगा। सो या इसके बाद जो नेक्स्ट सेमीफाइनल है ये भी होने वाला है, जहाँ पे इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना खेलने वाले हैं। सो इंग्लैंड विल टेक ऑन अर्जेंटीना सेकेंड सेमीफाइनल में। जो विनर है दे विल फेस स्पेन इन द वर्ल्ड कप फाइनल ऑन 19 जुलाई। सो स्पेन ने बहुत ही अच्छी वजह से आज डिफीट किया था फ्रांस को 2-0 के साथ फर्स्ट सेमीफाइनल में। एंड जो लूज़र है इस मैच का विल प्ले, अजीब लगता है लूज़र बोलना, जो इस मैच में हारेगा वो प्ले करेगा फ्रांस के साथ इन द थर्ड प्लेस प्ले ऑफ। सो इंग्लैंड के जो मैनेजर है थॉमस, ही सेड कि फुली फिट है स्क्वाड, एकदम अवेलेबल है। एंड डेक्लिन राइस ये भी रिकवर्ड हो चुके हैं इलनेस से। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की गई है एटलांटा में, बिकॉज वहाँ पे हिस्टोरिक राइवलरी रहती है बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना। सो बहुत बड़े बड़े वहाँ पे ड्रामास हो सकते हैं। कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी मेन प्रेजेंटेशन टीम भेजी है स्टेडियम में इन एटलांटा, इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सोनली फ्रॉम वन प्लेस, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट जो है ये टीवी ऑडियंस के लिए रहने वाला है। सो आर यू गोना वॉच दिस मैच, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में जो मैच होने वाला है? आई एम जस्ट चेकिंग कि इसका टाइम जो है ये एक्चुअली में हमारे लिए कल क्या रहने वाला है। देखो अभी तक टाइम नहीं मिल रहा है यार। इसका टाइम रहेगा इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना के बीच, ओ सुबह 7 बजे, सेम टाइम या सो सुबह कल 7 बजे ये मैच रहने वाला है। विन प्रोबेबिलिटी में इंग्लैंड इज 35%, अर्जेंटीना इज 32%, सो एनीथिंग कैन हैपन। मेरा मन तो कहता है कि अर्जेंटीना को आगे जाना चाहिए, अब मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाली हूँ, पहली प्रेडिक्शन मेरी गलत हो गई है। सो लेट्स सी क्या होता है। किस टीम के लिए आप रूट कर रहे हैं, कौन सी टीम आप चाहते हैं कि इस फाइनल में खेलने के लिए जाए, इज इट इंग्लैंड और अर्जेंटीना?
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

0: 328 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। रिटेल स्पेंडिंग के ऊपर एक्चुअल में एक आर्टिकल आया जो आपके साथ शेयर करती हूँ। न्यूजीलैंड रिटेलर्स जो है ये होप कर रहे हैं कि जून जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर लिफ्ट रहने वाला है कंज्यूमर स्पेंडिंग में। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांजैक्शन जो फिगर्स है ये सजेस्ट करती है कि शॉपर्स जो है ये अभी भी केयरफुल है शॉपिंग करने में, कार्ड स्वाइप करने में, मनी स्पेंड करने के लिए। सो कोर रिटेल स्पेंडिंग जो है एक्सक्लूडिंग फ्यूल व्हीकल्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई है बट जस्ट 0.4% इन जून कंपेयर टू मे, रीचिंग अबाउट $5.78 billion। वाइल इंक्रीज है इट वॉज वीकर देन मैनी बिजनेसिस वर होपिंग फॉर। सो स्पेंडिंग ऑन क्लोदिंग फुटवेयर जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट राइट नाउ, जो कि 4.2% फॉल किया है कंपेयर विद जून लास्ट ईयर, बिकॉज कपड़े एंड फुटवेयर के ऊपर अभी भी लोग थोड़ा सोच के खर्चा कर रहे हैं कि भाई ज़रूरत है ये लेने की, मे बी अपनी वार्डरोब को दोबारा से अरेंज कर रहे हैं। हायर फ्यूल कॉस्ट एंड ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर जो है ये कंटिन्यू स्क्वीज कर रहा है हाउस होल्ड बजट्स को, लिविंग मैनी कंज्यूमर रिलक्टेंट टू स्पेंड ऑन नॉन असेंशियल आइटम्स। असेंशियल चीज़ों के ऊपर तो एवरी वीक हम खर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन नॉन असेंशियल के ऊपर ट्रेंड हो रहा है अभी कि लोग सोचना शुरू हो चुके हैं। वाई दिस मैटर्स, काफ़ी जो रिटेलर्स है दे आर होपिंग कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स है एंड जो इम्प्रूविंग बिजनेस कॉन्फिडेंस है ये इनकरेज करेगा कंज्यूमर को टू ओपन देयर वॉलेट। हाउएवर जो लेटेस्ट स्पेंडिंग डाटा है इंडिकेट करता है कि जो कॉन्फिडेंस है शॉपर्स के अंदर वो अभी स्लो है देन एक्सपेक्टेड। सो शॉपर्स के लिए इसका मतलब है कि पीपल आर स्टिल फोकसिंग ऑन एसेंशियल्स रैदर देन अदर परचेसेस। रिटेलर्स दे मे कंटिन्यू टू ऑफर सेल्स एंड डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ये वो कर सकते हैं। एंड जो रिटेल सेक्टर है इज लाइकली टू रिमेन अंडर प्रेशर जब तक हाउस होल्ड जो है ये फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करते हैं। सो आपने ये पिछले 2-3 महीने से, लास्ट 3 मंथ्स लेके चलते हैं जब से ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सब कुछ चल रहा है, लास्ट 3 मंथ्स में आपने क्या कुछ नया फुटवेयर या क्लोदिंग्स आपने क्या बाय की है? आर यू द कंज्यूमर ऑफ न्यू क्लोदिंग्स, मतलब नॉट असेंशियल क्लोदिंग्स आई एम सेइंग। हो सकता है काफ़ी लोगों ने स्कूल के लिए असेंशियल क्लोदिंग्स ली हो, काम के लिए कुछ असेंशियल क्लोदिंग्स ली हो, उसके अलावा जस्ट ऐसे ही जो हम जाते हैं ना कि ऐसा ब्राउज करके ये ड्रेस पसंद है ये कपड़ा पसंद है तो वो हम खरीदते हैं, आपने लास्ट 3 मंथ्स में आर यू द वन जिसने वो शॉपिंग की है या फिर जूते की शॉपिंग की है, फुटवेयर आपने कोई ख़रीदा है जस्ट ऐसे ही अच्छा लगा और आपने ख़रीदा है? सो आर यू द वन जिसने लास्ट 3 मंथ्स में ख़रीदा है, मैसेज करके बताइए। एंड मुझे लगता है कि परसेंटेज बहुत कम रहने वाली है, लास्ट 3 मंथ्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। अपने आप को अगर कंसिडर करूँ तो लास्ट 3 मंथ्स में मैंने एक्चुअली में नहीं ख़रीदा है, या मैंने फुटवेयर वैसे भी नहीं है एक्चुअली में मैंने ख़रीदा है सॉरी फुटवेयर ख़रीदा है मैंने, नए बूट्स लिए हैं। सो या आई हैव स्पेंट, लेकिन इतना नहीं, वो भी सेल के ऊपर मैंने स्पेंड किया है। सो व्हाट अबाउट यू, आपने फुटवेयर या फिर क्लोथिंग्स के ऊपर अगर लास्ट 3 मंथ्स में स्पेंड किया है तो मैसेज करके बताइए 5599 पर।
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
10: Please use your imagination for the following ad.
11: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
12: imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.

और ट्रेल चेक में आज बताती हूँ आपको कारामदुरा फॉल्स के बारे में। वैसे से पहले अजय बुके को ही से आपने मैसेज किया है कि आपने कोई खरीदारी कपड़ों की, फुटवेयर की लास्ट 3 मंथ्स में नहीं की है। पहले ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज डाटा आया है रिसेंट कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग हुई है, सो दीज आर द 2 थिंग्स जिसके ऊपर लीस्ट स्पेंडिंग हुई है, लोगों ने स्पेंड नहीं किया है लास्ट 3 मंथ्स में। वैसे ये जून का डाटा आया है। सो कमिंग बैक टू ट्रेल, कारामदुरा फॉल्स लूप जो है वन ऑफ द बेस्ट हिडन जेम्स है वैताकरे रेंजेस में, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ये हुइया में लोकेटेड है जो कि एक टाइडल कोस्टल सेटलमेंट है ऑन द नॉर्दर्न शोर ऑफ मेनुकाउ हार्बर। सो जो ट्रैक है बेसिकली द वॉक जो है इज एक्चुअली कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। एक तो है कारामदुरा लूप वॉक जो कि बहुत ही ईजी है और हाईली एक्सेसिबल ट्रैक भी है। सो अगर आप आने वाले दिनों में करना चाहते हैं, इट्स बीन अ ड्राई विंटर एनीवे, बहुत अच्छी विंटर जा रही है टचवुड, तो आप जा सकते हैं इसके लिए। स्लाइटली अगर आपको मोर रग्ड वॉक करनी है देन कारामदुरा ट्रैक जो है ये आप कर सकते हैं, जहाँ पे नीचे बेस में जाके बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी आपको दिखाई देगी। सो टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, कितना हैवी, कितना आप टफ जाना चाहते हैं। यू नो आप ऑल ट्रेल्स जो ऐप है इसको एक्चुअली में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल ट्रेल्स में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी जो ट्रेल है, कौन सी हाइक जो है वो ईजी है, कौन सी मॉडरेट है एंड कौन सी टफ है। एंड मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर जिस हाइक को ईजी लिखा होता है वहाँ पर वो मॉडरेट होती है हमारे लिए। सो जिसको मॉडरेट लिखा होता है वो एक्चुअली में थोड़ी टफ होती है। एंड दिस ट्रैक एक्चुअली में ये स्टार्ट होती है एक लूप सेक्शन जो है, अगर आप करना चाहते हैं हुइया कैंप ग्राउंड पार्किंग एरिया है वहाँ से ये शुरू होती है। देन ये जो ट्रेल है ये स्प्लिट होती है इनटू द लूप अबाउट 15 मिनट्स इन। एक ओल्ड ट्रैमवे रूट है एंड सेकेंड एक काउरी ग्रोव रूट है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना वॉक जो है ये करना है। वन ऑफ द मेन रीजंस लोकल्स जो है इस ट्रैक को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर। सो नॉट राइट नाउ बट इन द समर जो मेन वाटरफॉल पूल है वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, दे टेक अ प्लंज एज वेल, वहाँ पे प्लंज पूल वो करते हैं। सो इवन इन द डेड ऑफ समर तो एब्सोल्युटली फ्रीजिंग जो है एक्चुअली में वहाँ पे पानी रहता है। सो अल्टीमेट कूल डाउन भी है वॉक करने के बाद वहाँ पे, एंड देन वहाँ पे स्ट्रीम पूल्स भी है। सो इफ़ द मेन वाटरफॉल बेसिन इज़ ऑक्यूपाइड तो आपको बहुत सारे वहाँ पे स्ट्रीम्स मिलेंगे जहाँ पे एक्चुअली में आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा टफ चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके पास एक माउंट डोनल मैकलिन एक्सटेंशन भी है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे स्टेयर्स काफ़ी है, वैसे आपको बता दूँ स्टेयर्स किसी भी वॉक में, किसी भी हाइक में अगर आपको स्टेयर्स मिल जाती है ना, सीढ़ियाँ मिल जाती है तो वो थोड़ी टफ हो जाती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। सीढ़ियों से उतरना जाना एक्चुअली वो ज़्यादा आपको क्रैम्प्स देता है रेदर देन जो बाकी वॉक होती है। बढ़िया, यू कैन सी कि आपको किस वे की वॉक करनी है, बट यू कैन चेक अबाउट दिस कारामदुरा के बारे में जब आप चेक करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको मिलेंगी।

10 मिनट बाकी है 4 बजने में. 4 बजे आपके लिए ड्राइव शो यहाँ पे शुरू हो जाएगा. एंड यूके गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक और स्टेप ले रहे हैं सो दैट 16 एंड 17 ओल्ड जो है ये सोशल मीडिया ना देख पाए. पहले ही इन्होंने वैसे इसके ऊपर जो रूल्स है ये बना दिए हैं. अभी वो क्या कर रहे हैं, एक डिफॉल्ट ओवरनाइट सोशल मीडिया कर्फ्यू कर रहे हैं फॉर 16 एंड 17 ईयर ओल्ड्स. सो इसमें होगा क्या, सोशल मीडिया ऐप्स जो है ये ब्लॉक हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट फ्रॉम मिडनाइट अंटिल 6 AM फॉर 16 एंड 17 ईयर ओल्ड्स. सो टीनेजर और देयर पेरेंट्स दे वुड बी एबल टू स्विच द कर्फ्यू ऑफ. ये एक मैंडेटरी बैन नहीं है लेकिन पेरेंट्स को वो इनकरेज कर रहे हैं ये बैन करने के लिए. जो प्लेटफॉर्म है ये टर्न ऑफ कर देगा अडिक्टिव फीचर्स को जैसे कि ऑटो प्ले वीडियोज एंड जो एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है, जो डूम स्क्रॉलिंग हम करते हैं ना, उसको ये टर्न ऑफ कर देगा. सो व्हाई इज़ यूके डूइंग दिस, सवाल अगर ये उठता है तो जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जो रिसर्च है इसमें हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज जो है ये इन्होंने पाया है कि जो रिड्यूसिंग लेट नाइट सोशल मीडिया है इसकी वजह से बच्चों को बेटर स्लीप मिल रही है, इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन है, बेटर मेंटल वेलबींग है, मोर फैमिली इंट्रैक्शन है. 100% मेंटल वेलबींग के ऊपर तो मैं एग्री करती हूँ बिकॉज सोशल मीडिया पे कई बार बच्चे क्या बड़े भी इतना कुछ कई बार होता है कि आप रह नहीं पाते हो एंड देन यू गेट अफेक्टेड ड्यू टू इट. एंड आप मे बी एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिफरेंट सोचते हो लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप बहुत सारी रील्स वैसे देखते हो तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है किसी और ही जगह पे जहाँ पे शायद आपको पहुँचना नहीं है. सो मुझे अभी भी लगता है कि नॉलेज इज़ बेस्ट गेन्ड फ्रॉम द प्रॉपर रिसोर्सेज या बुक से रेदर देन रील से. एंड ये चीज़ें जो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बड़ों को भी करती है लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा करती है. सो इसलिए यूके ये कर रहा है. तो पार्ट ऑफ द बिगर क्रैकडाउन जो कर्फ्यू है इट फॉलोज यूकेज ब्रॉडर प्लान टू बैन सोशल मीडिया अकाउंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, रीस्ट्रिक्ट द लाइव स्ट्रीमिंग एंड कॉन्टैक्ट विद स्ट्रेंजर्स फॉर यंगर यूजर्स एज वेल, एंड इंट्रोड्यूस करना स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस अराउंड AI चैटबॉट जहाँ पे जो कि टीनेजर्स के ऊपर एक्चुअली में एम्ड है. सो दे वॉन्ट टू ब्रिंग द लेजिस्लेशन बिफोर द पार्लियामेंट लेटर दिस ईयर. एंड अगर ये सब सही हो जाता है तो इसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर 2027 में. आपका क्या टेक है इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बैन या फिर इस कर्फ्यू के बारे में? डू यू थिंक ऐसा कुछ न्यूजीलैंड में भी होना चाहिए? व्यू अपना शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पर.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.2 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 5:24 पर.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बज के 3 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हैविंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. 7 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. एंड रुजबे यहाँ पे नहीं है बिकॉज रुजबे आपका साथ दे रहा है इन द मॉर्निंग शो, इन द ब्रेकफास्ट शो. विजय एंड पूजा आर अवे, सो इसलिए रुजबे फिल इन कर रहा है ब्रेकफास्ट शो में. तो उसको सुबह ज़रूर सुनेगा 6 से लेकर 10 के बीच में. एंड इस आवर में वैसे बहुत कुछ होने वाला है. इस आवर में आपको बता दूं कि करण औजला का गाना भी प्ले होने वाला है. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ध्यान रखिएगा, करण औजला का गाना कभी भी प्ले हो सकता है. जैसे ही वो गाना प्ले होता है उसी समय आपको क्या करना है, आपको KA स्पेस गाने का नाम जो प्ले हो रहा है और अपना नाम लिख के भेजना है

जाइए, वहाँ पे भी टिकट्स की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। बट फॉर नाउ शुरुआत करते हैं इस गाने से जो एक शो से बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ गॉट लेटेंट। उस शो में बोनस क्लिप में एक्चुअली में ये गाना आता है और वायरल हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि इसका पूरा का पूरा एपिसोड में जिस पर्सन ने इसके ऊपर परफॉर्म किया पूरा उसका नहीं दिखाया, बोनस क्लिप में उसको दिखाया गया था। ये जो गाना है इसको गाया है यंग एजे ने, जिसका नाम अजय है। ही इज़ अ रैपर बिहाइंड द वायरल हुक एज वेल। वो एक्चुअली में एक क्रिएटर है, रैपर है एंड लिरिसिस्ट भी है इस गाने का। इस गाने के लिरिक्स उसने लिखे और उसको बाद में उसने मिक्स किया स्ट्रीट रैप के साथ, थोड़ा जबलपुर लोकल फ्लेवर उसने डाला है बीच में, कॉमेडी स्टोरी टेलिंग भी डाली है जिसकी वजह से काफ़ी सही जा रहा है। एंड साथ में उसका साथ दिया है रॉकिंग गोली ने। तुम नाम देखो ना, यंग एज एंड रॉकिंग गोली दोनों ने साथ में मिलके गाया है। रॉकिंग गोली जो है उसका नाम है वैसे बलराम विश्वकर्मा उसका पूरा नाम है। सो ये एक रियल लाइफ चाय स्टॉल का ओनर है, तो चाय का जो ठेला होता है ना जैसे, ये वो लगाता है इन द जबलपुर। तो इसने कोलैबोरेट किया है यंग एजे इस रैपर के साथ जो गाना इस शो के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इफ़ यू डोंट नो इस गाने के बारे में तो ये आपको प्ले कर रही हूँ मैं आपके लिए।

0: say mere oof.
1: 4:13 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं. You're humming along with Sandy right now. And Bali and Bangkok getaway के बारे में आपको बता देती हूँ. So रुजबे और मैं जा रहे हैं March 2027 में Bali and Bangkok. So दो जगह पे ट्रिप करने वाले हैं, पहले Bali and then Bangkok. और हम ये करने वाले हैं Sun Tours के साथ. And अपने साथ एक पलटन को लेके जा रहे हैं और आप इस पलटन में शामिल हो सकते हैं. It's gonna be very fun trip actually में. So Sun Tours ने क्या किया है, उन्होंने एक पैकेज डील बनाई है. इस पैकेज डील में टिकट्स है, एवरी टिकट फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्ट बाली, देन बाली से बैंकॉक, बैंकॉक टू वापस ऑकलैंड, ये पूरी की पूरी टिकट्स हैं. देन अकोमोडेशन है उसमें, वो भी उन्होंने बोला है कि 5-star की ही अकोमोडेशन है, उससे कम नहीं. एंड जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर वो खुद ही प्रोवाइड करने वाले हैं. एंड बाली एंड बैंकॉक में एवरी डे एक्टिविटीज़ है जो वो खुद प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसका वो खर्चा खुद देने वाले हैं, विच इंक्लूड्स दैट स्विंग एज वेल जो बाली में होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, क्रूज़ भी है. सो ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज़ एंड ये एक्चुअली में पैकेज डील उन्होंने बनाई है. एंड यू कैन जॉइन मी एंड रुजबे वहाँ पे. सो ट्रैवलिंग डेट्स आपको बता देती हूँ. इट्स गोन बी 23rd March से लेके नेक्स्ट ईयर, ऑफकोर्स 23rd March से लेके 2nd अप्रैल तक. तो बेसिकली 2nd अप्रैल को यू विल बी बैक इन द ऑकलैंड, जो कि सैटरडे का दिन है, और इसके बीच में ईस्टर वीकेंड भी आता है, स्कूल हॉलीडेज भी है. इट्स वेरी गुड टाइम जो है, जो आपको प्लान आप कर सकते हैं इस हॉलीडे के लिए. लिमिटेड स्पॉट्स रहेंगे, तो जैसे ही स्पॉट्स जो है सारे के सारे फिल हो जाते हैं तो फिर किसी और को चांस नहीं मिलेगा. इनफैक्ट सन टूअर्स के अनिल भाटिया जो है, उन्होंने बोला है कि यू नो आप इंक्वायरीज भेजिए उनके पास, एंड रेस्ट ही इज़ द पर्सन हु कैन डील विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. तो इंक्वायरीज भेजने के लिए आपको करना क्या है, ताकि आपको पूरी की पूरी आइटनरी मिल जाए कि एवरी डे क्या क्या होने वाला है, एंड उसकी प्राइसेस क्या रहेगी, पैकेज डील क्या है, पैकेज की प्राइस क्या है. ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, जहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा. फॉर्म है वहाँ पे, गूगल फॉर्म है बेसिकली, उसको आपको फिल करना है. उसमें आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर होगी, आपका फ़ोन नंबर और आपका नाम, एंड फॉर्म में आपकी एंट्रीज चले जाएंगी. एंड देन जो फॉर्म में एंट्रीज है उनको अनिल भाटिया जो है वो फ्रॉम द सन टूअर्स आइटनरी भेज रहे हैं, एंड देन यू कैन डिस्कस एंड सी कि आपको क्या करना है. सो फार जो मैंने जाना है, जो डिफरेंट फीडबैक मुझे मिली है, वो ये मिली है कि इट्स क्वाइट अ गुड डील, बिकॉज ईस्टर के टाइम पर अक्सर जो टिकट्स है बहुत महंगी हो जाती है. आपको जहाँ पे भी जाना होता है चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है. कंसिडरिंग वो फैक्टर जो डील है, इट्स क्वाइट गुड, बट यू टेक योर ओन कॉल. आप अपना जो है ये आप डिस्कस ज़रूर कीजिएगा. लेकिन एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात भी है, यू फिल द फॉर्म, इट्स फ्री टू फिल द फॉर्म दो. एंड अगर आप रजिस्टर भी करना चाहते हैं इस ट्रिप के लिए, ताकि आपकी एंट्री जो है, आपका स्पॉट जो है ये सेव हो जाए, तो इट्स $500 जहाँ पे आपको अपने बुकिंग करवानी है. एंड ऑल्सो क्या करने वाले हैं कि अनिल भाटिया बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट दिस वीकेंड, वो एक इन्फो सेशन करने वाले हैं विथ टी स्नैक्स सर्व्ड इन मैनकाउ एक्चुअली में करने वाले हैं बिटवीन 4 to 6 PM. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है या फिल करने वाले हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ईमेल भेजेंगे, तो आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं, RSVP कर सकते हैं. और ये जो एक सेशन रहेगा, एक इन्फो सेशन रहेगा. क्या होता है कि जब वहाँ पे सामने कोई बैठा होता है, आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इस ट्रिप में क्या क्या होने वाला है, एंड डिस्कशंस होते हैं, आपके कोई सवाल रहेंगे, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उसके आंसर आपको मिलेंगे. सो इट विल बी रियली गुड आई थिंक. तब आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जाना है नहीं जाना है. ये सैटरडे को, दिस सैटरडे 18 जुलाई को, बिटवीन 4 to 6 PM टी स्नैक्स जो है वो सर्व करेंगे खुद ही. तो इट्स गोना बी अ नाइस सेशन, जहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हैं कि इसमें ट्रिप में क्या क्या होने वाला है. एंड बाकी जब मैं और रुजबे इसमें शामिल होने वाले हैं, तो वी गोना डू लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एज वेल, कुछ गेम्स वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम कोर्स करने ही वाले हैं. बट देन पैकेज डील में क्या है, यू नीड टू डिस्कस विद सन टूअर्स. सो इसलिए फॉर्म फिल कर दीजिए. फॉर नाउ आपको क्या करना है, प्राइम नहीं लिखना है, जिन्होंने प्राइम लिखा है प्राइम नहीं लिखना है, ड्राइव लिखना है. सो टाइप ड्राइव ऑन 5599, तो आपको फॉर्म मिलेगा. फिल द फॉर्म, ताकि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना फिल कर रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट एन ईमेल अबाउट एवरीथिंग व्हाट्स गोना हैपन. एंड यू नो, अगर आपको बहुत समय हो चुका है कहीं ट्रिप किए, हॉलीडे पे गए, एक हॉलीडे होती है जो आप अपने होम टाउन में जाते हैं, वो तो होता है कि अपनी फैमिली, अपने घर को विजिट करने के लिए। एक हॉलीडे होता है जहाँ पे आप चिल करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, एकदम रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं आप। ये वो वाली हॉलीडे रहेगी बाली एंड बैंकॉक की। सो इसमें अगर आप बहुत समय से नहीं गए हैं तो मेरे को लगता है दिस इज़ अ कॉलिंग, यू शुड गो फॉर अ हॉलीडे, यू डिज़र्व एक्चुअली अ हॉलीडे। सो लास्ट टाइम आप बस मे बी जस्ट चेक कीजिए कि लास्ट टाइम आप हॉलीडे पे कब गए थे। सो इज़ इट टाइम टू गो समवेयर, एंड वो भी फैमिली के साथ, बिकॉज दीज आर द बेस्ट मेमोरीज यू कैन हैव अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर गर्ल्स ट्रिप पे कोई जाना चाहता है, आप गर्ल्स का ग्रुप बना के जा सकते हैं। बॉयज़ ट्रिप करना चाहता है तो बॉयज़ का ग्रुप बना के वहाँ पे जा सकते हैं। सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन ओवर देयर। सो आपको करना क्या है, ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में यू विल गेट द फॉर्म।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: Reliance Ventilation System।
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: Moisture और ventilation का problem लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
6: Oh, that's not good। हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111। Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18
9: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
0: TradeDepot.co.nz.
12: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings, like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Marikau and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
13: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy.
14: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow! Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat, be more fussy.
15: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $799. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
16: Kundi khadao, ya seedha andar aao.
17: Main laao apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 426 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल ड्राइव शो आप यहाँ पे सुन रहे हैं थोड़ी देर में बताएंगे कि और भी आपकी सुपर सिटी में क्या क्या हो रहा है वैसे एक सुपर मार्केट है जिन्होंने अपोलोजाइज किया है टू अ मैन हु सेज ही एंड हिज सन वर ह्यूमिलेटेड बिकॉज एम्प्लॉय जो थे वहाँ पे स्टोर के उन्होंने उनका बैग विदाउट परमिशन चेक किया था सो वन ऑफ द एम्प्लॉय वो स्कैन कर रहे थे आइटम्स एक्चुअली विद दिस पर्सन एक्चुअली में जिनका नाम है हामिद अशरफ ये स्कैन कर रहे थे आइटम्स सेल्फ चेकआउट पे एंड लास्ट मंथ की ये बात है तो एक एम्प्लॉय आता है एंड द एम्प्लॉय स्टार्टेड सर्चिंग हिज शॉपिंग बैग फ्रॉम अनदर स्टोर सो ही सेड कि दिस वॉज अ सेकेंड टाइम कि स्टोर में ऐसा उनके साथ हुआ है सो देन अशरफ ने स्टाफर को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है स्पेशली एज ही हैड नॉट इवन कम्प्लीटेड हिज परचेज तो अशरफ ने बोला कि जो स्टाफ मेंबर था उन्होंने बोला कि दे हैड राइट टू चेक द बैग्स तो उसके बाद वो और उनके बेटे को बहुत अजीब फील हुआ एम्बेरसमेंट भी हुई बिकॉज काफ़ी लोग वहाँ पर देख रहे थे ऑफकोर्स यार आपका रेंडमली कोई आके बैग चेक करता है स्टाफ मेंबर वहाँ पे आके तो आपको एम्बेरसिंग फील तो होगा ही वहाँ पे कि जो बाकी लोग देख रहे हैं कि मे बी वो क्या ही सोच रहे होंगे आपके बारे में सो ही डिस्क्राइब कि जो बाईस्टैंडर्स थे एट द इंसिडेंट लुक्ड एट हिम एज इफ कि वो थीफ है या फिर कोई जू का एनिमल है कैसे ध्यान से उसको देख रहे हैं सो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू द मीडिया एंड फॉर्मली कंप्लेन अबाउट दिस सुपरमार्केट तो जो उन्होंने ईमेल की वहाँ पे उन्होंने बताया देन सुपरमार्केट ने अपोलोजाइज किया है इन्होंने $100 का गिफ्ट कार्ड ऑफर किया है बोलते हुए भी मेरे को हंसी आ रही है वैसे एनीवे ही टर्न्ड इट डाउन जो एक्सपेक्टेड लाइक कोई आपको भी एक आपकी फुल ऑन ऐसा बेइज्जती करता है और उसके बाद आपको बोलता है कि कंपनसेशन में ये लो चलो $100 का गिफ्ट कार्ड ले लो $100 में तो आजकल पूरी ग्रॉसरी भी नहीं आती है ये आप गिफ्ट कार्ड ले लो तो आप क्या करोगे विल यू एक्सेप्ट इट या फिर आप भी उसको टर्न डाउन करोगे मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा किया उसको टर्न डाउन करके बिकॉज कंपनसेशन अगर आपको किसी का इस वजह से करना भी है पहले तो उसका कोई कंपनसेशन होता ही नहीं है जिस वजह से अगर आप रूड बिहेवियर कर रहे हो आप काइंड ऑफ किसी को जज कर रहे हो तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है बट $100 गिफ्ट कार्ड लाइक सीरियसली मैं वो सोच रही हूँ कि क्या उनके माइंड में आया कि उनको उन्होंने $100 का गिफ्ट कार्ड दिया एनीवे ये एक्चुअली में यू नो यू नीड टू नोट अबाउट इट कि रिटेल स्टाफ के पास राइट नहीं होता है टू सर्च कस्टमर्स पर्सनल प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन सो अगर आप इफ़ दे आर ट्राई टू यूज़ फोर्स दे आर कमिटिंग अ क्रिमिनल असॉल्ट And you may also have a civil claim against them for the compensation as well. So anyway, अभी तो privacy commissioner के पास इनकी complaint भी है आगे क्या होता है नहीं पता है Well, update यहाँ पर आपको ज़रूर करेंगे But what is your take on this? मतलब अगर कुछ होता है और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं एंड $100 का गिफ्ट कार्ड आपको कोई ऐसा देता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा आगे से How will you react about it? मैसेज करके या फिर कॉल करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 0800 00 हम इज़ अ नंबर या फिर 5599 इज़ अ नंबर

0: 4:35 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं ड्राइव शो। फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो मैंने आर्टिकल शेयर किया था कि सुपरमार्केट में जिस पर्सन के बैग को सर्च किया गया एंड बाद में उन्होंने जो सुपरमार्केट है इन्होंने अपोलोजाइज किया है। इसके ऊपर मैंने आपसे पूछा था कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा। प्रशांत ने बोला है कि ही वुड टेक इट टू लीगल एक्सपर्ट कि विदाउट एनी रीज़न आके उनका बैग अगर कोई सर्च करता है वो भी बिना उनकी परमिशन लिए। और एक का मैसेज आया है कि आई वुडंट हैव लेट माई बैग सर्च इफ़ आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई वोंट लेट देम डू इट और स्ट्रेट अवे यू कैन कॉल द कॉप्स। वेल येस, सुपर मार्केट में या कहीं किसी भी शॉप पे जो न्यूजीलैंड के लॉज है ये कहते हैं कि विदाउट योर कंसेंट अ स्टाफ मेंबर, सिक्योरिटी गार्ड या स्टोर मैनेजर जो है ये फिजिकली आपका बैग सर्च नहीं कर सकते हैं, आपकी पॉकेट्स सर्च नहीं कर सकते हैं, आपकी बिलोंगिंग्स सर्च नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे सस्पेक्ट समथिंग। वो क्या कर सकते हैं, दे कैन आस्क यू टू शो द कंटेंट ऑफ योर बैग। वो आपसे जो रिसीट है या प्रूफ ऑफ परचेज है अगर आपको बाद में सर्च किया जा रहा है वो आपसे पूछ सकते हैं, आपको वेट करने के लिए बोल सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट। दे कैन रिफ्यूज़ द सर्विस और आस्क यू टू लीव द स्टोर या फिर एक ट्रेसपास नोटिस हो सकता है, बट दे कैन नॉट फोर्सफुली, अगर वो सस्पेक्ट करते हैं इन दैट केस, लेकिन वो फिर भी फोर्सफुली आपका बैग ओपन नहीं कर सकते, आपकी बिलोंगिंग्स जो है वो लेके उनको खुद सर्च नहीं कर सकते, आपको डिटेन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दे वॉन्ट टू चेक योर बैग। सो ये एक समरी ऑफेंस एक्ट है 1981 का। सो अंडर दैट अ सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है या फिर एक स्टोर एम्प्लॉय जो होता है उसके पास लिमिटेड पावर्स होती है टू डिटेन समवन इन सर्टन सर्कमस्टांसिस। फॉर एग्जाम्पल दे मे स्टॉप समवन अगर उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है कि पर्सन ने कुछ चीज़ चुराई है। द पर्पस इज़ टू होल्ड द पर्सन अंटिल पुलिस वहाँ पे आ जाए या फिर सिचुएशन जो है वो डेल्ट हो जाए। हाउएवर सस्पिशन अलोन जो है ये इनफ नहीं होता है एंड दे हैव टू एक्ट रीजनेबली। इसमें जो एक्सेसिव फोर्स या अनलॉफुल डिटेंशन होता है इससे लीगल प्रॉब्लम एक स्टोर को हो सकती है। What about security guards? अगर उनके बारे में बात करते हैं तो security guards in New Zealand, they are regulated under Private Security Personnel and Private Investigators Act 2010. वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कस्टमर को, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनका कोऑपरेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उनको उनके premises से इन सम सिचुएशन रिमूव कर सकते हैं, बट उनके पास भी सर्च पावर्स नहीं होती है। सो दे कैन नॉट से कि आई एम सिक्योरिटी, आई हैव द राइट टू सर्च योर बैग, वो उनके पास एक्चुअली में नहीं होता है। सो इन दिस केस पुलिस जो है दे हैव ब्रॉडर पावर्स अंडर द लॉ, सच एज सर्च एंड सर्वेलेंस एक्ट जो उनका है जिसमें दे मे सर्च सर्टन सर्कमस्टांसेस वारंट के साथ, लॉफुल अथॉरिटी के साथ, स्पेसिफिक सिचुएशंस जहाँ पे लॉ उन्हें अलाउ करता है वारंटलेस सर्च के लिए भी। सो सुपरमार्केट एम्प्लॉय इज़ नॉट अ पुलिस, पुलिस के पास ये पावर्स होती है डेफिनेटली, लेकिन सुपरमार्केट चाहे उसमें कोई मैनेजर है, चाहे वो सिक्योरिटी में है या फिर यू नो कोई भी है वहाँ पे, वो एक्चुअली में सर्च नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन।
1: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस, स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकेकोई, स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ। मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुस्बे टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
2: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी,
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी,
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम accurate traffic.
7: Fly Solomon Airlines.
8: Partly cloudy with light westerlies, a low of 9 overnight for Auckland. Out of town on the southern is heavy traffic to Penrose, 56 minutes to Monaco, and the southwestern is also heavy traffic from Mangere Bridge through to State Highway 1. On the northern to Constellation Drive, taking 40 minutes, an hour to Silverdale. It's pretty heavy at the moment, Northcote to Esmond Road, slow north from there, and it's heavy traffic to Albany, and it's slow to Dairy Flat.
7: Auckland direct to Vanuatu from $860 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
9: Bro, tu Vestity GWM Havel gaya tha kya?
10: Haan bhai, Jimmy Taylor aur team ne full royal treatment diya. Julian Hybrid, Classy, H6 Hybrid, Boss Level aur Tank 300. Total beast. Deal kya mila? 4.95% finance deal. Aur wo bhi sirf Vestity GWM Havel mein.
11: Jimmy Taylor aur team ke saath pao apni next adventure machine. Visit Westgate ya Henderson showroom ya check out westcityautogroup.nz. Westcity GWM Havel, where your next adventure begins.
12: Reliance Ventilation System.
13: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
12: Moisture और ventilation का problem लगता है.
13: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
12: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
14: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
15: At Speedy Signs, they look at the bigger picture. Yes, they make great signs, but more importantly, they create signage that helps your business grow. Their team works with you from concept through to installation, making the process simple and seamless. Clear strategy, strong design, professional finish every time. If you want signage that does more than just look good, give them a call on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster.
16: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
17: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800 77 HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advisor. Provider.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 4:43 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं सुपर सुपर आप यहाँ पे सुन रहे हैं और इसी सैटरडे को यानी कि 18 जुलाई को कृष्णाभिषेक एंड राजीव ठाकुर सेंटर स्टेज लेने वाले हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट में. सो इंडिया के बिगेस्ट टेलीविजन कॉमेडी सुपरस्टार्स जो है यहाँ पे ऑकलैंड में लाइव आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं. नॉन स्टॉप लाफ्टर, लाइव परफॉर्मेंस एंड मेमोरीज जो अपने साथ आप घर लेके जाएंगे. परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है. सो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सीट्स बाकी है बुक करने के लिए तो यू कैन गो टू बुक माई इवेंट डॉट को डॉट एन जेड एंड वहाँ पर अपनी जो टिकट्स है बुक कर सकते हैं. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है. इसी सैटरडे को 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये इवेंट होने वाला है शाम को. तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 021043 2720 पर. इट्स 021043 2720.

सचिन जिगर का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में आप यहाँ पे सुन रहे थे। 448 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड टिल्सन टिंसल टाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे हैं जो इस समय पर बाहर आके खुल के सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को। काफ़ी समय से वैसे वो स्ट्राइक पे हैं एंड उनको कोई अभी सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया है। एक्चुअली में सबसे पहले तो मेरे को उसकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, यू नो थ्री इडियट्स के जो करेक्टर है, आमिर खान का करेक्टर जो था फुनसुक वांगड़ू, उसी के ऊपर एक्चुअली में बेस्ड सोनम वांगचुक की लाइफ के ऊपर ही आमिर खान का जो करेक्टर है बेस्ड था। तो उसमें ओमी वैद्य जो थे चतुर के रोल में, ओमी वैद्य ने बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनाई है जहाँ पे उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट फुनसुक वांगड़ू टू डाई। जीनत अमान जो है इन्होंने बाहर आके बोला है। देन नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह जो है इन्होंने बहुत अच्छे वे से एक्चुअली में एक फॉर्मल जॉइंट स्टेटमेंट दी है एक ऑथर के साथ, अरुंधति रॉय के साथ, जहाँ पे उन्होंने उनके इमेंस करेज एंड सेंस ऑफ पर्पस को सल्यूट किया है। शबाना आज़मी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि लड़ाई आगे तक लड़नी है और वी नीड यू वांगचुक, ये उन्होंने लिखा है। अभी देओल ने कल एक्चुअली में पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे। प्रकाश राज जो है ये ऑलरेडी बीन देयर। एंड देन और भी कुछ सितारे हैं जो टाइम लेके वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फराह खान ने एक्चुअली में इसके बारे में काफ़ी खुल के बात की है, वट एवर शी फील्स अबाउट इट, उन्होंने उसके बारे में बहुत खुल के बात की है। सोनम वांगचुक जो है इस समय पर एज ऑफ टूडे उनका हंगर स्ट्राइक 18th डे पर पहुँच चुका है, जो उन्होंने 28 जून को फास्टिंग शुरू की थी एंड जहाँ पे वो दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको कुछ वहाँ पे एक एग्ज़ाम था जो लीक हुआ था जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान भी ले ली थी एंड उसके ऊपर जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो चाहते हैं एंड जो उस पोजीशन पे है एजुकेशन मिनिस्टर उसको वो चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करे, अकाउंटेबिलिटी ले बेसिकली। तो अभी तक वैसे उसकी कोई भी ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं हुई है सोनम वांगचुक के साथ, किसी भी ऑफिशियल की अभी तक मीटिंग्स नहीं हुई है। उनकी हेल्थ कंडीशंस जो है, ही लॉस्ट अबाउट 8.5 केजी ऑफ बॉडी वेट, सिग्निफिकेंट मसल मास उन्होंने लॉस किया है, ब्लड प्रेशर उनका लगातार ड्रॉप हो रहा है। हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन फाइल किया है क्रिटिकल हेल्थ की वजह से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इन्होंने वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में पटिशन वहाँ पर फाइल की है बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है वो। एंड ये प्रेशर जो है वहाँ पे एक्चुअली में बढ़ता जा रहा है। सोनम वांगचुक जो हमने ना थ्री इडियट्स में एंड में देखा था ना, आमिर खान का करेक्टर ने एक स्कूल बनाया है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है, इनोवेट की है, वो सब कुछ सोनम वांगचुक ने अपनी रियल लाइफ में एक्चुअली में किया है। इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स भी बनाए हैं। सीवियर वाटर शॉर्टेज जो था, जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट होता है, इन्होंने वहाँ पे एक आइस स्टूपा बनाया था इन 2014। सो बाय फ्रीजिंग विंटर स्ट्रीम वाटर वर्टिकली इनटू जाइन, तो इन्होंने एक टॉवर सा वहाँ पे बनाया था जो स्ट्रक्चर जो है ये मेल्ट होता है स्लोली इनटू द समर। और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर इन्होंने मोबाइल सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट बनाए हैं, मैस बहुत ही बड़ा एक सोलर हीटेड मड बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। एंड देन इनका एक वो भी है ऑपरेशन न्यू होप, जहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेट किया विद विलेज कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी एंड लोकल टेक्स्ट बुक वहाँ पे उन्होंने दी है, स्टूडेंट्स को पास रेट उन्होंने दिए हैं, एक उन्होंने अपना खुद ऑल्टरनेटिव स्कूल भी बनाया है एंड बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में साइंस को लेके भी। सो इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जो कि उस समय पर वहाँ पे है, जो उस समय पर बैठ के सबके लिए बच्चों के लिए खास तौर पे स्टैंड ले रहा है बिकॉज वो नहीं चाहते कि और बच्चे वहाँ पे अपनी जान लें। बिकॉज ये अक्सर होता है ना, बहुत प्रेशर होता है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में, जब एग्ज़ाम में बच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है तो एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है। एंड रिसेंट जो बच्चों ने अपनी जान ली है बिकॉज ऑफ दिस लीक ऑफ द पेपर, ये काफ़ी पेरेंट्स को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से ही इज़ टेकिंग दिस स्टैंड।

बच्चों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
3: और गानों में जज्बा

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

5:09 हो चुके हैं, पावर ड्राइव 5 फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। नाउ लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट। जो हमने इस बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है ना, ये हमने शनील लाल के साथ रिकॉर्ड किया है। शनील लाल जो कि फिजियन न्यूजीलैंड LGBT राइट एंड एक्टिविस्ट है, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है एंड ही इज़ बेस्ट नोन बिकॉज इन्होंने एडवोकेट किया था फॉर द बैन ऑफ कन्वर्जन थेरेपी इन न्यूजीलैंड। वैसे इनका बर्थ फिजी में नौसौरी में हुआ एंड इनकी फैमिली जो है इज़ अ मिक्स ऑफ टोके एंड गिरमिटिया फैमिली एंड यू नो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में आके स्टैंड लिया है और इनकी एक हिस्ट्री भी रही है जहाँ पे ही वॉज पुट इनटू द कन्वर्जन थेरेपी एंड ताकि इनकी सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर सके। लेकिन देन इनकी जो फाइट है वहाँ से ही नहीं, वहाँ अभी तक ये अपना तो ये अपना स्टैंड ले चुके हैं, अब ये बाकियों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो इन्होंने ये जो पॉडकास्ट हमारे साथ रिकॉर्ड किया है, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने इसमें हमें बताई है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वी लिव इन दिस सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे हम जिन वर्कफोर्स में हम काम करते हैं, आप कोई भी कंपनी ले लो, कहीं पे भी आप काम करते हैं, वी हैव अ मिक्स कम्युनिटीज़ जहाँ पे रेनबो कम्युनिटीज़ के भी लोग हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम। उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शनील लाल जो कि अपने आप को दे दैम

0: अनाउन करते हैं, अपने आप को इन्होंने डिस्क्राइब किया है एज अ ट्रांसजेंडर नॉन बाइनरी, जिसे हम हिजड़ा भी कहते हैं, और भी टर्म्स है. सो इन्होंने अपने आप को जिस वे से स्टैंड लिया है, चीज़ों के बारे में इसमें बातें की है, इट्स अमेजिंग गाइज, मस्ट लिसन पॉडकास्ट है ये. हम ना वाइल ग्रोइंग अप पता नहीं कई बार क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एंड बहुत इसमें कसूर मेरे को लगता है हमारी बॉलीवुड मूवीज़ का है. मूवीज़ हमें कई चीज़ों के कोई डिफरेंटली कॉन्सेप्ट दिखाती है, लेकिन बाद में जब हमें रियलिटी समझ में आती है, होता है ना कि कॉइन के दो साइड्स की डिफरेंट स्टोरीज होती है. तो सिमिलर ओवर हेयर एज वेल, हमने भी काफ़ी सवाल पूछे मैंने और रुजबे ने, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमें भी नहीं पता वाइल ग्रोइंग अप, जो अभी भी हम सीख रहे हैं. तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत कुछ आप सीखेंगे भी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेगी. मुझे तो कन्वर्जन थेरेपी, इवन रुजबे को भी कन्वर्जन थेरेपी ही नहीं पता था कि ये एक टर्म भी होती है. अब न्यूजीलैंड में इसको बैन किया गया है, लेकिन पहले वो न्यूजीलैंड में थी. सो व्हाट इज़ दिस फस ऑल अबाउट? शनील लाल डिस्कस्ड एवरीथिंग, एंड वो 2023 में यंग न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं. उनको ये खिताब यहाँ पे न्यूजीलैंड में मिल चुका है. और भी बहुत सारे देखा जाए तो इनके पास खिताब है बहुत सारी चीज़ों में. जब इन्होंने स्टैंड लिया तो बहुत कुछ इन्होंने एक्चुअली में हासिल किया है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, एंड ही इज़ वेरी यंग, एक्चुअली ही इज़ वेरी यंग. तो आप इनकी जब बातें सुनेंगे तो आपको और भी आइडिया होगा कि इसमें हमने क्या क्या बातें की है. तो थोड़ा सा बिट मैं आपको एक्चुअली में सुनाती हूँ, जहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बताने की थोड़ी सी कोशिश की है. सो वो बिट मैं आपके लिए यहाँ पे प्ले करने वाली हूँ.
1: What they would call in simple terms is pray the gay away. And it's essentially, you know, these practices that aim to change someone's sexuality or gender from either being, you know, gay to straight or transgender to not transgender. And it was a practice that was legal in New Zealand up till 2022 when we got the...
2: What were they doing exactly?
1: No, you're okay. So some of the practices that have happened in New Zealand but probably were not happening, you know, in the 2020s were things like injecting someone and, you know, giving them injections to the point that they were paralyzed, or putting giving people electric shocks, essentially. So there was a lesbian woman named Joanne Bellingham, who's still alive, who was given multiple electric shocks in a Christchurch hospital to change her from being lesbian to being a straight woman. So that used to happen. There would be, for example, and this is, you know, a crazy thing to do, is that you give people nausea-inducing drugs. So you give people drugs that make them vomit and make them watch same-sex porn. So that there's an
0: assault. And और भी बहुत कुछ एक्चुअली में इन्होंने शेयर किया है, एंड जो बातें इन्होंने शेयर की है ना, काइंड ऑफ उस समय पर ऐसा शॉक फील हो रहा था कि कई बार किसी को क्या क्या चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है जस्ट टू बी इन द सोसाइटी, एंड और कितना स्ट्रगल होता है किसी के लिए अपनी एक्सेप्टेंस के लिए कि सोसाइटी में वो जो है उनको उसी वे से एक्सेप्ट किया जाए. एंड नॉट जस्ट इन सोसाइटी, आई विल से इन द वर्क प्लेसेस एज वेल. वर्क प्लेसेस में भी उनको कंटिन्यू फाइट करना पड़ता है. सो देयर आर सो मैनी लेयर्स टू दिस एक्चुअली में. तो जो आपको तभी समझ में आती है जब आप उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, जब आप उसके बारे में सुनना पढ़ना शुरू करते हैं. सो मे बी दिस इज़ अ स्टार्ट टू लर्न अबाउट इट. सो ब्रेकिंग बैरियर्स, हमने इस पॉडकास्ट का नाम रखा है शनील लाल ऑन LGBTQ राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटिंग हिम, ये सब कुछ. तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना है, देर आर मेनी वेज. यू कैन गो टू रोवा ऐप, वहाँ पे जाके अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुजबे सर्च कीजिए, टॉप पे ये आपको पॉडकास्ट मिलेगा. स्पॉटिफाई पे सर्च करो अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुजबे, रेट पे कर देना थोड़ा सा वहाँ पे. देन यू कैन गो ऑन एप्पल म्यूजिक, देन यू कैन गो ऑन अमेजोन म्यूजिक, या फिर ड्राइव लिख के भेजो. अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ड्राइव लिख के भेजो 5599 पर. आपको हमने फॉर्म का लिंक तो वहाँ पे रखा ही है ट्रिप वाला, लेकिन साथ में अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट का लिंक भी हमने वहाँ पे रखा है. सो वो जाके आप वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट द फुल एपिसोड. इट इज़ अ मस्ट लिसन एपिसोड. गेट द लिंक एंड जब भी आपको टाइम मिले इसको ज़रूर सुनिए. सो आई ट्राई टू क्रिएट फ्यू चैप्टर्स ओवर देयर, और भी चैप्टर्स बनाऊंगी सो दैट यू नो कि वॉट इज़ नेक्स्ट दैट्स कमिंग अप. बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है. प्यूबर्टी ब्लॉक्स के बारे में बताया है, ऐसी टर्म्स बताई है जिसके बारे में आइडिया नहीं है कभी.
3: प्राणप्रिय

5:27 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ लोगों ने एकदम सही टाइम पे कैच कर लिया गाना करण औजला का जो अभी अभी आपके लिए प्ले हुआ। वेल यू आर इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास। वैसे इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं तो आपको बता दूं कि गरबा नाइट भी होने वाली है। लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर गरबा विद राज गढ़वी ये लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो मार्क योर कैलेंडर, सैटरडे 1 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है महात्मा गांधी सेंटर में। टिकट्स बहुत जल्दी जा रही है, अपना स्पॉट सिक्योर कर लीजिए इवेंट्स tickets.kurudnz पे जाके। सो इवेंट्स tickets.kurudnz दोनों जगह पे एस है, इवेंट्स tickets.kurudnz वहाँ पे जाके अपनी टिकट्स आपको बुक करनी है। स्वप्निल शाह के साथ बात कीजिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज है 0224394736 पर। इट्स 0224394736। तो आते हैं आज के सेगमेंट पे। आज का जो सेगमेंट है वो है सिचुएशनशिप वाला। सिचुएशनशिप में वो सेगमेंट है, इसका मतलब है कि क्या होता है कि इसमें आपको हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, आप इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की शिप में हैं और वहाँ पे आपका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है कि ये आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका हो या हो रहा हो। सो आज की सिचुएशन ये है कि आपके किसी दोस्त ने या फिर एक्वेंटेंस ने या फिर कोलीग ने आपसे कोई चीज़ बोरो की है, वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कि मेरे को इतनी दूर जाना है तो मेरी गाड़ी में इतनी सीट्स नहीं है तो मेरे को गाड़ी चाहिए, फैमिली मेम्बर आए हैं गाड़ी चाहिए, आपसे गाड़ी ली है, या फिर आपके कोई कपड़े ओकेजन के लिए, अक्सर होता है ये कि ऐसा ओकेजन है तो मेरे को या तेरी ये जैकेट मिलेगी या फिर तेरी ये ड्रेस मिलेगी, ऐसा समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब वो वापस करते हैं इट इज़ नॉट इन द राइट कंडीशन। हो सकता है आपकी गाड़ी है वो, अगर तो गाड़ी में मतलब जैसे आपने उनको दी थी वैसी नहीं है वो, अगर आपने पेट्रोल फुल करा के दिया है तो पेट्रोल फुल नहीं है एंड गाड़ी भी थोड़ा मतलब उसमें गंद है गाड़ी में, व्हाट यू गोना डू इन दिस सिचुएशन। या फिर अगर आपने कपड़े दिए हैं तो वो भी थोड़े ऐसा गंदे हैं, विदाउट क्लीनिंग उन्होंने आपको कपड़े वापस दे दिए हैं, या पसीने की स्मेल है उसमें इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वुड यू कन्फ्रंट योर फ्रेंड? बिकॉज कन्फ्रंट करने में रिलेशन भी ख़राब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। या फिर आप उसको सिर्फ इग्नोर कर देंगे या क्या करेंगे? या फिर तीसरी ऑप्शन ये भी होगी कि नेक्स्ट टाइम से आप कुछ देंगे ही नहीं उसको, कोई बहाना बना देंगे। आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? अगर आपके साथ ये होता है तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कॉल करके या मैसेज करके शेयर कीजिए 0800004866। एंड मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई इस सिचुएशन के थ्रू गया होगा जहाँ पे आपने कोई चीज़ किसी को दी होगी एंड आपको वो चीज़ मे बी जिस वजह से आपने दी थी वापस वैसे नहीं मिली है। कोई स्टोरी है आपके पास, कोई कहानी है विदाउट नेमिंग अ पर्सन या योर सेल्फ, आप वो भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 0800004866 हम पर। अगर आप लेकिन इस सिचुएशन में हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो आज की सिचुएशन है ये यहाँ का टेक्स्ट मैसेज है, हमारे पास आज टेक्स्ट मैसेज आया। आज कन्फेशन डे तो नहीं है लेकिन ये मैसेज आया है जिन्होंने ये बोला है कि इनके साथ ये हुआ है, तो थॉट कि इसी को क्वेश्चन बनाती हूँ कि इनके साथ ये हुआ है, इन्होंने मुझसे सलाह पूछी है, मुझे इन्हें क्या सलाह देनी चाहिए। इन्होंने गाड़ी के बारे में यहाँ पे पूछा है कि इनकी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था एंड गाड़ी जो थी इनकी वो थोड़ी अंदर से गंदी भी थी, मतलब ये हमेशा अपनी गाड़ी को टिप टॉप रखते हैं। सो इस पर्सन को क्या करना चाहिए आपको लगता है? कि उस अपने फ्रेंड को कन्फ्रंट करना चाहिए बिकॉज इनको हेजिटेशन है कि अगर कन्फ्रंट किया तो दोस्ती ख़राब हो सकती है। सेकेंड मुझे लगता है कि मे बी ये लेसन हो सकता है, अगर ये अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहते तो मे बी इनको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना चाहिए कि नहीं देंगे आगे से। आप इनको क्या सजेस्ट करते हैं कि इस सिचुएशन में इन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए? व्हाट ही शुड बी डूइंग ओवर हियर? 5599 पर या फिर कॉल करके भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। वैसे ऑल्सो बता दूं कि यहाँ पे इलेक्शंस होने वाली है, तो ऐसे केस में इलेक्शंस के टाइम पे
ईजी वोट कार्ड जो है इसके बारे में भी बात हो रही है। सो ईजी वोट कार्ड जो है, पहले क्या होता था कि काफ़ियों को ऐसा ईमेल पे चला जाता था, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही है। न्यूजीलैंड वोटर्स जो है, दे मे सून नीड टू एक्टिवली रिक्वेस्ट देयर ईजी वोट कार्ड इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिकली रिसीविंग वन इन द मेल। अभी इलेक्शन से पहले आ जाता है वो। सो जो प्रपोजल था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कमीशन प्लान, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वोटिंग प्रेस को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एंड ज़्यादा लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करें। ईजी वोट कार्ड क्या है? एक कार्ड है जो कि भेजा जाता है बिफोर इलेक्शन, जिसमें आपका नाम होता है, आपके इलेक्ट्रोड के जो डिटेल्स है ये होते हैं, ईजी वोट नंबर जो है आपका वो होता है। इससे पोलिंग स्टाफ को हेल्प मिलती है टू फाइंड योर डिटेल्स फास्टर जब आप वहाँ पे जाते हैं वोट करने के लिए। सो बट यू कैन स्टिल वोट विदाउट इट, अगर आपके पास ईजी वोट कार्ड नहीं है आप फिर भी वोट कर सकते हैं। सो चेंज अभी जो हो रहा है वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, प्रिंटिंग पोस्टेज कॉस्ट जो है रिड्यूस करेंगे, पेपर वेस्ट को रिड्यूस करेंगे एंड रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट मैनी पीपल ऑलरेडी यूज़ द ऑनलाइन सर्विसेज एंड। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग कंसर्न भी है, कुछ क्रिटिक्स है, इनका ये कहना है कि दिस माइट अफेक्ट ओल्डर न्यूजीलैंडर्स जो ऑनलाइन लेस कंफर्टेबल है एंड पीपल विद लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, दोज हु मे नॉट थिंक अबाउट रिक्वेस्टिंग अ कार्ड एज वेल। सो वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो ईजी वोट कार्ड है ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है वोट करने के लिए। इवन इफ़ यू लूज इट, फॉरगेट इट, या फिर आपको कभी नहीं मिलता है, यू स्टिल हैव द राइट टू वोट। मेरे पास यहाँ पे जैक्सन का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है कि जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इन दैट केस आई विल मेक एक्सक्यूज टू कीप द रिलेशनशिप। ओके, कि रिलेशन बनाने के लिए आप वो एक्सक्यूज़ कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आप एक्सक्यूज़ बना देंगे। मेरे पास यहाँ पे ऑल्सो गरिमा ने मैसेज किया है कि उनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है उनकी गाड़ी को लेके एंड उन्होंने बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था अपनी फ्रेंड को एंड उसके बाद से उसकी फ्रेंड ने पेट्रोल के अमाउंट जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया। यही होता है कई बार, ये गरिमा का मैसेज है और जैक्सन ने दिया। आपके पास कोई डिफरेंट इसके लिए है तो आप भी मैसेज कर सकते हैं 5599 पर। Hollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: 547 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. रिमेंबर इसी शनिवार को 18th जुलाई को बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट होने वाला है. कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट में. नॉनस्टॉप लाफ्टर के लिए कुछ टिकट्स बाकी है तो जल्दी से बुक करा लीजिए. सैटरडे 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आपको पहुँचना है. सो अपनी टिकट्स अगर आपको बुक करवानी है बुक माई इवेंट और कुरियर NZ पे जाएगा एंड वहाँ पे जाके अपनी टिकट्स आप बुक कर सकते हैं.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers.
3: ट्रेंड मेकर्स आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. ट्रेंड मेकर्स में अक्सर जिनके बर्थडे होते हैं उनको शाउट आउट हम देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. एंड कई बार अगर नहीं भी किसी का बर्थडे है तो ऐसे ही किसी सेलिब्रिटी के बारे में या फिर किसी राइटर लिरिसिस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. आज जो बात करने वाली हूँ मैं, आज एक स्टोरी राइटर के बारे में बात करने वाली हूँ. अक्सर मूवीज़ देखते हैं, डायरेक्टर्स एक्टर्स के नाम पता होते हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे है कौन उनके नाम हमें नहीं पता होते हैं. एंड दिस इज़ वेरी यंग एक्चुअली में स्क्रीन राइटर एंड स्टोरी राइटर एज वेल, जिसका नाम है कनिका ढिल्लो. सो कनिका जो है एक्चुअली में एक क्लियर एवोल्यूशन लेके आई अपनी राइटिंग में. इन्होंने मैसिव ब्लॉकबस्टर्स दी है सिनेमा को. इसकी कंट्रीब्यूशन जो है इट स्टार्टेड अर्ली 2011 में. सो 2011 में कनिका ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ साइन किया डील. सो उससे पहले इन्होंने अपने कॉलेज में बहुत सारे लेवल्स पे थोड़ा बहुत उसने लिखना शुरू किया, कहानियाँ उसने बहुत सारी लिखी. बट देन हमेशा से ड्रीम था बॉलीवुड में एंटर करने के लिए. तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ कनिका को चांस मिला. शी स्टेप्ड इनटू को राइटिंग द स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग फॉर शाहरुख खान. सो यू नो शाहरुख खान की जो फेवरेट लाइन है मूवी में,

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Antenna. Frequency.

बेनी दियाल की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे ऑलवेज कभी कभी मूवी से, जो कि 2011 में आई थी। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कनिका ढिल्लों टुडे। कनिका जो है ये कहानियां लिखती है, ये राइटर है, स्टूडियो राइटर है, स्क्रीन प्ले ये लिखती है, डायलॉग्स भी ये लिखती है। ऑलवेज कभी कभी एक्चुअली में 2011 में मूवी आई थी, जो यंगस्टर्स को फोकस करके मूवी बनाई गई थी। इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टाइम, लेकिन मेरे को लगता है कि गलत टाइम पे रिलीज हुई थी ये मूवी। सो इस मूवी में भी शी कंट्रीब्यूटेड इन राइटिंग द मूवी। टीन रोमांस मूवी थी बेसिकली ये। एंड देन ऑल्सो 2015 में कनिका ने एक और मूवी लिखी जिसका नाम था साइज ज़ीरो। ये था अबाउट अ वुमन डीलिंग विद अ वेट लॉस क्लिनिक डायनामिक्स। मूवी इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, बट काफ़ी लोगों ने पसंद किया। ये तमिल तेलुगु बायलिंगुअल प्रोजेक्ट था कनिका ढिल्लों का। एंड देन मन मर्जिया मूवी हैपन्ड। मन मर्जिया वॉज अनदर लेवल मूवी जिसको लिखा था कनिका ढिल्लों ने। इट वॉज रिटन बाय होल मूवी वॉज रिटन बाय कनिका ढिल्लों। यू नो कनिका ढिल्लों ने अपनी लाइफ में मूवी सेट से पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी इसने राइटिंग्स लिखी, इसने बुक्स भी लिखी थी। बॉम्बे डक इज़ अ फिश, ये एक एक सटायर है बेसिकली, जो एक फिक्शन नॉवल है वो इन्होंने लिखा था। देन शी रोट अबाउट अ फैंटसी सुपर हीरो बुक जो कि काफ़ी यंग लोगों के लिए था। शिवा एंड द राइज ऑफ शेडोज ये इन्होंने लिखा। द डांस ऑफ दुर्गा ये बुक इन्होंने लिखी है। मन मर्जिया मूवी, दो मन मर्जिया जो है एक मैसिव क्रिटिकल कॉलिंग कार्ड था। बट शी सेड कि जो स्क्रिप्ट थी इट टुक ओवर 4 years टू गेट ग्रीन लाइट। इवन वर्स, फिल्मिंग जो थी ये एक्चुअली स्टार्टेड विद इंटायरली डिफरेंट कास्ट। सो पहले कुछ और एक्टर्स को लिया गया था, उस हिसाब से स्क्रिप्ट थी, देन कुछ और डिफरेंट एक्टर्स को लिया गया एंड देन उनको थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ा। एंड शी वॉज बिट हेजिडेंट अबाउट इट। दो जो प्रोडक्शन ग्राउंड था ये हॉल्ट में आ गया था बिकॉज दे हैड टू कम्प्लीटली रीकास्ट एंड देन रीशूट द सीन्स विद तापसी पन्नू, विकी कौशल एंड अभिषेक बच्चन। बट वो मूवी काफ़ी अच्छी चली। मन मर्जिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मूवी काफ़ी लोगों ने इन्जॉय की। एंड दैट मूवी वॉज एक्चुअली रिटन बाय कनिका ढिल्लों।

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
5: Thank you.
6: It's all I can think about.
5: What does it sound like?
6: Yeah, I'd rather not.
5: Go on, why don't you have a crack?
6: Okay, got a plumbing problem.
5: Oh, I need a bit more than that.
6: They've got your back.
5: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
6: Oh, okay.
7: There's no better plumber to give it a crack.
5: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
6: No, I want a plumber.
8: Advertise with
9: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
10: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Lowest prices are just the beginning.
11: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
12: The meatbox.co.nz, the meatbox. That's what I said. I don't want anything else instead. The meatbox.co.nz.
13: The meatbox delivers restaurant quality meat right to your door. And in July, all purchases go in the draw to win free meat for a year. That's a prize worth over $5,000. T's and C's apply.
12: The meatbox.
14: TheMeatbox.co.nz. Fresh meat delivered fresh to your door.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
17: ट्रेंडमेकर्स में आज हम स्टोरी राइटर, जो कि मूवी की कहानियां लिखती है, कनिका, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कनिका ढिल्लो के बारे में 2018 में अनदर हिट मूवी इन्होंने लिखी, मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी तो नहीं थी, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया इस मूवी को, केदारनाथ। सो मैसिव मूवी थी ये, एंड इन्होंने एक्चुअली में जो मूवी के डायरेक्टर है अभिषेक कपूर, इनके साथ को राइट किया था इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को। सो इस मूवी के लिए ये इन्होंने एक फिक्शनल इंटरफेथ लव स्टोरी लिखी थी, एंड जिसमें जो करेक्टर्स थे प्ले विच वॉज प्लेड बाय सारा अली खान एंड सुशांत सिंह राजपूत, ये दोनों थे इस मूवी में। इन हर राइटिंग शी डिज़ाइंड अ रोमांस टू मिरर द लैंडस्केप। सो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने जो मोकू का करेक्टर है, जो कि सारा अली खान ने प्ले किया था, उसे लिखा था टू रिप्रेजेंट द वाइल्ड अनटेम्ड नेचर ऑफ गंगाज रिवर, वाइल्ड जो मंसूर का करेक्टर था प्लेड बाय सुशांत सिंह राजपूत, वो काम एंड रॉक की तरह भी वो था एट द सेम टाइम। सो व्हेन दे कोलाइड द रिवर काम्स डाउन एंड द रॉक सॉफ्टन्स, लाइक रॉक उस समय थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो इन दोनों के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए इस पूरी की पूरी मूवी की कहानी इन्होंने लिखी थी। मूवी को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, काफ़ी इंटेंस कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जहाँ पे केस उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी गया था। लेकिन शी स्पोक ओपनली अबाउट द इंटेंस प्रेशर जो उनके ऊपर था स्क्रिप्ट को लेके। उन्हें वहाँ पे काफ़ी लेबल्स भी मिले कि ऐसी स्क्रिप्ट उन्होंने क्यों लिखी, ऐसी कहानी वो क्यों लेके आई है। बट देन अगेन शी वॉज की मूवीज़ की कहानियाँ, बुक्स की कहानियाँ, एवरीथिंग जो फिक्शन होता है, इनको एज अ सिनेमा, एज अ एंटरटेनमेंट ही इंजॉय करना चाहिए। बट रिगार्डलेस, केदारनाथ को आज भी लोग इस मूवी को बहुत पसंद करते हैं।

0: बुला दी।
1: ट्रेंड मेकर्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे आपके सुपर सिटी में राहत फतेह अली खान बहुत ही जल्दी परफॉर्म करने वाले हैं 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में। लास्ट मोमेंट टिकट्स आप खरीद सकते हैं dryTickets.com पे जाके अपना लक आजमा सकते हैं अगर टिकट्स आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। आज ट्रेंड मेकर्स में हम कनिका ढिल्लो का काम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेल कनिका ढिल्लो जो कि एक स्टोरी राइटर है, मूवीज़ की कहानियाँ लिखती है, एंड हम उनकी लिखी हुई कहानियों के गाने आज यहाँ पे सुन रहे हैं। अभी अभी हसीन दिलरुबा का गाना आपने यहाँ पे सुना, जो कि अल्टीमेट क्राउन ज्वेल अपने आप को वो कहती है कि उनके काम में है, उनके यूनिवर्स में है। बिकॉज यहाँ पे एक उन्होंने रोमांटिक थ्रिलर जैसे कि एक नॉवल की कहानी होती है, वैसे ही नॉवल की कहानी उन्होंने मूवी में उतारने की कोशिश की। वेल उनको जो इंस्पिरेशन मिली थी टू स्ट्रक्चर हसीन दिलरुबा एज अ लव लेटर टू हिंदी पल्प फिक्शन लिटरेचर, शी सेड कि शी पेड अ होमेज टू लेजेंडरी इंडियन क्राइम नॉवलिस्ट आइकॉन्स लाइक सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, एंड शी वॉन्टेड टू मूव अवे फ्रॉम जो वेस्टर्न थ्रिलर ट्रॉप्स होते हैं लाइक सिडनी शेल्डन, एंड इसके कारण वो जो मिस्ट्री थी इंटायरली इंडियन हार्टलैंड में थी। इसमें उन्होंने एक फिक्शनल ऑथर का भी यूज़ किया था, दिनेश पंडित। जो प्लॉट है कहानी का, इट रिवॉल्व अराउंड क्राइम नॉवलिस्ट जिसका नाम है दिनेश पंडित। जब मूवी बाहर आई, ऑडियंस जो थी ना, ये बुक शॉप्स में गई थी नॉवल्स को ढूंढने के लिए कि दिनेश पंडित की नॉवल कौन सी है जो इसमें करेक्टर पढ़ती है, ओनली टू रियलाइज कि दिनेश पंडित वॉज कम्प्लीटली मेड अप बाय कनिका। सो इतना इम्पैक्ट इस मूवी ने क्रिएट किया था कि इसमें जो नॉवलिस्ट की बात हुई थी, लोग एक्चुअली में उसकी कहानियाँ जाके सर्च कर रहे थे। अब किस रीज़न से सर्च कर रहे थे, क्योंकि मूवी में जिस रीज़न से वो नॉवल है वो अलग ही रीज़न है, तो किस रीज़न से वो सर्च कर रहे थे वो नहीं पता है। एंड देन शी रोट फिर आई हसीन दिलरुबा 2024। मेरे को दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली में। मेरे को दोनों मूवीज़ की कहानी जो थी ना, ये जस्टिफाइड लगी थी। एक सीक्वल आता है ना तो वो जस्टिफाई करता है। एंड या तो ये कहानी जो फिर आई हसीन दिलरुबा, बेसिकली वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हसीन दिलरुबा ख़त्म होती है। एंड दोनों मूवीज़ ने एक्चुअली में काफ़ी अच्छा किया था, बॉक्स ऑफिस में भी काफ़ी अच्छा किया था। तापसी पन्नू इस मूवी में थी, एंड जो सेकंड पार्ट था एक्चुअली में, उसमें सनी कौशल भी थे।

अरिजीत सिंह की आवाज में डंकी मूवी का गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे, जो कि अनदर मूवी है कनिका ढिल्लो की लिखी हुई, जिसमें हमने शाहरुख खान को देखा। तो शाहरुख खान के साथ दो बार काम किया है वैसे कनिका ने। मैसिव करियर माइलस्टोन था, बिकॉज कोलैबोरेट किया इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान एंड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ। सो ये एक क्रिएटिव कोलैबोरेशन भी था, जो वहाँ पे उन्होंने को राइट किया स्क्रिप्ट को अलॉन्ग साइड राजकुमार हिरानी एंड अभिजीत जोशी के साथ। सो ये अपने स्पेसिफिक स्टाइल के साथ फेमस है, सोशल सटायर के साथ, जैसे कि थ्री इडियट्स पी के। सो दैट्स हाउ कनिका शी ब्रॉट हर राइटिंग स्किल, एक इमोशनल करेक्टर्स जो उसने वहाँ पे टेबल पे रखे। सब्जेक्ट इनके लिए बहुत मैटर करता था, जो वर्ड डंकी है, डोंकी फाइट जिसका नाम है, ये उन्होंने इसके ऊपर कहानी लिखना, इस सब्जेक्ट के ऊपर कहानी लिखना, शी थॉट कि इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग एंड शी हैज सीन दिस एज वेल। तो इसके लिए उनको ये था कि इसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग माइग्रेंट ट्रेजडीज दिखानी है, वहाँ पे एक लाइट हार्ट ह्यूमर भी चाहिए। तो इसने वो दोनों चीज़ें मेरे को लगता है बहुत ही अच्छे वे से इस मूवी में रखी थी। एंड देन जो अभी गाना आप सुनने वाले हैं, दो पत्ती, इस मूवी का गाना आप सुनने वाले हैं, जिसमें हमने इस मूवी को 2024 में देखा था। कृति सैनन इस मूवी में थी डबल रोल में। ये इसका प्रोडक्शन डेब्यू भी था कनिका ढिल्लो के साथ में, लिखा भी था एंड इट वाज अ प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। सो मैसिव पर्सनल माइलस्टोन उनके लिए हम कह सकते हैं, बिकॉज शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद लैक ऑफ क्रिएटिव कंट्रोल स्क्रीन राइटर्स। सो उसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस इस मूवी के साथ लॉन्च किया, जिसका नाम है कथा पिक्चर्स, सो दैट वो फुली मूवी खुद ही प्रोड्यूस कर सके, अपनी लिखी हुई मूवी। फिर इसने पार्टनर किया कृति सैनन के साथ एंड शी ऑल्सो मेड हर प्रोडक्शन डेब्यू। सो इसके बाद यू नो इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले एक्चुअली में लिखा था, एंड जहाँ पे इनको एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो दोनों रोल्स को बहुत ही ब्यूटिफुल कर सके, एंड दैट्स हाउ शी गॉट इन टच विद कृति सैनन। सो या अगर आपने दो पति मूवी नहीं देखी है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वॉच एक्चुअली में, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स इंडिया ओरिजिनल मूवी थी ये 2024 में, जहाँ पे बेस्ट स्टोरी के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था। वेल ये गाना सुनेगा और इसी के साथ मेरा वक्त हो चला है यहीं पे आपको टाटा बाय बाय कहने का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखेगा। रिमेंबर नया पॉडकास्ट भी आ चुका है एंड इस पॉडकास्ट को भी ज़रूर जाके सुनेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, ब्रेकिंग बैरियर्स। एंड थैंक यू सो मच विनय फॉर यहाँ पे मैसेज करने के लिए, इन्होंने बोला है कि मैंने पॉडकास्ट सुना, इट टच्ड हर हार्ट एंड इनको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आई है, थैंक यू सो मच। सो अगर आपको भी पॉडकास्ट सुनना है या फिर ट्रिप के लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर। और मेरी और आपकी मुलाकात अब होने वाली है कल। Bye.

0: Happy Hour on Hum.
1: We khab ne aankhein kholi hain, kya mood aaya hai kahani mein? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: Happy Hour on Hum.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: ओ हीरो, कौन सी नई गाड़ी ले रहा है?
6: ब्रो, वेस्ट सिटी ओमुडा जेकू गया था, फुल फिल्मी एंट्री। ओमुडा C5 फ्यूचरिस्टिक, जेकू J7 एलिगेंट, और ओमुडा E5 और ओमुडा 9 का क्या ही कहना, डायलॉग तो सॉलिड है। ऑफर क्या मिला? ओमुडा जेकू की रेंज पे मिल रहा है अप टू $4,000 ऑफ।
7: जिमी टेलर और टीम के साथ पाओ अपना नेक्स्ट स्टाइल स्टेटमेंट। विजिट हेंडरसन या वेस्टगेट शोरूम और वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप .nz। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
8: आपके सामने एक रेड बटन है,
9: दबा दिया।
8: नहीं दबाना था।
10: The madness is back, धमाल 4।
11: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
10: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
12: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
10: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
13: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आके कैसे आ जाता।

0: Happy Hour on Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Midweek Masala.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मसाला मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है। रणवीर सिंह का जो धुरंधर है वो स्ट्रगल कर रहा है जापान में डिस्पाइट द फ्रेंचाइज अर्निंग 3 करोड़ ग्लोबली। ये धुरंधर अभी काफ़ी वीक ओपनिंग रहा है जापान में। फिल्म कहा गया है कि वॉज ओनली सोल्ड ओनली अराउंड 900 टिकट्स ऑन इज फर्स्ट डे, और ये हाईलाइट चैलेंज करता है ऑफ ट्रांसलेटिंग डोमेस्टिक सक्सेस इनटू ओवरसीज मार्केट्स। और कहा गया है कि ये कंट्रास्ट बिटवीन ग्लोबल और जापानीज परफॉर्मेंस हैज़ ड्रोन इंडस्ट्री अटेंशन। आई डोंट नो कि कितने सारे बॉलीवुड लवर्स रहते हैं जापान में, लेकिन कहा गया है कि इट इज़ अ वेरी स्लो स्टार्ट। रामायणा ट्रेलर का प्रीमियर होगा एट सैन डिएगो कॉमिक कॉन। ये फर्स्ट ट्रेलर ऑफ रणबीर कपूर रामायणा डेब्यू करेगा एट सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026, और ये अनवेल किया जाएगा इंटरनेशनली बिफोर इट्स रिलीज इन इंडिया। एक्टर्स रणबीर कपूर, यश आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द इवेंट। और कहा गया है कि ये मूव सिग्नल करता है कि मेकर्स अब मोर एम्बिशियस हो रहे हैं टू पोजिशन द फिल्म फॉर ए ग्लोबल ऑडियंस। मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ।

नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। बातें हो रही है आज बॉलीवुड न्यूज को लेकर, आज मसालेदार चटपटी बॉलीवुड खबरें आप तक मेल कर आ रहा हूँ। बॉलीवुड रिपोर्ट कार्ड 2026 हिंदुस्तान टाइम्स ने रिव्यू किया है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। धुरंधर 2 इमर्ज्ड एज द ईयर्स बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, काफ़ी पैसे कमाए हैं, लोगों का रिएक्शन और रिस्पॉन्स भी बहुत ओवरवेलमिंग रहा है, पॉजिटिवली रहा है। फिल्म contributed more than half of Bollywood's total box office earnings. Aur ye director Aditya Dhar ko credit diya gaya hai with delivering one of the industry's biggest commercial successes. Aur aise hi filmein aage chalkar bane, yahi industry critics ka manna hai ya expectation hai. Main Krish aapke saath de raha hu, sunte raho Midweek Masala.

0: वेंसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब.
1: You're listening to Midweek Masala, जो every Wednesdays को लेकर आते हैं बॉलीवुड खबरें आपके लिए. अरशद वारसी ने कहा है कि he's juggling multiple major films in 2026 और इसका लाइनअप में included है King, Welcome to the Jungle, Dhamaal 4 और Golmaal 5. इन्होंने कहा है कि every new project के साथ pressure और uncertainty आता है, लेकिन ये बहुत grateful है कि इनके पास opportunities है despite the challenges. जहाँ पर industry में इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, तो वहीं पर अगर इनको काम मिल रहा है, ये बहुत आभारी है और शुक्रगुजार है इनफैक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इनको मिला है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है.
2: Sweetie, please.

0: Cafe on Hum. Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
1: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
0: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
1: Mashallah, bahut acha, very nice.
2: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
3: क्या बनाते हैं इन kebab को special, Chef Alex?
2: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
3: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
2: ये है अम्मा's kebab's promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
3: 100% authentic and pure as mother's love.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Hum. Night Cafe on Hum. Thoda hotke, thoda spicy. Ye hai midweek masala.
11: Midweek masala aapke liye ja rahi hai aur main Krish aapke saath de raha hu. Welcome back everyone. To those who have just joined in, thank you and welcome to the show. Salman Khan is bar court mein hai, lekin इस बार ये एप्लीकेशन लेकर गए हैं कोर्ट, और कोर्ट ने बहुत ही पोलाइटली इनके एप्लीकेशन को डिक्लाइन भी कर दिया है. ही वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर अर्जेंट रिलीफ इन द काला हिरन केस. सलमान ने इस फिल्म को चैलेंज किया है कि ये फिल्म इनफेक्ट जुड़ा है इनका ब्लैक बक केस के साथ और विदाउट हिज ऑथोराइजेशन. वहीं पर कोर्ट ने बगैर कोई इंटरिम रिलीफ ग्रांट किए इस मैटर को शेड्यूल किया है फॉर लेटर, और ये लीगल डिस्प्यूट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन कोर्ट. Aamir Khan ne reunite kiya with Rachel Shelley. Aamir Khan's reuniting with his Lagan co-star Rachel Shelley at the London Indian Film Festival. Bahut hi viral ho raha hai. It has delighted fans of the Oscar nominated classic. Aur reunion ke photos quickly getting a lot of online attention. Main Krish aapka saath de raha hu.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai. This Saturday, 18th July, Auckland witness karega one of the biggest comedy events, jisme Krishna Abhishek aur Rajiv Thakur ko live on stage dekhne ka mauka hai for the great comedy night. India ke do biggest television comedy superstars ko live dekhne ka mauka rahega. Non-stop laughter, hilarious live performances, interactive audience moments, aur aise memories yahan par hoga jo aap cherish karenge with your loved ones. To perfect family entertainment for all ages, family, friends, colleagues, या फिर स्पेशल समवन के साथ यहां पर जाए. शो कुछ ही दिनों में होगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रह गए हैं, तो लास्ट मिनट का इंतजार ना करें, टिकट्स आज ही सिक्योर करें बिफोर इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट. आफ्टर पे अवेलेबल है. बुकिंग के लिए असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर 021-043-2720 पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. ये शो 18th यानी 18 जुलाई को होने जा रहा है सैटरडे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स के लिए आप bookmyevent.co.nz पर जाए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: From climate change to a lack of loose change. From small changes to changes in global power. Change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News. Change is in the air.
3: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
4: We've got double glazing.
3: Have you still got that cold, damp feeling?
5: Yeah, we do.
3: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
10: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
11: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
12: हम
0: नाइट कैफे ऑन हम
13: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ इमेजिन कीजिए कि आप टुक टुक ड्राइव्स पर जा रहे हैं टू द बीच क्लब वाइब्स ये हो पा रहा है बाली और बैंकॉक गेट अवे विद सैंडी एंड रुस्बे जो मार्च 2027 में होने जा रहा है ये आपका एक चांस है टू एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बैंकॉक एंड बाली इन वन इनक्रेडिबल गेट अवे अल्टीमेट टू कंट्री एडवेंचर ये है वाइब्रेंट स्ट्रीट्स ऑफ बैंकॉक एक एंजॉय करने का मौका विद एक्साइटिंग टुक टुक राइड्स मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बसलिंग मार्केट्स देखने का मौका इनक्रेडिबल स्ट्रीट फूड खाने तो बहुत मज़ेदार होंगे अनफॉरगेटेबल नाइट लाइफ भी देखने का मौका है और फिर एस्केप कीजिए टू द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ बाली Stunning dry terraces or waterfalls, breathtaking sunsets, dekhne ka mauka, relax at world famous beach clubs, aur picture jo famous swing ke saath hota hai, wo bhi karne ka mauka hai, and experience the island's unique culture and beauty. Both of these countries are amazing. Aap yahan par ja sakte hain, travel kar sakte hain with Sandy or Rusbe, iconic sites, hidden gems, amazing local cuisine, create unforgettable memories together. तो आज इनको ज्वाइन कीजिए आज ही मार्च 2027 में ये होने जा रहा है एंड मेक योर नेक्स्ट एडवेंचर अनफॉरगेटेबल टेक्स्ट करें ड्राइव DRIVE 5599 पर फॉर ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You are listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Global sensation Karan Aujla ko live in Auckland dekhne ka mauka hai because he is bringing his P-pop culture world tour. Aur ye 25th August ko hoga Spark Arena mein. One of the biggest concerts of the year ye hone ko hai. He will be joined by Ikki IKKY, jo unforgettable night aapko dega. Double pass jeetne ke liye Karan Aujla ka gana jab pesh kiya jayega. जैसे आप सुनते हैं गाने का नाम टेक्स्ट करें अलोंग विद कीवर्ड KA ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका रहेगा. टिकट इन्फॉर्मेशन के लिए hum.rover.nz या फिर livenation.co.nz आप विजिट कर पाएंगे. करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड हुआ ये 25th अगस्त को होगा स्पार्क अरीना में. डोंट जस्ट हियर अबाउट इट, आपको वहां पर रहना है टू फील द मैजिक. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: A very big welcome, everyone. Welcome back to the show. Main Krish Night Cafe lekar hazir khidmat hu ek bar phir. Istiqbal hai aapka is show mein. Jitne bhi hamare pyare listeners hai, online listeners, aap sun rahe hain. आपका स्वागत है. रोवा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है. इंटरेस्टिंग खबरें इस घंटे पर भी रहेंगे, इवेंट्स होने को है, सामाजिक सूचनाएं हैं, वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. बट फर्स्ट अप, आफ्टर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए एज यूजुअल होता है 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक. आधे घंटे के लिए नो डिस्टर्बेंस, सिर्फ म्यूजिक आपके लिए.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, सोल स्टिरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मजेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को. प्रेजेंटेड बाय जयका स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी। अब हमारी मुलाकात होती है कल, हम लेकर आ जाएंगे नाइट कैफे आपके लिए थर्सडे नाइट, जबकि होगा तो रिदम एंड रोमांस भी आपके लिए रहेगा, काफी रोमांटिक गाने आपके लिए। अपना बहुत ही ख्याल रखें, कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: चाहे आप हम के दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off cold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
2: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
3: आपके सामने एक रेड बटन है।
4: दबा दिया।
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back. धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता?
9: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज़ द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर provider.
10: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.

0: Streaming on Rover.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
8: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
9: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
10: हम नाइट फ्लाइट.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम आपके सामने एक रेड बटन है,
2: दबा दिया।
1: नहीं दबाना था।
3: The madness is back, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Warsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4, directed by Indra Kumar.
5: Gulori bina chutney kaise bani?
3: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
7: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest FlowMate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
8: Night Flight on Hum.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv ठाकुर लाइव ऑन स्टेज।
5: वाह वाह माशाल्लाह क्या बात है, कितना अच्छा डांस करते, तुम गोविंदा का कुछ लगता है क्या?
4: सैटरडे 18th जुलाई 7 PM एट विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz।
5: माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
10: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.

0: चाहे आप हम के दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
2: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
3: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
4: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The public is being urged to play their role in helping the spread of bird flu. A seabird found on Wellington's Petone Beach has tested positive. Biosecurity Minister Andrew Hoggard says people must report dead or sick birds.
6: That's critical information for us in terms of helping us inform the poultry industry and for DOC and others to be aware of where the disease is and what it's doing.
5: Cannabis remains Kiwi's drug of choice. The Drug Detection Agency says about 64% of its positive workplace tests were for weed, followed by 33% for amphetamines, including meth. CEO Glenn Dobson says it's right across the board.
7: We're seeing increases in cocaine, methamphetamine, and a slight increase in cannabis.
5: Two parrots stolen from Auckland's North Shore have been reunited with their family. Nico and Mango, a pair of Sun Conu birds, were taken during a burglary in Browns Bay on Friday. Police say a woman walked her dog found them in a cage in Glenfield. The parrots were slightly parched but otherwise seemed well. Lawmakers in Wisconsin claim SpaceX founder Elon Musk likely broke the law when he handed out million-dollar checks to Republican voters. The US state's Elections Commission has voted to refer complaints about the tactic to the district attorney. In sport, we're about an hour away from the massive FIFA World Cup semi-final between England and Argentina in Atlanta. England captain Harry Kane's team are looking to reach the final for the first time since 1966.
8: Yeah, we have that opportunity and it goes back to kind of that exciting feeling. Of course, there'll be nerves, there'll be pressure, but what a game to be involved in.
5: Football updates brought to you by Hisense. And Warriors second rower Kurt Capewell has signed a one-year contract extension with the NRL club.
4: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
9: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
10: Sujit kya jata hai? अविनेश, शैलेश, रविनेश और दिनेश लाल के पिता सविता देवी लाल के पति एल्फ्रिस्टन के मोतीलाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-0875-234 पर कॉल कर सकते हैं। अविनेश, शैलेश, रविनेश और दिनेश लाल के पिता सविता देवी लाल के पति एल्फ्रिस्टन के मोतीलाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 022-0875-234 पर कॉल कर सकते हैं। स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वागीता राकेश और अकेशनी के पिता स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मनोरेवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे दोपहर 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 39 कैपरीना ड्राइव काराका जा सकते हैं या कॉल करें विनेश को 0211-322-413 पे। स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई, स्वगीता राकेश और अकेशनी के पिता, स्वर्गीय चंद्रप्रभा के पति मनोरेवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे दोपहर 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 39 कैप्रियना ड्राइव कराका जा सकते हैं या विनेश को 021-1322-413 पर कॉल कर सकते हैं।
9: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
4: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
11: शिद्दत के साथ करते हैं।
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
10: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा फॉग है, सो संभाल के गाड़ी चलाइए। फील्स लाइक 5 degrees, 6.6 एक्चुअल टेम्परेचर। ओवरनाइट ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इज़ गोइंग टू गो एज हाई एज 17 degrees। सनराइज होगा 7:30 AM पे।
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Breakfast catch up.
10: Good morning, aap sun rahe Breakfast Show. 6:05 hue hai on the 16th of July. हाय, मेरा नाम है रुजबे और मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट शो में, बिकॉज विजय एंड पूजा आर अवे ऑन अ ब्रेक। सो ये पूरे हफ्ते मैं आपके साथ रहने वाला हूँ और आपको सुनाऊंगा एक से एक गाने। कोशिश करूँगा थोड़ी बातें और करूँ। वैसे हालत, मतलब मेरा आवाज़ सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि इसकी तो वाट लग गई है मामू। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन कोई नहीं, द शो मस्ट गो ऑन एंड वी विल bring entertainment for you for the next few hours, actually for the next whole day, this whole day as well, क्योंकि हमारे दूसरे जो कलाकार हैं वो अब तक बीमार नहीं पड़े ना। लेकिन आज एक important morning होने वाली है। 7 बजे kick off होगा the second semi-final for FIFA, जिसके updates भी आपके लिए हम यहाँ पे लाते रहेंगे। किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं आज? Whom are you backing? मुझे 5599 पे BF कीवर्ड के साथ आप जरूर यहाँ पे लिखकर भेज सकते हैं। सुबह सुबह मैसेजेस भी आए हैं। मैंडी, थैंक यू सो मच, आपका गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया है। एंड इसके साथ साथ मिस्टर माटा माटा, आपका भी गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। राम राम, जय साई राम, हैप्पी थर्सडे एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। अगर आप भी कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हो टू द वर्ल्ड, तो यहाँ पर मैसेज कीजिए 5599 पे BF कीवर्ड के साथ।

0: Sunnyside Up.
1: सनीसाइड अप मैं आपके लिए एक न्यूज़ आइटम लेकर आया हूँ और ये जो स्टोरी है दिस इज़ अराउंड आई थिंक काफ़ी लोग इसके साथ रिलेट भी कर सकते हैं. क्या आपने पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम वर्क किया है? अगर हाँ, इसका जवाब हाँ है, तो दैट मीन्स

0: कि अगर पढ़ाई नहीं, अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ मैं तो लास्ट मिनट तक ही रखता था चीज़ें कि अरे यार देख लेंगे यार कर लेंगे, यू नो वो एक एटीट्यूड होता है ना कि देख लेंगे हो जाएगा एग्ज़ाम के एक रात पहले कर लेंगे. सो या इफ यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर नॉट वर्किंग, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू कंसिडर कि यार चलो एक कुछ पार्ट टाइम जॉब भी हो जाए. एंड आई थिंक इस कंट्री का वही फ़ायदा है कि यहाँ पे काफ़ी बार तुम्हें ऐसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं. मैं जहाँ से हूँ, जहाँ पे इंडिया में मैं जब भी ग्रो अप हो रहा था वो टाइम पे वो कल्चर था ही नहीं जहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो. वहाँ पे दैट वाज लुक डाउन अपॉन, ऐसा होता था कि यार ऐसी थोड़ी क्या ज़रूरत पड़ गई, पढ़ाई कर लो ना पहले, पढ़ाई ख़त्म करो फिर उसके बाद काम करना. आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आप भी ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ यहाँ पे 5599 पे, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो 0800-004-866 पे.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: हे देखो आ गए.
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना.
3: और गानों में

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Global Headlines.
1: और आज सुबह सुबह हेडलाइंस में ईरान फिर से चर्चों में है। ईरान ने थ्रेटन किया है कि वो ब्लॉक करने वाले हैं और भी ज़्यादा वाइटल सीवेज, क्योंकि ट्रंप ने ऑर्डर्स जो है वो रिन्यू कर दिए हैं फॉर अटैक्स। तो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। ईरान ने ये भी क्लेम किया कि अराउंड 35 डेथ्स हुई है इन दी अटैक्स, और वो अब बिल्कुल भी पीस टॉक्स के मूड में नहीं है। सो या एक्सपेक्ट द ऑयल प्राइसेस टू गो बैक अप अगेन, एंड अब तक के लिए तो पता भी नहीं कि अब ये कब तक और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि न्यूज सेज दैट द चोक जो है वो कैन गो ऑन फॉर अ बिट लॉन्गर दिस टाइम। Well, anyway, all we can do is hope for the best and maybe be prepared for the worst.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Accurate traffic.
3: Robotic sculptures, digital art, and powerful new voices from China.
4: A very foggy start again. Fine spells should increase today, a high of 18. Yeah, fog restrictions back at the airport, and we have got some delays and cancellations going on for domestic flights already. The latest information is updated on the Auckland Airport arrivals and departures website. Northern Motorway, we're just slowing at Constellation, Northwestern, patchy around Te Aratu, and Southern, slow Papakura to Manurewa. Drive times are fine.
3: Forever tomorrow, Chinese art now. Auckland Art Gallery on now.
5: And paid Mrs. सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
6: अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
8: Grab a bargain at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson. Score 20% off selected wet and forget, 20% off gold air panel or oil column heaters, or selected accent interior paints, sirf $79 each. Only at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson.
9: City Auto Group में आपको मिलेगा द स्टनिंग ओमुडा C5, ऑल इलेक्ट्रिक ओमुडा A5 और एडवेंचरस जेकू J7 सुपर हाइब्रिड, अ लाइनअप बिल्ट फॉर द फ्यूचर. जिमी टेलर और टीम से मिलो सिटी ऑटो ग्रुप में एंड एक्सपीरियंस कटिंग एज डिजाइन, एडवांस टेक एंड नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस. गेट $2,000 ऑफ प्लस फ्री ऑन रोड कॉस्ट अक्रॉस द ओमुडा जेकू रेंज. चेक vesityautogroup.nz या आज ही विजिट करो वेस्टगेट या हेंडरसन शोरूम. सिटी ओमुडा जेकू, रीडिफाइनिंग द वे यू ड्राइव.
10: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
11: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
12: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
13: ले ले तुम
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
14: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेडज़रास मनको इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग
15: बॉलीवुड की बात करें तो एक और मूवी जो बड़ी मूवी होने वाली है शायद उसका टीजर बाहर निकला है टीजर भी नहीं एक्चुअली सिर्फ पोस्टर बाहर निकला है एंड दिस इज मच टॉक्ड अबाउट हैवान 11 सितंबर 2026 को ये रिलीज होगी थिएटर्स में और इसमें आप देखने वाले हैं अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान इनके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा ऑनसेंबल कास्ट भी रहने वाला है जैसे कि बमन ईरानी सयमी खैर और श्रिया पिलगांवकर ये भी इस में रहने वाले हैं इस मूवी में रहने वाले हैं एंड जो इनका पोस्टर है ये पोस्टर लिटरली काफ़ी भयानक टाइप दिख रहा है अक्षय कुमार का चेहरा काफ़ी डरावना है बट उसके साथ साथ सैफ अली खान भी एकदम ही वो रूप में है सो उन्होंने कोट लिखा था अक्षय कुमार ने वाइल शेयरिंग द पोस्टर वन सीज एवरीथिंग वन मिसेज नथिंग हैवानियत अब नहीं रुकेगी वेल हैवानियत रुकी नहीं भी है अब तक क्योंकि आप वन सीज एवरीथिंग वन मिसेज नथिंग बट वन सेज नथिंग ऑल्सो एनी वे आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट प्रोटेस्ट दैट्स गोइंग ऑन जिसके ऊपर बॉलीवुड सेलेब्स ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है बट एनी वे दिस फिल्म इज बाय प्रियादर्शन प्रियादर्शन एक अलग जॉनर की मूवी लेकर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है थोड़ा थ्रिलर टाइप मूवी मिस्ट्री टाइप की मूवी लेकर आ रहे हैं दैट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन इन देयर That was Bollywood update for you. थोड़ी देर में और भी बातें आपके साथ करेंगे मैं न्यूज़ में भी बस सुन रहा था कि एयर न्यूजीलैंड के काफ़ी सारे फ्लाइट्स डिले हो गए हैं या कुछ कैंसिल हो गए हैं इसके अराउंड एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स हाथ लगा है वो शेयर करूँगा आपके साथ थोड़ी देर में

अरे जीत सिंह की आवाज सुन रहे थे आप, ये बहुत ही प्यारा सा गाना। यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है और सुबह सुबह मैसेजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी। मावी टाकानिनी से मैसेज कर रहे हैं, आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग। वेल, एयर न्यूजीलैंड ने के कितने फ्लाइट्स कैंसिल हुए या डीले हुए इन जून, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एयर न्यूजीलैंड ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा, प्राउडली बोस्ट किया कि हमने 86% हमारी जो फ्लाइट है उसको ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेट उन्होंने रिलीज़ किया इन प्रेस रिलीज़ की 86% इनकी फ्लाइट्स जो है ये ऑन टाइम जाती है और टोटल फ्लाइट्स जो इन्होंने ऑपरेट की है वो है 12,279 फ्लाइट्स इन जून, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत बढ़िया काम। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसके अंदर थोड़ी और डिटेल में थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया एंड उससे पता चला कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर डे एयर न्यूजीलैंड ने कैंसिल की इन द मंथ ऑफ जून या डिले हुई है, 70 फ्लाइट्स पर डे इन जून। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर अगर हम ऐसे देखा जाए तो। दैट मींस अराउंड पीपल जो 70 फ्लाइट्स में रहे हैं उनके प्लान्स जो है वो डिस्टर्ब्ड हुए हैं, फ्लाइट्स अगर कैंसिल हो गई है तो वो जा नहीं पाए हैं, उनको रीबुक करनी पड़ी है या जो भी है। वेल, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, हैव यू बीन पार्ट ऑफ दिस 70 फ्लाइट्स पर डे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है इन द मंथ ऑफ जून जहाँ पे आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या कुछ बहुत ही इससे डिले हो गई है जिसके कारण आपको इनकन्वीनियंस हुआ है या कुछ हुआ है? बट द नंबर लुक्स 70 लुक्स क्वाइट लॉट और उसमें मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारे कोई ना कोई तो होगा ही शामिल। अगर आप है उसमें शामिल तो 0800-004-866 इज़ द नंबर, गिव मी अ कॉल ओवर हियर, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस कि क्या हुआ था, कैसे आपका ध्यान रखा उसके बाद। 5599 पे आप मैसेज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू शेयर अ स्टोरी। ब्रिया, यू हैव सम टाइम, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, तब तक आप यहाँ पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।

सोनू निगम का ओजी ट्रैक है ये उनके एल्बम में से, पता नहीं कितने साल पुराना ट्रैक है, अभी रिक्रिएट भी हुआ है रिसेंटली, लेकिन मजेदार ये गाना आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। वेल नाउ इज द टाइम मैं आपके साथ यहाँ पे गेम खेलूं विच इज मिस्ट्री सॉन्ग। आपको गाने का मैं स्टार्टिंग सुनाऊंगा एंड आपको यहाँ पे मैसेज करके या कॉल करके बताना है कि ये गाना कौन सा है। वेल आज का जो गाना है ये मुझे लग रहा है अगर आप गेस कर पाए तो बहुत ही ईजी है गेस करने के लिए, अगर आप इस नीश का पार्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बट लेट्स सी, आई एम गोना ट्राई इट आउट, हियर वी गो। पता चला कौन सा गाना है। ओके आई एम गोना ट्राई अगेन। आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो 0800-004-866 एंड यू कैन गिव अस कॉल एंड यू कैन गिव अस हिंट्स इफ यू नो व्हाट सॉन्ग दिस इज, यू कैन कॉल एंड गिव अस सम हिंट्स। ओके लेट्स सी।

देखो 25 सेकंड का प्ले हो गया अभी, अभी तो इजी हो जाएगा, मतलब काफी इजी है. बट या लेट मी नो यहाँ पे 0800-004-866. सुबह सुबह कोई गेस करना चाह रहा है कि कौन सा गाना हो सकता है ये आज का हमारा मिस्ट्री सॉन्ग. BF लिखकर आप 4499 पे भी मैसेज कर सकते हो इफ यू विश.

0: ऑलराइट, आप बताइए यहाँ पे मैसेज करके बीएफ स्पेस कौन सा गाना है ये आज का मिस्ट्री सॉन्ग ऑन 5599।
1: 80s के रेट्रो गाने

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Kitchen Mania, 17th birthday.
3: High of 18, fog this morning, fine spells coming today. Into the city, we're fine on motorway. Southern, slow Papakura to Mount Wellington, half an hour Manukau to town. Northwestern, 25 and from Massey. Patchy to St. Luke's, then slow there to the city. Northern, slow patches, Greville on and off to the bridge, 22 minutes in from Constellation. More fog restrictions at the airport with some delays and cancellations starting to appear.
2: You could win 10K when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
4: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday,
6: but the adventure everyone talks about?
5: Imagine chasing waterfalls,
6: wandering lush rice terraces,
5: catching unforgettable sunsets,
6: and relaxing at iconic beach clubs.
5: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
6: discovering incredible temples,
5: tasting world-famous street food.
6: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: Breakfast Catch-Up. Throwback.
10: Throwback में आपके लिए जो गाना है वो आज का वो है ये हमारा मिस्ट्री सॉन्ग वैसे मुझे एक ही गेस आया है अब तक और उन्होंने कॉल करके एफाज ने यहाँ पे एक्चुअली कॉल करके गेस किया है और उन्होंने बोला कि अरे यार ये उसका तो गाना है ना वेल अगर आपने मिस आउट कर लिया आपको बता दूँ ये देखो ये है वो गाना एंड आई विल गिव यू सम हिंट्स यार मतलब एक रिसेंटली या फिर पिछले साल एक सीरीज़ आई थी और उस सीरीज़ में एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था अराउंड द एक्टर ऑफ दिस सॉन्ग कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और ये एक्टर एक तरफ कौन यार अभी तो मैंने बहुत ही ज़्यादा हिंट दे दिया है तो बताइए कौन सा गाना है ये कोई अगर कॉल करके बताना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं 0800 004866 इज़ द नंबर या फिर बी एफ के साथ मैसेज कर सकते हो बी एफ की वर्ड के साथ ऑन 5599 गाया भी रूपम इस्लम ने चलो यार इतना सब कुछ दे दिया हूँ मैंने अभी हिंट अभी एक काम करता हूँ अभी गाना ही आपके लिए प्ले कर लेता हूँ बट येस द मिस्ट्री सॉन्ग फॉर टुडे आई थिंक इट वॉज अ बिट टफ वन इमरान हाशमी की मूवी का गाना है ये इमरान हाशमी की मूवी जन्नत का गाना गाने का टाइटल है जन्नत जहां इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स आई होप यू एंजॉय टू गुड मॉर्निंग 7 बजे के बाद आपके लिए यहां पे अपडेट्स भी होंगे क्योंकि सेकेंड सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा तो उसके अपडेट्स तो लेकर आऊंगा ही मैं लेकिन उसके साथ साथ राशि वाइब्स एंड न्यूज हेडलाइंस भी होंगे अगले घंटे

You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे गाने भी हम लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं. वैसे अगले घंटे आपके लिए राशि वाइब्स तो यहाँ पे लेकर ही आऊँगा, लेकिन आप मुझे यहाँ पे 5599 पे मैसेज करके बता भी सकते हैं ऐसी कौन सी राशि है जिसके ऊपर आज मैंने ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सो या प्लीज़ सेंड इन योर मैसेजेस ओवर हियर ऑन 5599 BF कीवर्ड के साथ आप यहाँ पे भेज सकते हैं आपके मैसेजेस. सो फटाफट भेज दीजिए, यहाँ पे रुका हूँ मैं आपके लिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड मॉर्निंग. वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल. वैसे शाम को बारिश हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द डे इट्स गोइंग टू बी लुका छुपी बिटवीन द क्लाउड्स एंड द सन. फील्स लाइक 6 degrees, 6.6 एक्चुअल टेम्परेचर. ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर बी एज हाई एज 17 degrees. 7:30 बजे होगा सनराइज.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Get up, get up. Good morning. Morning Madness.
1: गुड मॉर्निंग. 7:03 मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत है. 16 जुलाई है आज का दिन. आज का दिन अगर खास है आपके लिए तो मुझे बताइएगा जरूर 5599 पर मैसेज करके, क्योंकि बर्थडे ग्रीटिंग्स आपके लिए इसी घंटे बस थोड़ी देर में. बट बिफोर दैट माय फेवरेट सेगमेंट आपके लिए आज लेकर आऊँगा मैं बस दो गानों के बाद, विच विल बी राशि वाइब्स. 7 बज चुके हैं, मतलब जो सेकेंड सेमीफाइनल है ये भी शुरू हो गया है और इसकी अपडेट्स भी आपके लिए यहाँ पे लाते रहूँगा मैं. वैसे आज मैच होने वाला है इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के बीच. किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं फीफा में बताइए. देखो कल फ्रांस तो बाहर चला गया, स्पेन नाउ, तो देखते हैं स्पेन के अगेंस्ट कौन सी टीम होने वाली है आज क्वालिफाई. बट इस सारी बातें आपके साथ मैं करूँगा. आप सुनते रहिए हम कुछ गाने आपके लिए और स्टार्ट कर रहा हूँ एक हटके गाने के साथ. आप एंजॉय कीजिएगा ये गाना.

0: राशि वाइब्स।
1: राशि वाइब्स आज 16 जुलाई और आज का दिन आपके लिए कैसा होगा, इसके अपडेट्स आपके लिए अभी मैं लेकर आऊंगा। पहले तो शुरू करते हैं मेष यानी कि एरीज। मेष राशि, आपके स्टार्स कह रहे हैं कि आज लाइफ रीसेट करने का दिन है, लेकिन रियलिटी यह है कि आपको बस अपनी स्लीपिंग साइकिल को रीसेट करना है। ऑफिस में बॉस से बहस मत करना, जाकर अपने ब्लैंकेट से फाइट करो इंस्टेड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि आपके लिए कह रहे हैं कि आज दिमाग में आप अमीर बनने के धांसू फाइनेंशियल आइडियाज आने वाले हैं, सैडली उनमें से 99% में पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो फालतू के खर्चे और महंगे गैजेट्स से दूरी बनाकर रखें आज के दिन। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए कहा है कि आज आप आइडियाज की दुकान बने रहेंगे और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो सकते हैं, पर अपने वॉलेट पर ताला लगा लो। आज मून अलर्ट है, खाने पीने के अलावा कुछ मत खरीदना। कैंसर यानी कि कर्क राशि आपके लिए कहा है, हैप्पी बर्थडे सीजन आपका है और आज आपकी लाइफ का ग्रैंड रीसेट बटन दबने वाला है। दूसरों के भले के लिए जीना छोड़ो, आज चुपचाप अपने लिए केक का एक एक्स्ट्रा स्लाइस ऑर्डर कर लो, सितारों की फुल परमिशन है। लियो यानी कि सिंह राशि आपके लिए कहा है कि आज आपके विजनरी गोल्स बहुत हाई है, पर जरा अपने इनर ईगो को साइड में रखें और महाराज आज

0: आज आप कामचोर बनिए, मतलब ऐसा कह रहे हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए कहा है, यूनिवर्स का साफ मैसेज है, आज किसी भी इंपॉर्टेंट बात पर हाँ मत कहना। सारे सीरियस व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स और अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करना करने का इससे बेस्ट बहाना नहीं मिलेगा। आपको भी कामचोरी कहने के लिए कह रहे हैं शायद। सैजिटेरियस धनु राशि, आप किसी से सडन मुलाकात, आपके मतलब आपकी मुलाकात होगी, आपके दिल की घंटी बज सकती है। एनर्जी बहुत है लेकिन मून अलर्ट आपके मनी हाउस में है। अपना क्रेडिट कार्ड सॉक्स में छुपाना छुपा कर रखिए ताकि आसानी से हाथ ना आए। कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए कहा है, रिश्तों में आज एक बड़ा रिलेशनशिप रीसेट आने वाला है। पूरी दुनिया का ठेका अकेले मत लीजिए। आज घर के बर्तन मांजने या फालतू के ड्रामा संभालने का काम किसी और को सौंप दीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज आपके दिमाग में जीनियस वाले आइडियाज़ की बात आएगी, बाढ़ आने वाली है। इन्हें किसी मज़ेदार प्रोजेक्ट में लगाइए, ना कि ये ओवरथिंक करने में आपकी जो बिल्ली दीवार है उनको घाटों क्यों घूर रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ओवरथिंक मत कीजिए आज के दिन, आज के दिन आप ओवरथिंक मत कीजिए। इनफैक्ट जहाँ पे भी आपको मज़ा आ रहा है उस प्रोजेक्ट में थोड़ा दिमाग लगाइए। और फाइनली पाइसिस यानी कि मीन राशि आपके लिए कहा है, होम और फाइनेंस के मामले में आज चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। ज़्यादा टेंशन मत लो, बस सिचुएशन के साथ कोऑपरेट करो, गो विद द फ्लो और ऐसा प्रिटेंड करो जैसे सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आज आपको जेंजी बनना है बिकॉज क्या वो डिलुलू इज ओनली सुलुलू। दैट वॉज योर राशि वाइब्स फॉर द डे।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Unlock tiered benefits as you spend to earn loads of Pro Reward perks and rewards. Min spend limits and exclusions apply. See trade website for eligibility and full T's and C's. Sign up today.
8: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
10: Available at select

0: tranches. T's and C's apply.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: गुड मॉर्निंग. मेरे को लगा था कि मैं ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ राशि वाइब्स के लिए, बट देर आर फ्यू मोर जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने राशि वाइब्स में. सो काफ़ी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है. चलो मैं आज, मैंने कल स्कॉर्पियो का फिर से बोला था, तो आज मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आज के जो रिक्वेस्ट है उनको भी सर आँखों पर रखूँ अभी के लिए बस. तो लियो और वर्गो और अक्वेरियस, ये तीन के रिक्वेस्ट आए, तो मैं ये तीन करने वाला हूँ एक और बार. लियो, अगर आप लियो सन साइन है आपकी, तो आपके विजनरी गोल्स बहुत हाई है, पर ज़रा अपने इनर ईगो को साइड में रखें. और आज सोशलाइज करने का दिन है, पर बिल मत भरिए, क्योंकि शायद आपका बैंक बैलेंस आपको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा बिल भरने से पहले, ठीक है. वर्गो, आपके लिए कन्या राशि आपके लिए कहा है कि आज आपकी जीत पक्की है, मतलब आज आप जो करेंगे उसमें सब फाड़ देंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ में अपना हाथ ऊपर करके हर एक चीज़ को वॉलंटियर करें, क्योंकि आप इंसान हैं, आम इंसान हैं, कॉरपोरेट सुपर हीरो नहीं है, तो बर्नआउट होने का आज चांस ज़्यादा है. सो आज आप ईजी रहिए. एंड फाइनली एक्वेरियस, आपको कहा है कि आज आपके दिमाग में जीनियस वाले आइडियाज़ की बाढ़ आने वाली है, लेकिन आप कोई मज़ेदार प्रोजेक्ट में लग जाए, काम करना शुरू कर दें. ओवरथिंक मत करिए आप, और ये मत सोचते रहिए कि आपकी बिल्ली दीवार को घंटों क्यों घूर रही है. तो मतलब आप बस आज काम पे ध्यान दीजिए, आप आज कामचोर मत बनिए. बाकी सबको कामचोर कहने के लिए कहा है आज, बस आपको नहीं कहा है. वेल, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे. सेलिब्रिटी अलार्म में मैं आपको एक सेलिब्रिटी की आवाज सुनाऊंगा और आपको यहाँ पे गेस करना है कि ये सेलिब्रिटी कौन है. बीएफ कीवर्ड के साथ आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, या इसको और मजेदार कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉल करके हिंट दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये कौन है सेलिब्रिटी हिंट के थ्रू, ठीक है. सिंपल रख रहा हूँ मैं आज के दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हर कोई थोड़े सुस्ती वाले मूड में, और ये राशि वाइब्स पढ़ के मुझे ऐसा लग रही है कि आज हर कोई ऐसा थोड़ा इजी इसमें रिलैक्स्ड वाले मूड में ही है. तो एनीवे, लेट्स लिसन टू दिस, हु द सेलिब्रिटी इज.
4: व्हेन आई स्पोक टू पीपल इट वाज यूज्ड टू कॉक देयर हेड्स एंड बी लाइक एक्सक्यूज मी.
5: यू कैन रियली डू दैट एक्सेंट.
4: सॉरी व्हाई.
3: तो ये कौन है, ये जो फीमेल वॉइस आपको जो सुनाई दे रहा है, ये क्या लग रहा है आपको, कौन है ये? 5599 पे आप बीएफ कीवर्ड के साथ मैसेज कर सकते हो, या यहाँ पे कॉल करना है अगर आपको है 0800-004-866. यू कैन गिव अस सम हिंट्स ओवर हियर एज वेल.
4: बट इट टुक मी अ लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज जस्ट द फैक्ट दैट दे हैडन एक्सपीरियंस्ड एनीबॉडी लाइक मी. एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गेट आस्क्ड, एंड मे बी दिस वाज अ सीडर रैपिड्स थिंग, बट
3: अच्छा ठीक है, कोई हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है. हाय, आपको नाम नहीं लेना है सेलिब्रिटी का, आपको बस गेस करना है, मतलब हिंट देना. हिंट
6: मॉर्निंग, सोम बोल रहा हूँ.
3: हाय सोम, गुड मॉर्निंग.
6: तो गुड मॉर्निंग, हिंट ये है कि क्वांटिको एंड मिस वर्ल्ड.
3: अरे क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस सोम, थैंक यू.
6: और
3: हाँ
6: ओके,
3: और भी हिंट देना चाहते हो, इतने इतने चाहते हो आप इनके.
6: डेफिनेटली और जोनस.
3: अच्छा बस ठीक है, थैंक यू.
6: ओके चलो,
3: थैंक यू यार सोम, आपका भी स्वागत है. हाय गुड मॉर्निंग.
7: मॉर्निंग, जंगली बिल्ली.
3: नाइस, वेरी नाइस. क्या नाम है आपका?
7: विकास.
3: विकास, थैंक यू विकास, थैंक्स फॉर योर कॉल मैन.
7: थैंक यू,
3: हैव अ गुड डे. या सो कवनीत, आपका भी यहाँ पे मैसेज आ गया है. समरीन, विकास, यस, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट इट राइट. अगर आपने मिस आउट कर लिया है तो आपको मैं एक और बार सुना देता हूँ ये इनकी आवाज, और आप बताइए कौन है ये, आपको क्या लगता है.
4: But it took me a little bit to understand that it was just the fact that they hadn't experienced anybody like me. And I remember I used to get asked, and maybe this was a Cedar Rapids thing, but I don't know, but I used to get asked really funny questions in ninth grade. Like, do you take an elephant to school? Like, I
5: Come
4: was,
5: on,
4: and
5: really?
4: This is like 90, 97.
3: राइट ओके सो ये था आज का सेलिब्रिटी अलार्म. आप यहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं बीएफ कीवर्ड के साथ.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
8: गुड्डी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
9: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: हेडलाइंस।
1: आज है 16 जुलाई और मॉर्निंग न्यूज में आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में डनीडन में एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टर साइमन ब्राउन ने अनाउंस किया है पहला वर्टिकल स्ट्रक्चरल स्टील कॉलम इंस्टॉल हो चुका है फॉर न्यू डनीडन हॉस्पिटल इन पेशेंट बिल्डिंग। इसके साथ साथ इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में द यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है फेज टू ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अनलीशिंग अ मैसिव 1.27 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट सिक्स इयर्स। इसका अराउंड यूएस डॉलर्स में आता है 15.2 बिलियन यूएस डॉलर्स इन ओवर द नेक्स्ट सिक्स इयर्स टू हेविली सब्सिडाइज एंड लॉक डाउन द लोकल माइक्रोचिप सप्लाई चेन। यूएस ने दिन दहाड़े अब अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर। काफ़ी लोग अपनी फुटबॉल के सॉकर के सेमीफाइनल्स को देखने जा रहे थे जब कुछ अटैक्स हुए एयर स्ट्राइक्स हुए एंड बेसिकली दिस इज़ दे आर सिग्नलिंग जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू शिपिंग इंटरफेरेंस। फिजी में एक नेशनल आईडी सिस्टम इज़ इनकमिंग। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो रेडी है टू टेबल द नेशनल आईडी कार्ड बिल और एस्टेब्लिश करने के लिए नेशन का पहला फर्स्ट सिक्योर इंक्लूसिव डिजिटल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री फॉर ऑल सिटीजन्स।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
4: Elite Bathroom Wears Midwinter Reno Sale.
5: A foggy morning. Cloud will slowly clear a high of 18. Fog restrictions back at the airport with a few delays and cancellations to domestic flights already. All of that updated online on the Auckland Airport website. Southern Motorway, 40 minutes Mataco to town. We're just slow all the way from Papakura. Northwestern, half an hour in from Massey. Slow from the Causeway. Heavy patches from Point Chef. Northern 25 from Constellation. Slow from there.
4: Elite Bathroom Wears Midwinter Reno Sale starts Monday next week. Allens Road, East Tamaki.
6: What if your next holiday wasn't just a holiday?
3: But the adventure everyone talks about.
6: Imagine chasing waterfalls.
3: Wandering lush rice terraces.
6: Catching unforgettable sunsets.
3: And relaxing at iconic beach clubs.
6: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk.
3: Discovering incredible temples.
6: Tasting world-famous street food.
3: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
8: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Light the way with 20% off Vectral solar lighting. And save $100 on a 60cm Robin Hood stainless steel dishwasher, now $499. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
9: आपके सामने एक रेड बटन है।
10: दबा दिया।
9: नहीं दबाना था।
11: The madness is back. Dhamal 4.
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
11: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता।
15: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
16: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
17: The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari good branch nahi hai.
17: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
17: Birthday greetings.
19: Iska birthday bhai?
0: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
19: Happy birthday to you.
1: आज है 16 जुलाई और आज का दिन खास है अगर आपके लिए। आपको आज के दिन की ढेर सारी बधाई। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज काफ़ी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज प्रियंका अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। प्रियंका, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके दोस्तों की तरफ से, चाहने वालों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बधाइयां। इसके साथ साथ आज अपना बर्थडे सौमिल सेलिब्रेट कर रहे हैं। सौमिल, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके दोस्तों की तरफ से आपके लिए यहाँ पे बर्थडे विशेज आए हैं एंड होप आपका ये जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया गुजरे। सीजो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीजो, आपको भी ढेर सारी बधाई आज के दिन की। आपके दोस्त अनिरुद्ध की तरफ से आपके लिए बर्थडे विशेज आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड होप यू हैव अ ग्रेट बर्थडे। इसी के साथ साथ अगर आज आप आपका बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई भी ऐसा खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेज फॉर टुडे। हैव अ फैबुलस डे।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good morning breakfast show आपके लिए जारी है. वैसे आपके लिए एक important information यहाँ पे लेकर आया हूँ, and that is about this Saturday, 18th of July, आप witness कर सकते हैं one of the biggest comedy events of the year. कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर ले रहे हैं स्टेज एंड लेकर आ रहे हैं आपके लिए द ग्रेट कॉमेडी नाइट. इंडिया के दो बिगेस्ट टेलीविजन कॉमेडी सुपरस्टार्स को आप लाइव परफॉर्म करते देख सकते हैं यहीं पे ऑकलैंड में विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ऑन द 18th ऑफ जुलाई विच इज दिस सैटरडे. टिकट्स बहुत ही कम बाकी है, फटाफट bookmyevent.co.nz पे जाके आप बुक कर लीजिए. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है वहाँ पे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट शो फॉर यू. सो आप जरूर पहुंच जाइएगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑन सैटरडे 18th जुलाई. Tickets on bookmyevent.co.nz.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे आज सुबह, मतलब आज अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की आवाज़ प्ले की थी इन आर सेलिब्रिटी अलार्म सेक्शन, और वो आवाज़ थी ये।
1: Accent, right? So when I spoke to people, it was used to cock their heads and be like, "Excuse me."
2: You can really do that accent.
1: Sorry, why? But it took me a little bit to.
0: And a lot of people guessed it correctly. यहाँ पे काफी लोगों ने बहुत ही बढ़िया guess किया है. कुछ नाम मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ. Samreen, Bikash, Francina, Charisha, Monisha, Shireen, सोनल, प्रमोद, शबनम, परवीन, कुछ कॉल्स भी हमें आए थे यहाँ पे. थैंक यू सो मच मोनिका, आपका भी यहाँ पे कॉल आया था, और कुछ और भी कॉल्स आए थे. थैंक यू सो मच आप भी सभी के आंसर्स के लिए. यस, द राइट आंसर इज प्रियंका जोनस चोपड़ा, नहीं प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो भी प्रियंका चोपड़ा. एंड काफ़ी हिंट्स भी यहाँ पे आए थे, लाइक जंगली बिल्ली एंड देन जोनस एंड देन मिस वर्ल्ड, या सो ये सारे बढ़िया हिंट्स थे और ये सारे सही जवाब भी थे. तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिब्रिटी अलार्म दिस मॉर्निंग. आपके लिए 8 बजे के बाद यहाँ पे टॉपिक ऑफ द डे लेकर आऊँगा, जहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैं आपसे बात करूँ अबाउट समथिंग फन टुडे, बिकॉज बहुत हो गई यार सीरियस बातें, अब थोड़ा मैं लाइट फन करना चाह रहा हूँ. तो आज फन वाला कोई टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए. लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूँ कि ग्लोबल सेंसेशन करण औजला इज ब्रिंगिंग हिज पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड स्पार्क अरीना. 25 अगस्त को ये होने वाला है, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट 21 भी इनको ज्वाइन करने वाले हैं. अगर आपको इसके टिकट्स चाहिए तो livenation.co.nz पे आप जा सकते हैं, या फिर hum.rova.nz पे भी आपको टिकट्स की डिटेल्स मिल सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे डबल पास जीतने का मौका भी आपको मिल रहा है. डबल पास आप कैसे जीतेंगे? बस आपको जब भी सुनाई दे करण औजला का कोई भी गाना, आपने यहाँ पे इमीडिएट मैसेज करना है के और उस गाने का नाम और आपका नाम, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाए. हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं वो सुपर फैंस जो करण औजला को सुनेंगे और पहचान जाएंगे और बोलेंगे कि अरे यार ये तो करण औजला का गाना है. तो इसलिए के ए और करण औजला का जो गाना हम प्ले करेंगे, वो गाने का नाम और आपका नाम 5599 पे आपने भेज देना है एज सून एज यू लिसन टू एनी करण औजला सॉन्ग्स. बढ़िया, उनका कॉन्सर्ट होने वाला है 25 अगस्त पार्क अरीना में. टिकट्स विल बी सोल्ड आउट वेरी सून, सो टिकट्स के लिए चेकआउट कीजिए livenation.co.nz.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल रहने वाला है. शाम को जाके बारिश होने वाली, आइसोलेटेड शावर्स हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे इट्स गोइंग टू बी क्वाइट क्लाउडी एंड सनी का मिक्सचर. फील्स लाइक 6 राइट नाउ. ड्यूरिंग द डे इट्स गोइंग टू गो एज हाई एज 17 डिग्रीज. 5:25 को होगा सनसेट.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो. मेरा नाम है रुजबे. 8:03 हुए हैं और मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे फॉर दिस वीक ब्रेकफास्ट शो लाते हुए, क्योंकि विजय एंड पूजा आर अवे फॉर दिस वीक. आज क्या ट्रेंड हो रहा है? ट्रेंड ये हो रहा है कि डेविड सीमोर ने कहा है स्मार्टफोन्स कुड बी बैंड फॉर अंडर 16s. मेरे को ये सवाल आज आपसे पूछना है. आज मैं ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए. वेयर यू कैन गिव मी अ कॉल 0800 004 866. Do you think smartphones should be banned for under 16? Under 16 के लिए स्मार्टफोन बैन होना चाहिए कि नहीं? आप यहाँ पे कॉल करके बता सकते हो. मैंने एक चीज़ तो नोट की है. मैं अभी रिसेंटली एक इवेंट पे था जहाँ पे मैं काफ़ी अंडर 16 के अराउंड इर्द गिर्द था, और एक चीज़ मैंने जो नोट की है वो ये है कि मेरे को उनकी भाषा समझ नहीं आती यार. बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मतलब मैं 11-12 साल के एक ग्रुप के साथ, मतलब ऐसे लड़कों के साथ बात कर रहा था, और उन्होंने कुछ ऐसे बात कही जो मैंने तभी हाँ हाँ हाँ हाँ किया. और मेरे साथ ना एक और बंदा था जो अराउंड मेरी एज का ही था, रफली कुछ साल ऊपर नीचे. एंड फिर वो जब हो गई हमारी बात ख़त्म, तो फिर मैंने उस लड़के को पूछा, मैंने बोला यार तेरे को समझ आया क्या ये क्या बोले? तो उसने जो मेरे को बोला वो चीज़ बहुत सही थी. उसने मेरे को बोला कि नहीं ब्रो, नहीं समझ में आती इनकी चीज़ें, इट्स ओके. मेरे को भी नहीं आती समझ में, बस हाँ हाँ कर देने का. मैंने बोला अच्छा ओके, मैं अकेला नहीं हूँ. लेकिन मुझे आपसे भी जाननी है यार, ऐसे आपके साथ कभी हुआ है कि मतलब विद दीज यंगर वंस ये कुछ बातें ऐसे बोलते हैं जो अपने पूरे सर के ऊपर से जाती, और काफ़ी अनपढ़ फील होता है यार वो टाइम पे. मतलब ऐसा लगता है कि यार ये, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई और भाषा में बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. और फिर कितनी बार पूछेंगे ना आप कि क्या ये तो इसलिए फिर एक टाइम के बाद आपको बोलना पड़ता है हाँ हाँ हाँ हाँ हे. तो अभी आप मुझे यहाँ पर कॉल करके बताइए आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या. और दूसरा टॉपिक वो है कि डू यू थिंक स्मार्टफोन्स इज़ द रीज़न कि इनकी ये वोकैबुलरी है जो हमें नहीं समझ में आ रही है. 0800 004 866 इज द नंबर. गिव मी अ कॉल एंड लेट अस नो अंडर 16 के लिए डू यू थिंक फोन्स, स्मार्टफोन्स शुड बी बैंड. और एंड इट्स टाइम टू गेट बैक टू नोकिया, जहाँ पे हम लोग वो स्नेक वाली गेम खेलते थे ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के ऊपर. कॉल कीजिए यार 0800 004 866. अगर आपको एक गाना सुनना है और गाने सुनने के बाद आपको कॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. आपको मोटिवेट करने के लिए ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, और स्पेशली आपको ही आपके लिए ही है ये गाना. दिस फॉर यू बिकॉज यू आर अ चैम्पियन.

Well, मुझे लगता था गाने हमें मोटिवेट करते हैं. Well, तू है चैंपियन यार. Give us a call over here 800-004-866. क्या लगता है आपको? डेविड सीमोर कह रहे हैं कि स्मार्टफोन्स फॉर अंडर 16 बैन कर देने चाहिए, मतलब बंद कर देने चाहिए, यूज़ नहीं होने चाहिए. अंडर 16 ने स्मार्टफोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए. बट डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या लगता है आपको कि अंडर 16 बिना स्मार्टफोन के, आई डोंट थिंक इवन पेरेंट्स विल फील सेफ या, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी ट्रैक करते हैं ना कि कहाँ पे जा रहे बच्चे, कहाँ पे मतलब कहाँ उनका लोकेशन क्या है, और वो सब ट्रैक वैक करते हैं ना. सो डू यू थिंक योर चिल्ड्रन वुड बी ओके विथ हैविंग नो स्मार्टफोन्स अंटिल द एज ऑफ 16? ये इस पर आपको आज बात करनी थी 0800-004-866. कल मैंने एक पॉलिटिकल टॉपिक लेकर आया तो वहाँ पे कॉल्स आए. आज थोड़ा चिल वाला टॉपिक लेकर आना हो तो यहाँ पे दिस नो वन इंटरेस्टेड. वाओ, अच्छा है यार, प्रगति कर रहे हैं, देश प्रगति कर रहा है. एनीवे, आपके लिए कुछ गाने भी लेकर आऊँगा और भी कुछ बातें. सुनते रहिए हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुनें।

0: Bunnings today and grab the Surf Professional 9kg laundry powder for just $39. Available in Sun Fresh and Rose Fresh. Don't miss this great value. Stock is limited. Shop online or in-store at your local Bunnings warehouse.
1: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
2: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: Hitting the open road these school holidays? Refuel at Zed with Afterpay. Shop snacks, fuel and more, and pay in four. Shop now with Afterpay at Zed. Fees, TCs and eligibility criteria apply.
4: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
5: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Arbitoy and Hamilton.
7: What's your take? के पहले मैं आपको बता दूं अपडेट FIFA World Cup 2026 England 1 and Argentina 0. Second half काफी defensive kind of cautious approach था दोनों teams का. But yeah, England has been successful in scoring a goal and अभी भी time बाकी है. It's time for Argentina to you know bounce back and hopefully. ये पता नहीं कैसे होगा काफ़ी जो लोग हैं मैंने सुना है इन जनरल दे वांट अर्जेंटीना टू विन बट डेफिनेटली इंग्लैंड के चांसेस अभी के लिए ज़्यादा लग रहे हैं एंड अर्जेंटीना के लिए हाँ इसलिए भी है क्योंकि मेसी है ना वहाँ पे तो पीपल आर बिट मोर बायस दैट वे आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज सेमीफाइनल्स में आप ज़रूर हमारे साथ यहाँ पर शेयर कीजिएगा बट फॉर नाउ इंग्लैंड इज लीडिंग And we'll have to wait and see कि ये बाउंस बैक हो रहा है अर्जेंटीना से या नहीं और मैंने जो आज टॉपिक छेड़ा था उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा इंटरेक्शन तो आया नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं आया बट एक हमारे कॉलर उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने उनका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने कहा कि ये जो फ़ोन स्मार्टफोन ये बंद करना है नॉट श्योर इफ दैट्स गोइंग टू हैपन और इफ दैट्स गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स एज सच it is going to be on parents to make sure ki wo kya controls apply kar rahe hai for their children. Anyway, thank you so much jinhone yahan pe call kiya. Raj, thank you for calling and participating. Aapke saath aur bhi baatein karunga main, lekin abhi ke liye, let's listen to Bollywood's Most Wanted.
5: Bollywood's Most Wanted.
8: Gundi ghad gao, ya seedha andar aao.
9: Main laun apna A-game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. वैसे आपको मैं बता दूं, the legendary राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड में for an unforgettable night of music. अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है magic of his timeless hits, soul stirring कवाली या उनकी पावरफुल वॉइस, बस वही आपको कैप्टिवेट कर दे रही है जो काफ़ी लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड कैप्टिवेट करती है. तो गेट इन टच, dryTickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट अरीना में ये परफॉर्म करने वाले हैं ऑन द 25th ऑफ जुलाई. प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. dryTickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. 25th जुलाई को राहत फतेह अली खान, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान परफॉर्म करने वाले हैं इन ऑकलैंड एट द ट्रस्ट अरीना.
1: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
3: Accurate traffic.
4: Would you trade in your house?
5: Fog this morning. Fine spells increasing today. A little windy, a high of 18. Fog restrictions at the airport. A number of delays and cancellations for mainly domestic flights coming into the airport so far this morning. Motorways fairly good. Southern the slowest. 46 minutes in from Monaco. We're slow from there. Heavy patches frequent. Northern 24 in from Constellation. Just patchy there to the city. Northwestern 26 from Massey. Just slow at Point Chef.
4: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी.
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
9: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
10: Sorry about that.
9: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
11: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsarras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: मैं और उसबे और आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो. वैसे हमने एक रिसेंटली पॉडकास्ट लॉन्च किया और उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. हमने ये अनफिल्टर्ड में बात की थी, सैंडी और मैंने बात की थी अबाउट विच शनी लाल. एंड शनी लाल एक LGBTQ प्लस राइट्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उनकी एक सर्च है फॉर इक्वालिटी. काफ़ी जगहों पर ये प्रोटेस्ट भी करते हुए पाए गए हैं. काफ़ी जगहों पे इनका नाम भी यू नो फेमस हुआ है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि कुछ पेटिशंस ऐसे हैं फॉर कन्वर्जन थेरेपी. ये इन्होंने पास करवाया था, बैन करवाया था, यानी कन्वर्जन थेरेपी को स्टॉप करवाया था, बैन करवाया था, क्योंकि दिस वाज काइंड ऑफ हैपनिंग जिसके बारे में मुझको पता भी नहीं था क्या है. अगर आपको जानना है ये सारी चीज़ों के बारे में तो ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे. वील सेंड यू अ लिंक फॉर द पॉडकास्ट. शनी लाल वॉज ऑल्सो अवार्डेड द यंग न्यूजीलैंडर इन 2023 तो बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड वेरी ओपिनियनेटेड एज वेल. बहुत ही बढ़िया हमारा कॉन्वर्जेशन रहा अबाउट राइट्स, इक्वालिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने पूछे. तो ज़रूर इस एपिसोड को आप चेकआउट कीजिएगा. ड्राइव लिखकर भेजिए ऑन 5599. वेल, आप जब ड्राइव लिखकर भेजते हो ऑन 5599 तो एक तीर दो निशान आपको एक और लिंक मिल जाएगा एंड दैट्स लिंक फॉर अ फॉर्म जहाँ पे आप आपका इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल विद अस टू बाली एंड बैंकॉक. हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक एंड प्लान हमारा ये है कि हम आपको लेकर जाएंगे. द लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एंड द आइडिया इज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर. सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द फन, ड्राइव ऑन 5599 लिखकर भेज दीजिए आपके नाम के साथ.

0: बॉलीवुड की बातें आपके लिए लेकर आते हैं ऑन हम. वैसे अमाल मलिक इज इन न्यूज अगेन, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस दिस टाइम, दिस टाइम फॉर द राइट रीजंस. वो रिसेंटली अपनी आई थिंक जो मूवी आने वाली है आवारापन 2, उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया है, उसको भी उसके बारे में उसको भी प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की है अबाउट हाउ सलमान खान इज सच अ जेंटलमैन और कैसे ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प सम यंगस्टर्स. वेल, उन्होंने शेयर की एक कहानी अबाउट मैं हूँ हीरो तेरा, और इन्होंने ये कहानी जो है ना ये हम पे भी शेयर की थी सबसे पहले एक्चुअली, जब पे उन्होंने बोला था कि जो गाना है मैं हूँ हीरो तेरा वो बहुत हिट हो गया था अरमान की आवाज़ में. लेकिन फिर सलमान खान ने कहा कि नहीं नहीं मैं भी गाऊँगा इस गाने को, एंड द रीज़न वाई ही सैंग दैट सॉन्ग इज बिकॉज उस टाइम पे सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी इनको काफ़ी हेट मिल रहा था बाय पब्लिक. तो सलमान खान ने कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ ताकि वो हेट वहाँ से चेंज होकर मेरे तरफ आ जाए. सो यू नो सच जेंटलमैन दैट ही टुक इट ऑल ओवर हिम एंड प्रोटेक्टेड द यंग डेब्यूटेंट्स. वेल, अब देखते हैं आवारापन 2 का म्यूज़िक जब रिलीज़ होगा तो कैसे धूम मचाता है, बट उसके डिटेल्स भी उसके अपडेट्स भी आप तक हम ही पहुंचाएंगे. यहाँ पे सुनते रहिए हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

आप सुन रहे हम ऑन 104.2 FM एंड वाई रोआ ऐप. काफ़ी लोग एंड सिटी में अगर आप है तो 87.7 FM पे भी आप हमें सुन सकते हैं. वैसे अगले घंटे आपके लिए कम्युनिटी में क्या हो रहा है इसकी बातें शेयर करूंगा. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, वियर्ड स्टोरी एक है जो मेरे हाथ लगी है एंड इट्स बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया. वेल इट्स वियर्ड बट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्पायरिंग इन अ वे आई वुड से. सो इसको ज़रूर सुनिएगा. 9 बजे के बाद आपके लिए लेकर आऊँगा मैं एंड उसके बाद कम्युनिटी की बातें भी करेंगे. वेल और भी बातें आपके साथ होगी और दिन भर बातें होगी क्योंकि हमारे अलग अलग शोज़ में हमारे अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं और आपके साथ बढ़िया बढ़िया चीज़ें शेयर करते हैं. तो हमारा साथ आप देते रहिए. रोआ पे अगर आपने हमें सुना है तो वहाँ पे जाके हमें आप फेवरेट ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी हम कुछ करें यहाँ पे तो आपको वो नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए ना रोआ ऐप पे. यस, ओनली छोटी सी रिक्वेस्ट है ना हमारी. वेल पॉडकास्ट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा अगले घंटे. सुनते रहिए हम.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: What's going on? Kya bakte ho?
3: Are kehna kya chahte ho?
4: Good morning, you're listening to The Breakfast Show. Hi, मेरा नाम है रुजबे और मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे 10 बजे तक. तो आपका साथ यहाँ पे मैं निभा रहा हूँ फॉर दिस वीक एंड अ कपल ऑफ डेज नेक्स्ट वीक एज वेल. एंड आई होप आप भी इतना इंजॉय कर रहे हो जितना मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ ये टाइम स्पेंड करने में यार. वेल एनी वे, अभी मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एंड दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ दैट आई केम अक्रॉस. And I thought it's going to be a very interesting one, क्योंकि ये एक weird story तो है ही, लेकिन ये also एक बहुत ही inspiring story है. Well, this story belongs to Australia primarily, लेकिन ये World War One के बाद वाली story है. तो World War One के बाद क्या हुआ था, इसको बोलते हैं the Great Emu War of 1932. ये एक historic event है जिसके बारे में आपने ज़्यादा कभी सुना नहीं होगा शायद. तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने थोड़ी लैंड दी थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में टू रिटर्निंग वेटरन्स, और उनको बोला था कि तुम वहाँ पे वीट फार्म मतलब फार्मिंग करने के लिए, वीट फार्मिंग करने के लिए उनको जगह दी थी. इसके साथ साथ क्या हो गया कि एमू करके एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है, तो अराउंड 20,000 एमूज ऑल्सो माइग्रेटेड वही टाइम पे, क्योंकि ये जो न्यूली कल्टिवेटेड वीट फील्ड्स थे तो वो बोले कि भाई ये तो अपने लिए बुफे हो गया, ऑल यू कैन ईट बुफे. सो एमूज भी वहाँ पे आ गए और धीरे धीरे वो सारे फेंसेस, क्रॉप, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग गए. तो अब ये जो वेटरन सोल्जर्स थे जो अब फार्मर्स हो गए थे, ये इनका दिमाग का शॉट हो गया, मतलब ये बोले कि यार ये क्या हो रहा है यार. तो इन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उस टाइम पे थे सर जॉर्ज पियर्स, उनको बोला कि मालिक थोड़ी मदद कर लो भाई, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो करो, मिलिट्री भेज दो यहाँ पे. तो वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोले अरे यार क्या है यार, क्या सोल्जर बनेगा तू, मतलब तू खुद ही तो सोल्जर था ना. तो उसने बोला कि एक काम करता हूँ मैं तुमको, बिकॉज तुम ऑलरेडी सोल्जर हो, मैं तुमको ऑटोमेटिक मशीन गन्स देता हूँ और 10,000 राउंड ऑफ एम्यूनेशन भी देता हूँ, तुम हल्ला बोल कर लो, मतलब डिक्लेयर वॉर विद ऑन द एमूज. तो ये सोल्जर बोले चलो ठीक है यार, हमने तो हमारे बूट हैंग कर लिए थे इन सबसे, लेकिन चलो अभी मजबूरी में फिर से उठा लेंगे हथियार हमारे हाथ में और चले जाएंगे जंग पे. और ये चले गए जंग पे. अब हुआ ये कि जो एमूस थे ये बहुत ही स्मार्ट थे. अब इन्होंने शायद वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लिया होगा, बट देखा तो होगा कुछ ना कुछ कि क्या चल रहा है. तो इन्होंने यूज़ किए ग्यूरिला वॉरफेयर. तो इसमें होता क्या है, ये जैसे ही सोल्जर्स रेडी हो जाते थे शूट करने के लिए गन्स के साथ, ये स्प्लिट हो जाते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में और इधर उधर भाग जाते थे. सोल्जर्स बोले कि यार वर्ल्ड वॉर वन में फ़ाइट करना ज़्यादा इजी था, बट यहाँ पे फ़ाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो लिटरली उनके पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स होने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए एमूस का. कुछ एमूस को ज़रूर उन्होंने मारा, बट एट द एंड आज तक ये माना जाता है कि जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली दे लॉस्ट द वॉर अगेंस्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स विच आर एमूस, या एमूस की जीत हुई. वेल दिस इज़ अ रियल स्टोरी, something weird that I thought I'll share with you. You're listening to The Breakfast Show. Iske usse hum kya seekhe, iske baare mein hum baat karenge bas kuch gaano ke baad.

0: What's going on?
1: थोड़ी देर पहले आपके साथ एमूज की कहानी मैं शेयर कर रहा था। एमूज एक फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं जिनकी टॉप स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आर। फ्लाइटलेस बर्ड होते ही ऑस्ट्रेलिया में ये थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और वहाँ पे कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के वेटरन्स को मात दी और उनको हराया, इसके बारे में मैंने स्टोरी शेयर की थी। और इससे ये एक चीज़ मैंने सीखी है कि समटाइम्स यू डोंट नीड टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, यू डोंट नीड टू हैव हाई इक्विपमेंट्स लाइक यू नो हाई एंड इक्विपमेंट्स या फिर एकदम ही डेंजर रिसोर्सेज, बट यू कैन स्टिल विन अ वॉर, यू कैन स्टिल यू नो लीव योर मार्क, और रादर नॉट लीव योर मार्क। सो या इट इज़ समथिंग दैट अगर तुम्हारा एटीट्यूड है, अगर तुम्हारे में जज्बा है जीतने का, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, तुम जीत सकते हो। वेल, इसी बात के साथ चलते हैं कम्युनिटी में क्या हो रहा है इसके ऊपर तरफ देखने कि क्या चल रहा है कम्युनिटी में। कम्युनिटी न्यूज आपके लिए थोड़ी देर में।
0: What's up, Auckland?
1: कम्युनिटी में ढेर सारे इवेंट्स हो रहे हैं आपके लिए, जो इसके अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो, ये हो रहा है संडे 26 जुलाई को A1 इवेंट सेंटर में, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। फ्री इवेंट है ये, जहाँ पे आप आपका मेडिकल चेकअप करा सकते हो, स्क्रीनिंग्स करा सकते हो, मेंटल हेल्थ वेलबींग मॉनिटर कर सकते हो, एंड काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी है जो आप अटेंड कर सकते हो। एक फन फैमिली इवेंट हो सकता है ये, आपके बच्चे भी वहाँ पे इनवाइटेड है, तो ज़रूर जाइएगा और अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। इसके साथ साथ एक फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट हो रहा है। कैरम ये बहुत ही बढ़िया सा एक गेम होता है, एंड इट्स नाइस बॉन्डिंग गेम एज वेल, इट्स अ स्किल्ड गेम। तो अगर इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप पहुंच सकते हैं 22nd एंड 23rd को, अगस्त को, बर्कनहेड स्काउट्स हॉल। उससे पहले अगर आपको रजिस्टर करना है तो पंकज मोंगा को आप कॉल कीजिए 021-090-85067 पे, या फिर आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज भी चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे उनको मैसेज भी कर सकते हो। सो या फोर्थ न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट हो रहा है 22nd एंड 23rd अगस्त एट बर्कनहेड स्काउट्स हॉल, जरूर पहुंचिएगा वहाँ।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: देखो हम आ गए।
2: ड्राइविंग यू होम। Drive show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज

0: Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
1: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to three lives. Book now at nzblood.co.nz.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: My kids won't shut up.
5: I'm not sure that's our problem.
6: They keep reciting lines from one of your radio ads.
5: Aw, cute.
6: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
7: What do you want, son?
8: I want me some of that real southern chicken.
6: 28 times.
5: So where are you now?
6: Eating chicken.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है एंड मैं हूँ रुजबे, आपके साथ यहाँ पे मैं रहूँगा 10 बजे तक. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ कॉमेडी लाइव. देखो, कॉमेडी हम काफ़ी बार टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पे आजकल काफ़ी होता है कॉमेडी, सोशल मीडिया पे आजकल कॉमेडी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइव कॉमेडी आपने लास्ट कब देखी थी ये आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके बताइए. और अगर आपने रिसेंट में नहीं देखी है कॉमेडी लाइव, तो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, मतलब मैं नहीं लेकर आया हूँ, वैसे हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स लेकर आए हैं. कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर को आप लाइव विटनेस कर सकते हो एट द ग्रेट कॉमेडी नाइट. परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट ये शो होने वाला है ऑन सैटरडे 18 जुलाई एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. bookmyevent.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. लेकिन आप जा सकते हो आपके समवन स्पेशल के साथ या आपकी फैमिली के साथ एंड यू कैन एन्जॉय दिस शो जहाँ पे आप कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर को लाइव परफॉर्म करते देख सकते हैं. बहुत ही फनी लोग है ये और आपको मज़े आ जाएंगे 100%. सो या bookmyevent.co.nz इज द लिंक वेयर यू कैन गेट द टिकट्स.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 104.2 FM और सिटी में है अगर आप तो 87.7 FM पे भी आप हमें सुन सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए यार जो सिटी के आसपास आते रहते हैं। 87.7 इज द फ्रीक्वेंसी वे यू कैन लिसन टू अस विद इन सिटी इफ़ यू कांट गेट ऑन टू 104.2। लेकिन रो ऐप के जरिए ऑल्सो यू कैन स्टे इन टच विद अस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली। वेल अगस्त का महीना शुरू होने वाला है बहुत जल्द। वी आर लिटरली हाफ वे पास जुलाई। आज 16th of July है एंड 1st August को आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे गरबा, गरबा विद राज गढ़वी जो लाइव होने वाला है एट महात्मा गांधी सेंटर। अगर आपको इसके टिकट्स चाहिए तो eventstickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल सकते हैं। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्वप्निल शाह को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 0224394736 पे। लेकिन ऑकलैंड तैयार हो जाइए और डांस करने का जो सीज़न है ये आने वाला है बहुत जल्द बिकॉज गरबा इज़ कमिंग सून। गरबा विद राज गढ़वी एंजॉय कीजिए ऑकलैंड में ऑन सैटरडे 1st of August एट महात्मा गांधी सेंटर। eventtickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स भी मिल जाएंगे।
1: Mornings made better.
2: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West, west side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: What's going on?
1: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Bollywood ki khabar bhi aapke liye yahan pe hum lekar aate hain. So Deepika and Ranveer are currently basically expecting to be parents to be, and usme unhone abhi second child actually wo ruke second child ke arrival ke liye, and ye couple jo hai inko recently dekha gaya ek date pe, लेड बैक डोसा डेट इन्होंने किया, जहाँ पे काफ़ी सोशल मीडिया अटेंशन इनको मिला. एक क्वाइट लंच के लिए इन्होंने स्टेप आउट किया, जहाँ पे दे वर सराउंडेड बाय टाइट सिक्योरिटी, और एक पॉपुलर रेस्टोरेंट ये गए जहाँ पे इन्होंने डोसाज एंजॉय किए. दीपिका वैसे भी कम्स फ्रॉम बैंगलोर, एंड डेफिनेटली आई थिंक शी मस्ट बी क्रेविंग, वो क्रेविंग्स होती होगी ना, होती है मतलब यूजली मदर्स टू बी को. मे बी आई थिंक दैट वॉज द क्रेविंग दैट she was having for dosas, and she went and had some dosas with Ranveer, and yeah, that's made to Bollywood news. Kyunki aur koi news to bhi matlab kya, Aamir Khan shaadi kar raha hai, wo bhi wo shaadi kar li usne, uske bare mein bhi kya hi aur bolenge. And then apart from that, yeah, there is Haiwan, jiska abhi teaser bahar nikla hai, jisme Saif Ali Khan aur Akshay Kumar are back with Priya Darshan. Yeah, and then Anurag Kashyap is again back in news, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रसून ने ऑब्जेक्ट किया, जो CBFC के चीफ है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया सतलुज को इवन बिफोर वॉचिंग इट. वेल एनी वे, ऑल दीज क्लेम्स क्या ही बोले इसके बारे में. आप सुन रहे हैं हम, सुनते रहिए है.

You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Well, देखते देखते मेरे जाने का वक्त यहाँ पे आ गया है. Thank you so much आपके साथ के लिए और आपके प्यार के लिए. आपसे कल hopefully फिर मुलाकात होगी अगर मेरी हालत इससे ख़राब नहीं हुई तो. But yeah, आज ये मुझे सहन करने के लिए शुक्रिया. But the show must go on, as they say. So चलो मैं कल्टी मारता हूँ यहाँ से and आप enjoy करना the rest of your day and we will see you tomorrow. Bye.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में 10:03 होने वाले हैं आपका साथ निभाने के लिए। मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ चुकी हूँ, 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। मुझे लग रहा था कि कल मंडे, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की ना छुट्टी के बाद, तो एक फीलिंग आती कि मंडे से शुरू करते हैं, बट आई डोंट नो, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम 15th। ऑल राइट, बट अभी देखूँ तो मैं पीछे देखूँ तो लगता है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, आगे देखो तो लगता है लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि कल फ्राइडे होगा। बस इसी नोट पे खुशी होनी शुरू हो जाती है। भाई आपकी खुशी तो मैं समझ ही सकती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करते हैं, उसके बाद हम उन बातों को शेयर करते हैं और फिर आप उन बातों से रिलेट करते हैं, और ऐसा ही कुछ आपके साथ माय टाइम में मैं लेकर आ जाती हूँ। कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए ये बिल्कुल मुमकिन हो जाता है 10 से 12 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। बाय द वे, आज अगर आपका बर्थडे है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एज वेल। आप अपना बर्थडे जो है वो शेयर कर रहे हैं विद नन अदर देन द गॉर्जियस कैटरीना कैफ। क्या बात है भाई, देखो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भूलना नहीं, एक तो ऑफिस शाउट आउट देना है आपको, दूसरा जो आपको करना है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी कि 6-word story, कुछ मेरे साथ कुछ गॉसिप वॉसिप भी शेयर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। सो कैटरीना कैफ का बर्थडे तो हम एक साथ मिलकर मनाएंगे, एक आध दो गाने आपके लिए हम बजाएंगे ही बजाएंगे, लेकिन 5599 पे मुझे ज़रूर प्लीज़ ऑफिस शाउट आउट दे दो, और साथ साथ जो आपको ठीक लगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग, कोई ऐसा प्यारा गाना जो आपको लगता है कैटरीना कैफ का आपको पसंद आया था, एंड मैं देखती हूँ क्या ये मेरी प्लेलिस्ट से मैच करता है कि नहीं करता। अच्छा बजाऊँ क्या?
1: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक चीज तो है एक्सपर्ट अड्डा में, मैं जो चीजें ढूंढ के लाती हूँ कहीं ना कहीं से मुझे लगता है आप उनके साथ रिलेट जरूर कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, हम छुट्टियों पे जाते हैं, हम जब छुट्टियों पे जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज नोट करते हैं होटेल्स के अंदर, ये जो बेडशीट्स होती हैं ना, ये हमेशा वाइट कलर की क्यों होती हैं? अब ये कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं, हाउसकीपिंग की रूटीन्स होते हैं, लॉन्ड्री की ऑपरेशंस होती हैं, क्या होता है? सो वाइट इसलिए होती हैं क्योंकि होटल जो एक इंडस्ट्री की तरफ ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे गेस्ट जो हो बहुत जल्दी जजमेंट करने लग जाते हैं। सो कंडीशन बेड की, बेडरूम की, क्या क्लिनलीनेस है, किस तरह से प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है कि नहीं है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली मैटर करती हैं। और वाइट लिनन जो है रूम के अंदर अगर कुछ भी और गंदा हो रहा होता है ना, उन चीज़ों को कंसील या छुपा देती हैं, जो कुछ चीज़ें अलग अलग तरह की होती हैं। जब आप इंस्पेक्शन करने लगते किसी रूम के, आपको एक स्पॉट वाइट एकदम क्लीनलीनेस नज़र आती है तो आपको लगता है प्रॉपर्टी बहुत साफ़ सुथरी है और बाकी की चीज़ें डिस्गाइज हो जाती हैं। इससे एक चीज़ और होती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जहाँ पे क्रिस्प वाइट बेडिंग जो होती है ये एसोसिएट करती है हाइजीन के साथ और एक कंफर्ट के साथ। बट जैसे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रोफेशनल लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, ये वाइट टेक्सटाइल को बहुत ही अच्छी तरह क्लीन करते हैं और ट्रैवलर्स को ये एक फीलिंग आती है। सो एक विजुअल कंसिस्टेंसी जो है होटल्स में कंटिन्यूसली चलती है। वाइट बेडिंग सिग्नल करता है फ्रेशनेस कि आप आ गए और आप जब बेड पे बैठ रहे हैं एक फ्रेशनेस आपको महसूस होती है। एक चीज़ और है, होटल की जो बेडिंग्स और टॉवल्स होती हैं ये हमेशा अलग धोई जाती हैं और दे हैव डन बीन डन मोर एग्रेसिवली, जैसे कि हम घर पे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा। इसके हाई टेम्परेचर वॉशिंग साइकिल्स बहुत होते हैं, इसमें क्या होते हैं जो बॉडी के ऑयल्स होते हैं, स्टेन्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वो सब निकल जाते हैं। वाइट फैब्रिक ये टॉलरेट कर लेता है कि अगर कुछ चीज़ डाई करनी है, कुछ डिसकलर होने वाले से चांस से भी बचा लेती है। और हाउसकीपिंग के लिए ये हॉट वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है और साथ साथ वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, बिना कलर लॉस के ये बिल्कुल परफेक्ट मेंटेन किए जा सकते हैं। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, होटल्स की जो प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी होती है क्योंकि हर रोज़ लिनन चेंज होता है, पिलो कवर्स, शीट्स, टॉवल्स, बाथ मैट्स, और कॉन्स्टेंटली गेस्ट के रूम्स में, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ में बदलते ही रहते हैं हर रोज़। एक सिंगल कलर जो होता है बहुत सिंप्लीफाई कर देता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर लॉन्ड्री पीपल टू स्ट्रीमलाइन थिंग्स। अब हाउसकीपिंग का जो स्टाफ होता है बहुत अच्छी तरह ट्रेंड होता है और ये लिनन को बहुत अच्छी तरह इंस्पेक्ट करता है बिफोर पुटिंग इट फॉर वॉश। तो ये जो फैब्रिक होता है जिसमें कुछ स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं, एक प्री ट्रीटमेंट किया जाता है इन मार्क्स को हटाने के लिए। और फिर होटल्स जो हैं जो एक स्पॉट क्लीन जो डिफ़िकल्ट स्टेन्स करने की कोशिश करते हैं, लिनन को इसी तरह से सॉर्ट करते हैं, जो जिसमें ज़्यादा स्टेन होता है उन्हें अलग और जो कम स्टेन होता है उनको अलग। कलर्ड फैब्रिक्स जो होते हैं ग्रेजुअली अपने कलर को फेड कर देते हैं। दिस ऑफन हैपन्स कि हम उस कलर को वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन वाइट जो फैब्रिक होता है, वाइट लिनन जो होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। तो ऑक्सीजन बेस्ड ब्राइटनर्स होते हैं, लॉन्ड्री के मेथड्स होते हैं जो येलोनेस निकालते हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो मेंटेन कर लेती है। सो नेक्स्ट टाइम यू रिमेंबर कि ये जो न्यूरस वॉश साइकिल्स के बाद भी फ्रेश लगते हैं, खुशबू आती है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है और एक छोटा मोटा फंडा भी है।
0: Time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday,
2: but the adventure everyone talks about?
1: Imagine chasing waterfalls,
2: wandering lush rice terraces,
1: catching unforgettable sunsets,
2: and relaxing at iconic beach clubs.
1: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
2: discovering incredible temples,
1: tasting world-famous street food.
2: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड.

0: all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
1: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
2: Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected Bip brand clothing, footwear and more. There's adults hoodies and sweats from $49. Kids hoodies and sweats from $35. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See you on for T's and C's.
3: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Office shout out.
5: Office shout out to bhai mere paas. आ चुका है वेरी गुड मॉर्निंग हमारी रिमाइंडर क्लॉक हैप्पी वाला बर्थडे कैटरीना जी कैटरीना कैफ का बर्थडे है ना को और फुल गॉसिप वाली संडे वाली विंडी ऑफ कोर्स हवा तेज होगी वेलिंगटन में गुड मॉर्निंग काशिका जी एश फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे वेलिंगटन ऑलराइट थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपके दुलार के लिए अच्छा ये तो हो गया लेकिन आपको बता देती हूँ ये काउंटडाउन आपके लिए चल रहा है अभी यानी कि परसों कृष्णाभिषेक राजीव ठाकुर जो हैं लाइव परफॉर्म करने वाले इनको टीवी पे तो आप देखते चले आ रहे हैं और जब मैं कहती हूँ कि टीवी पे आप इनको देखते चले आ रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट होता है ना कि अगर इन्हें काश हम अपने सामने आमने देखें वो कैसा रहेगा उनकी कॉमिक टाइमिंग क्या वाकई ही टेलीविजन तक ही सीमित है या फिर वो पब्लिक में भी ऐसे बिहेव करते हैं तो इनके हिलेरियस परफॉर्मेंसेस इनका इंटरेक्शन विद द ऑडियंस कुछ मेमोरीज शायद आप क्रिएट कर सकते हैं परसों ये होने वाला है जहां पर विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आपके लिए कॉमेडी नाइट द ग्रेट कॉमेडी नाइट लेकर आ रहे हैं ट्राई विजन एंटरटेनमेंट लास्ट मिनट टिकट्स बुक करनी है आपको बस बहुत थोड़ी सी बची क्योंकि इट्स नियरली अ सोल्ड आउट इवेंट 021-043-2720 पे धर्मेंद्र शाम से आप बात करें नहीं तो बुक माई इवेंट .co.nz के जरिए आप क्लिक करके टिकट फटाफट खरीदिए
3: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वाह,
1: हाउ
0: अद्भुत।
2: वैसे अद्भुत बात ये है कि आपको मैं बता सकती हूँ, एक डबल पास जीतने का मौका। अब ये डबल पास जीतने का मौका है जितने करण औजला के फैंस हैं, आपको तो पता है कि 25 अगस्त के दिन 25 अगस्त के दिन स्पार्क अरीना में ये आ रहे हैं अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके। इनके साथ इक्की भी आ रहे हैं जो इनको स्टेज पे ज्वाइन करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, अगर इनका एक डबल पास जीतना है तो आप सिंपली बस मैं गाना प्ले करूँगी कहीं पे भी, आज जाने से पहले पहले तक मैं कभी भी गाना एक प्ले कर सकती हूँ। आपको क्या करना है, आपने जैसे ही गाना सुना कि अरे ये तो करण औजला का सॉन्ग है, एंड इफ़ यू आर करण औजला फैन यू विल नो कि गाने का नाम क्या है, आपको के ए लिखना है 5599 पे, गाने का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर दूँगी। ऑल राइट, बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाओ ये बातें, ठीक है, बहुत ध्यान से, कभी भी बच सकता है ये गाना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आपको टिकट्स की या कॉन्सर्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो livenation.co.nz के ज़रिए आप क्लिक करें, या hum.rova.nz के ज़रिए भी टिकट्स के बारे में और पूरे कॉन्सर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। ओके, द टाइम स्टार्ट्स वेयर एवर एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: She blazing like my reefer.
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: एक बात तो है, कुछ लोगों को शायद अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम पसंद नहीं है, बट एक बात बता दूं आपको. We have to admit that कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम had a style and they have done throughout जितना भी FIFA वर्ल्ड कप के स्टेजेस थे and किस तरह से इन्होंने बीट किया इंग्लैंड को with a 2-1 in Atlanta. ये विक्ट्री जो है इनको बिल्कुल एक ऐसी जगह पर ले आई है जहां पर मैं कह सकती हूँ ओ माय गुडनेस, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न हो चुका है. आपका क्या कहना है इस बारे में? ऑफकोर्स वी ऑल नो एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग फास्टर एंड फास्टर कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपको कौन पसंद है, आपके लिए कौन फेवरेट है, चलो ये भी बता दो. वैसे इंग्लैंड की जो मात हुई है अर्जेंटीना से वो कई लोगों को पसंद शायद नहीं भी आई है.
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Eat better, live better, तो मैं कहना चाहती हूँ, but एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ. एक infectious disease जो है expert जो है उनके, उन्होंने बताया है कि एक bird flu जो न्यूजीलैंड में आ चुका है, it can possibly be a potential यहाँ पे endangered species जो हैं. एक sea bird जो है वेलिंगटन में पिटोन बीच पे पाई गई जिसका पॉजिटिव टेस्ट किया गया एंड लुक्स लाइक ये एक डेडली H5 स्ट्रेन है जिससे वो गुजर रही है बर्ड. तो न्यूजीलैंड को वेल प्रिपेयर किया जा रहा है, एजेंसीज को बताया जा रहा है ये इन्फेक्शस डिजीज़ जो है प्रॉबेबली वाइल्ड लाइफ को कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर सकती है और ये कुछ इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है ऑफ दीज बर्ड्स, शायद इन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है. एनिमल्स जैसे कि सी लायंस आर ऑल्सो एट रिस्क और करीब बाहर की अगर इंफॉर्मेशन को निकाला जाए तो बहुत सी लायंस की डेथ भी हुई है. भाई आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, बर्ड फ्लू वगैरह मुझे बहुत बहुत ख़राब लगता है, लेकिन ये एक डिफरेंट इन्फेक्शंस लेकर आता है, कभी फुट पे, कभी माउथ पे, कभी यू नो जिनके हूफ्ड एनिमल्स होते हैं, जिनके क्लॉज वगैरह होते हैं, उनको बहुत जल्दी ये इफेक्ट कर सकता है.
4: 80s के रेट्रो गाने

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
2: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy.
3: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow! Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat, be more fussy.
4: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
5: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
6: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
7: अपनी विंटर को वार्म अप कीजिए विद हॉट डील्स एट लाइफस्टाइल फर्नीचर सोफास रिक्लाइनर्स डाइनिंग और लिविंग रूम फर्नीचर पर पाइए मैसिव सेविंग्स विजिट कीजिए उनके तीन ऑकलैंड स्टोर्स मनुकाओ वेस्टगेट या माउंट वेलिंगटन लाइफस्टाइल फर्नीचर स्टे इन स्टाइल.
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
10: बातें हम स्पोर्ट्स की कर रहे थे और आपका टेक्स्ट आ गया, इज इन दैट इंटरेस्टिंग. अब स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे मेंटली इमोशनली आपके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो पर्सनालिटी के हैं वो शो करने लगते हैं. और एक्सरसाइजिंग जो होती है ये आपके लिए एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको बता देती है इम्प्रूव करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्गर महसूस करने के लिए. तो आपने ड्रीम किया कि आप ने एरोबिक्स की हैं और काफ़ी एक टाइम आपका डिफिकल्ट चल रहा है लाइफ के अंदर जहां आपको एक जॉब भी नहीं मिल रही है. सो इन दिस केस आई कैन से दैट कि एरोबिक्स जो है आपके लिए एक फीलिंग है जहां पे यू हैव टू मेंटेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड मोमेंटम. और ये एरोबिक्स जो है आपके लिए एक ड्रीम जो आपको आई है इसकी, ये एक इंटेंस मेंटल और इमोशनल एक्सरसाइज जो है आपको प्रेजेंट टाइम में बता सकते हैं कि भाई आप ये बेस्ट कैंडिडेट भी बन सकते हैं और अब कॉम्पिटिटिव भी रह सकते हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है उसके लिए आपको और भी पंप अप करते चले जाना है. तो ये पॉजिटिवली अगर एरोबिक्स की इस तरह की ड्रीम्स आती हैं तो एक पर्सनल गोल, आपका पर्सनल कमिटमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक एनर्जी फोकस्ड ड्रीम आपका होगा. तो याद रखो भाई कि अगर आपको कुछ लाइफ में आ रहा है, कोई स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेन है, आपको पता है एरोबिक्स करके वो स्ट्रेस आप निकाल सकते हो.
9: दिल से

में जाने से पहले भाई थैंक यू कहना चाहती हूँ आपका जस्सी, जस्सी जैसा कोई नहीं है, जस्सी जैसी कोई नहीं, आपने सही लिख के भेजा तारीफा। और नैव आपका भी आंसर सही है, सोनाली की के आई आपने लिख के भेजा है, अजय आपने भी सही आंसर भेजा है, कृणाल पटेल आपका आंसर एंड हरदीप आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो भाई आप सबका नाम ड्रॉ में चला गया, आपके लिए कभी भी अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि कौन विनर है। सो हियर वी गो, बट याद रहे अगले घंटे पर सिक्स वर्ड स्टोरी भूलना नहीं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फिजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: डिब्बा खुल गया
8: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
9: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
11: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
12: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
13: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
14: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 11. The AA is warning prices at the pump are set to rise again from next week. It follows the renewed US-Iran fighting in the Middle East. AA spokesperson Terry Collins says while motorists will see a lift in price, there isn't a supply issue.
16: We've got plenty of fuel, there's no need to panic buy, and we've always had the fuel. It's just that the prices are lifting.
15: The Greens are keen to wind back the clock all the way to the 1980s. The party's new bill would make union membership the default setting for new employees. Workplace relations spokesperson Tiano Tui Ono says they still have the right to opt out if they choose. A man has been arrested after being caught allegedly having a feed while robbing an Auckland home. Police say they were called to a Mangere address last night after one of the occupants found the man eating in their kitchen while packing items into his backpack. A fight ensued before the man fled the scene and was tracked by the Eagle helicopter. The 22-year-old now faces multiple charges, including assaulting a woman and a child. The red meat sector is counting down to a conference which will bring together industry leaders, policymakers, and supply partners. It's being held in Wellington in September, hosted by the Meat Industry Association. Chair Nathan Guy says it comes at a time when the sector is navigating global uncertainty. To sport, it's heartbreak for England as defending champions Argentina score a dramatic 2-1 comeback win to reach the FIFA World Cup final. Captain Harry Kane.
17: Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which, you know, at this level is not enough, so just got it.
15: Argentina will face Spain in the decider on Monday. Football updates brought to you by Hisense. And there are three Kiwis in Ireland's team to face the All Blacks at Eden Park on Saturday night.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
2: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Ann's Funeral Home and On-Site Cremations.
18: सूचित किया जाता है कि मांगरी के जयचंदर की पत्नी वाइलालिया बा रामोतार पाचू की बहू पिंकी जैलेन शर्मिला रत्नेश वर्षा की माँ अजय ज्योति जय पूनम वरुण की मदर इन लॉ सावित्री या श्रीमती का निधन हो गया है. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैनेकॉ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0272386305 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. मांगरी के जयचंद्र की पत्नी वाइलालिया बा के राम अवतार पाचू की बहू पिंकी जैलेन शर्मिला रत्नेश वर्षा की माँ अजय ज्योति जय पूनम वरुण की मदर इन लॉ सावित्री या श्रीमती का निधन हो गया है. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मैनेकॉ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0272386305 पर आप संपर्क कर सकते हैं. अविनेश शैलेश रविनेश और दिनेश लाल के पिता सविता देवी लाल के पति एल्फ्रिस्टन के मोतीलाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0220875234 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. अविनेश शैलेश रविनेश और दिनेश लाल के पिता सविता देवी लाल के पति एल्फ्रिस्टन के मोतीलाल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0220875234 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय विष्णु देव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वागीता राकेश और अकिशनी के पिता स्वर्गीय चंद्र प्रभा के पति मानोरीवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार इसी शनिवार के दिन दोपहर 3 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0211322413 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा और सुमित्रा राज के भाई स्वागतिका राकेश और अकेशनी के पिता स्वर्गीय चंद्रा प्रभा की पति मानिरीवा ऑकलैंड के प्रेम नारायण की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आने वाले शनिवार के दिन ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0211322413 पर आप संपर्क कर सकते हैं.
2: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 17 overnight, temperature of 10. आज का forecast बताया जा रहा है. कुछ showers, शायद isolated showers आपको पड़ी हैं, लेकिन शाम के समय ये दोबारा बरस सकती हैं. It feels like 10 degrees right now. 5:25 पे sunset बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. 11:06 हो चुके हैं. 16 जुलाई है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. कैसे हैं आप? मैं काशिका आपका साथ निभा रही हूँ. सुबह 10 बजे से कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है और 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. मंडे टू फ्राइडे का ये दौर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रहता है, जहाँ आपके साथ कुछ ना कुछ मैं बातें करती रहती हूँ. कहाँ से सुन रहे भाई आप? 7:02 AM तो हमारा अब नहीं रहा, लेकिन 104.2 FM के ज़रिए आप हमें सुन सकते हैं. रुवा ऐप के ज़रिए आप हमें सुन सकते हैं. तो भाई जो भी हमें सुन रहे हैं, आपको बता देते हैं, आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस और हैं. किसी और जॉनर के गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम रिवाइंड आप सुन सकते हैं 60s 70s के हिट्स के साथ, जुग बॉक्स 80s के ट्रैक्स के साथ, फीजी भजन जो 24/7 पहला फीजी कीर्तन भजन का आपके लिए एक संग्रह जो है वो भी लेकर आए हैं. 24/7 का ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप इसका आनंद उठा सकते हैं. पंजाबी हिट्स चढ़दी कला के ज़रिए और राहत फ़तेह अली खान जो अगले हफ्ते आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल इनका भी एक चैनल है जो आप सुन सकते हैं. तो 25 जुलाई के दिन ट्रस्ट अरीना में ये परफॉर्म करने वाले हैं. JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस के थ्रू आप फटाफट जाकर टिकट खरीदिए dryTickets.com के ज़रिए 25 जुलाई के दिन ट्रस्ट अरेना पे. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अगर आपके पास कोई 6-word story याद है तो मुझे बताइए. हाँ, रिसाइकल रीयूज क्या कर सकते हैं? खाना भी हो सकता है, कुछ सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. चलो आप मुझे बताओ. 5599 पे टेक्स्ट करो या 0800 00 हम पर कॉल करो.

याद रहे कि गरबा में आप अगर इंटरेस्टेड है, 1 अगस्त का दिन आप जो है महात्मा गांधी सेंटर में पहुंच जाइएगा, क्योंकि यहां पर आ रहे हैं नन अदर देन राज गढ़वी लाइव आपके लिए, लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता प्रांची ग्रुप आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल गरबा नाइट लेकर आने वाले हैं। इवेंट टिकट्स जो है आप events.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं। वैसे स्वप्निल शाह से बात कर सकते हैं 02243947364736 पर भी।

0: Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: एक बात तो है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और ये बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं ना, कभी कभी पेन इन द नेक भी बन जाती हैं। और ऐसे में एक सर्वे हुआ और इस सर्वे के ज़रिए पता चला कि अब पूछा गया कि ये जो स्कूल हॉलीडेज़ हैं, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा लंबी तो नहीं होती न्यूजीलैंड में? लॉजिस्टिकली अगर देखा जाए, वर्किंग पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर होता है। अब बच्चों के चाइल्ड केयर जो है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एनुअल लीव्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने लग जाती हैं और बच्चे जो हैं ज़्यादातर टाइम अपना स्क्रीन टाइम में निकालने लगते हैं। आफ्टर सो मेनी वीक्स ऑफ क्लासरूम, उनको भी लगता है कि चलो कुछ ईजी गोइंग रहे, एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं, अरे मोबाइल पे रहते हैं, ये मूवी देखते हैं। बाय द टाइम द स्कूल स्टार्ट्स, जो टीचर्स होती हैं अपना वैल्यूबल टाइम लगा देती उन बच्चों को वापस लाने के लिए इन द रूटीन। स्कूल जो हॉलीडेज होती बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों को रिचार्ज करने के लिए। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, उनको एक टाइम मिल जाता है उनकी हॉबी को एक्सप्लोर करने के लिए, फैमिली की प्लानिंग हो जाती है, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बहुत सारे प्रेशर्स जो स्कूल के होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन ये टीचर्स जो होती हैं ये रिलाई करती हैं फॉर अ प्रेप, जो ये लेसन्स के लिए प्रेप करना चाहती हैं, एक प्रोफेशनल डिवेलपमेंट अपना और ये करना चाहते हैं और फिर ये रिकवर करना चाहते हैं फ्रॉम द बिजी टर्म। अब जो करंट स्केड्यूल है, ये एक सबको एक हेल्थी बैलेंस लर्निंग एंड लाइफ देती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये स्कूल हॉलीडेज लंबी है या नहीं है? डू यू वॉन्ट टू कम एंड यू नो ओवर द कॉल एंड टॉक टू मी अबाउट इट, या फिर आप अपना अनुभव या आपका अपना कुछ भी एंगल है, आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट।
0: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Fresh premium basmati rice. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
1: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz.
3: At Bunnings, we can make your paint projects easy with a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74, or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Eat better, live better. और मेरे पास तीन टेक्स्ट आए हैं, इन्होंने कहा हमारा नाम बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन डेफिनेटली हमें लगता है कि 2 हफ्ते की छुट्टी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, तो वो एक मोमेंट होता है जहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं चाइल्ड केयर के लिए, फिर एनुअल लीव लेनी पड़ती है और बच्चे दरअसल फ़ोन पर रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट एंड टोटली रिलेट टू दिस। चलिए सिक्स वर्ड स्टोरी की बात करते हैं।
5: सिक्स वर्ड स्टोरी।

0: Indelible Homes, build your dreams.
1: लो कर लो बात, बात करे चले जा रही हूँ, माइक ऑन कर नहीं रही हूँ मैं. ओ माय गॉड, ये क्या करती हो तुम कशिका. सो ये सिक्स वर्ड की जो स्टोरी थी आपने, ही डाइड हैप्पी नोइंग ही लिव्ड, आई होप आई सेड इट नाउ. ये फेसबुक से आपने पिक किया एंड दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. कुछ टेक्स्ट आए हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी इन अ बिट.

सो आज से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि परसों क्या हो रहा है. वैसे अभी मेरे पास कॉल भी आ रही थी, उनको मैंने नंबर भी दिया है. bookmyevent.co.nz पर आपको क्लिक करना है. द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर आपके लिए आ रहे हैं. इन्हें आपने छोटे पर्दे पर ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब साक्षात इनको देखिएगा. इनके हंसी मजाक, इनकी टाइमिंग्स और इनकी लाइव परफॉर्मेंस को देखने का मौका मिलेगा. ये इंटरेक्ट करने वाले हैं ऑडियंस के साथ भी, कुछ मेमोरीज आपकी डेफिनेटली क्रिएट करने वाले हैं. सो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट. आज ही ये टिकट आप खरीद ले, बिकॉज ये सोल्ड आउट इवेंट होने वाला है. सो 0210432720 पर आप कॉल कर सकते हैं. और अगर कोई बुकिंग में हेल्प चाहिए, bookmyevent.co.nz के ज़रिए आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पे. ये होने वाला है परसों.

माफ कीजिएगा, आई थिंक ये कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी. मैं बोले जा रही थी मगर मुझे लगता था शायद माइक ऑन था, बट माइक ऑन ऑफ की तरह से चल रहा था. तो मैं आपको बता रही थी अबाउट रामायण का ट्रेलर, जो कि लगभग 4 मिनट 15 सेकंड का होने वाला है, और ये रिलीज़ इसको कल CBFC ने पास कर दिया. ये फिल्म जो है ये इस दिवाली पर आने वाली है, रिलीज़ होने वाली, इसका पार्ट वन, और इसका पार्ट टू अगली दिवाली पर 2027 में आएगा. और रामचंद्र जी का जो रोल है रणबीर कपूर कर रहे हैं, साई पल्लवी जो है वो सीता का रोल अदा कर रही हैं, यश रावण का रोल अदा कर रहे हैं, सनी देओल हनुमान जी का, और रवि दुबे जो हैं लक्ष्मण जी का रोल अदा कर रहे हैं. AR रहमान के म्यूज़िक में लेट्स वेट एंड वॉच, एंड हैंस ज़िमर इनका भी इसमें म्यूजिक है, कंट्रीब्यूशन है. वील वेट एंड वॉच क्या क्या होता है. सॉरी यार, थोड़ा टेक्निकली चैलेंज फील कर रही हूँ.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
2: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
3: Ski G. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Ski G. Check out fijiairways.com/SkiG.
4: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज़ द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर provider.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
7: Rescue me, recycle me.
8: तो रेस्क्यू में रिसाइकल में मैंने कल वैसे कुछ पेस्टोस के बारे में बात की थी, लेकिन सम वेरी वेरी पेस्टो आइटम आई कैन टेल यू. आप क्या कर सकते हैं, जो हर्ब्स होती हैं जो आपको लगती थोड़ी थोड़ी मुरझाने लग गई हैं, पालक है, और जैसे कल मैंने आपको मूली के पत्तों के बारे में बताया था, कैरेट के जो ग्रीन्स होते हैं ना आप वो ले सकते हैं, और जो गार्लिक के ग्रीन्स होते हैं, नट्स हो सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, पामसन, आप इनको ले लीजिए. और इसके बाद इनको आपको ब्लेंड कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा बस. उसके बाद ये आप क्या कर सकते हैं, इसको टोस्ट के ऊपर या पास्ता के ऊपर आप बिल्कुल एज लाइक अ टॉपिंग बना के खा सकते हैं. तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी वेजी पेस्टो. और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने ज़रूर ट्राई किया था एंड इट हैज़ कम आउट रियली वेल. तो मोस्टली जब हम लोग इस तरह की चीज़ें जब लेते हैं, हमें पता होता है कि हमें एक एक चीज़ उसकी अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी वेरी गुड एट ऑल दिस. लेकिन हाँ, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपको मैं बताना चाहती हूँ. एक तो पहली बात कि केतन जो अभी आने वाले हैं वो सफ़ाई 2 अपने लेकर आ रहे हैं. एंड यस, आई वुड लव टू प्ले दिस, लेट मी ट्राई एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं सुनना. और अनफिल्टर्ड में आपको ब्रेकिंग बैरियर्स में शनील लाल जो हैं, LGBTQ and plus rights, racism, representation and the research of equality. इसके बारे में उन्होंने बात की. सो 5599 पे आप डेफिनेटली आप पूरा का पूरा चीज़ आप सुनना चाहें तो ड्राइव लिखें तो आपको पूरा ऑडियो सुनने को मिलेगा. कुछ बिट्स एंड पीसेस ऑफ विजय एंड पूजा अगर आप मिस कर रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली ये भी सुन सकते हैं एंड बी एफ लिख के भेजें.
6: दिल से

बैक की तरफ हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप की तरफ भी, जो 18 जुलाई को फाइनल होने वाला है, फिनाले होने वाला है, वो उसकी तरफ भी पहुंचेंगे, देखेंगे विनर कौन होता है। लेकिन ऐसे में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा जो ट्रैक मिला है, जहां पर नोरा फतेही जो थी वो इनॉग्रेशन के टाइम पर थी, वो मैं आपके लिए अब छोड़े जाती हूँ। साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, जिसके लिए मैं कह सकती हूँ जूही चावला की स्माइल वॉज वेरी किलिंग। अच्छा, लेकिन अभी आपके दिलों पर राज करने के लिए आने वाले हैं कितने, इनका साथ दीजिएगा। मैं यहाँ से चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार, मुलाकात होती है, दिन कहलाएगा TGIF वाला शुक्रवार। टेक केयर, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ, बाय।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई